0: रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
1: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीज, जैसे पहले भी हम लोगों ने अध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं
0: जी।
1: इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
0: जी।
1: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं, इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
0: जी।
1: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
0: करेक्ट।
1: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
0: ओके। सो इस चीज को समझना जाहिर से बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म जीने का एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं।
0: ओके।
1: चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
0: परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए,

0: प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट?
1: जी सर।
0: ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली ये, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास, और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है, सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये
0: मतलब
1: अर्थ निकलता है। जी जी,
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है, इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी। सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में, एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति, आई मीन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है, ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है, वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, वो कोई ना कोई परिणाम देता है, वॉट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है कर्म का। जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था, या हमारे टेंशन बढ़ जाता है, ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसलिए सनातन धर्म में, इसलिए क्योंकि कर्म हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है, वो हम, हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। व्हाट वी कॉल इन हिंदी में जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि कर्म किसी न किसी एक परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है, ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सब के वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया, उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूं मेरे अपने फायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा, जो आपने बोया वही काटा। तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहां पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूं।

0: बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है?
1: सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासी, आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता, तो इट इज फॉर्म बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में है
0: जी।
1: ये कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
0: सुंदर।
1: आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं, और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
0: जी,
1: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है
0: जी,
1: ऐसा ही समझाया गया है।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहां सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है, अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने

0: का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो
0: ऑब्जेक्टिव,
1: फाइनल अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है ये हम लोग सब समझते हैं जानते हैं, सनातन धर्म मानता है और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको यू कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट
0: मतलब
1: सहना,
0: ये पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर
1: पेनफुल
0: प्रोसेस,
1: पेनफुल फॉर
0: जी।
1: तो इससे मुक्ति इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब व्हेन इट रीचेस द अल्टीमेट दैट इज व्हाट इज मोक्ष एंड वी ऑल उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं जो उनकी कोशिश को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके, ये है इसका सम्मान।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म, तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
1: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
0: जी।
1: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है, आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ढाल लेता है तो वो करता है, करना कर देता है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है उसी को हम ईमानदारी से पालन करें, वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी हैं, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक ये भी एक माध्यम है और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है योग और मेडिटेशन के द्वारा। छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों को हर्ट नहीं करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, these are all small small things which can lead us to towards jo hai sanatan होने के एक और हमको शायद ले जा सकता, ये मेरा ये मिनट्स में स्मॉल Humble, सोच।
0: बिल्कुल सही है सर। बहुत ज्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथों वगैरह का हम अध्ययन करें, पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है, फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके, उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंद रहा था सवाल वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही मेथड्स जो आपने बोले हैं। जी
1: यही यही है जो, क्योंकि ये कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं, हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता है, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, ये दीस आर ऑल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम दी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीस आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स यू नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सकें, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा, तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा, पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो ये छोटे छोटे मेथड्स प्रोसीजर्स व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर से बात है हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, शांति से जिए, अच्छी तरीके से जिए, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
1: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है, हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है, तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया ऐसा। और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है, हम कुछ नहीं छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है, और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया, तो ये सब चीजें। उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी, आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम उस ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है। और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है कि एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है। हमें इस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमको हमने भी हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
0: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरीके की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो है वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसकी और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है होता है जी। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रसवानों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित लोग करते हैं उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक मिल सकता है, ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है, भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मैं कई मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की का लेखनी की बात कही रमन साहब ने तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी है, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़ कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटूं, आपस में कहूं, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जीवन में अक्सर हमसे कहा जाता है कि एक रास्ता चुनिए और उसी पर चलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो एक नहीं कई रास्तों पर एक साथ सफलतापूर्वक चला जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने चिकित्सा और कला दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। पेशे से एक प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन जो वर्षों से नन्ही जिंदगियों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सफेद कोट के पीछे एक संवेदनशील कलाकार भी है, एक सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और

0: ओरिजिनल सॉन्ग्स के माध्यम से यूट्यूब और विभिन्न म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। सचमुच उनकी कहानी ये बताती है कि प्रोफेशन और पैशन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि जीवन के दो खूबसूरत स्वर हो सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, पीडियाट्रिशियन, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, पोएट। डॉक्टर साहब, रेडियो के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच जो आपके इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला।
0: तो डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं शुरुआत से ही कर लेते हैं और शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताइए। कैसे आपका बचपन, किन परिस्थितियों में, कैसे किन वैल्यूज के बीच बीता, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: हाँ सर, हम लोग जो है बेसिकली मेरा जन्म जो है मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है वहां हुआ, आयरा केड़ा नाम से गांव था।
0: अच्छा।
1: हम लोग जो है तो फैमिली सारी जो है विलेज से, सब गांव से थे। पापा का जो है गवर्नमेंट जॉब में था, यूपी गवर्नमेंट जॉब में जॉब थी उनकी। पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे एज ए इंस्पेक्टर थे।
0: अच्छा।
1: तो हम लोगों का स्टार्टिंग का एजुकेशन गांव में हुआ। उसके बाद पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है जाकर के रहे। फिर सिक्स सेवंथ क्लास से हम लोगों ने मथुरा शिफ्ट हो गए। हम लोग फिर मेरा उसके बाद की सारी एजुकेशन मथुरा में हुई। मथुरा में मैं सेंट पॉल्स स्कूल्स में रहा 10th तक। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और मेरी माता जी सरला शर्मा जी जो है वो एक हाउस वाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो कि दिल्ली सेटल्ड है। तो हम छोटी सी चार लोगों की फैमिली, मध्यम लोअर मिडिल क्लास, न बहुत ज्यादा पैसे, छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती थी। बस यही जीवन एक आम जीवन रहा सर।
0: ये तो बहुत ही मजा आ गया। आप मथुरा के निवासी हैं, कृष्ण की नगरी के निवासी हैं, ये तो सुन के बहुत ही मजा आ गया आपकी बात का। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये डॉक्टर बनने का विचार कैसे मन में आया? क्या बचपन में सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना है, या बाद में धीरे धीरे ये विचार बनता गया और आप आगे बढ़ते गए इस लाइन में?
1: एक्चुअली सर जो है क्योंकि बहुत ही माली हालत से थे हम लोग, जो एक लोअर इकोनॉमिक स्टेटस मान लो हमारा था, तो हम जो है स्टार्टिंग में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये डॉक्टर जैसा ड्रीम तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो जब 11th 12th में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि हर कोई कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है अपने बच्चों से। तो हमारे माताजी पिताजी ने भी कुछ अपेक्षाएं रखी और हमसे दोस्तों के थ्रू मुझे पता पड़ा कि जो है डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। बट क्योंकि हम कोई बहुत होनहार बच्चे नहीं थे शुरुआत से ही, तो ज्यादातर दोस्तों ने सबने यही कहा कि नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो क्या है, जिले से कोई एक निकलता है साहब, आगरा से कोई एक निकलेगा, मथुरा से कोई एक, तो बस की बात नहीं है तुम्हारे। वो लोगों ने बहुत लैग पुलिंग करी कि जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उस समय, उस दौरान जब सब लोग नेगेटिव शो कर रहे थे, उस समय ये बीच अंदर जो है पनपा कि नहीं, इन सबको मुझे रॉन्ग प्रूव करना है। तो जो है फिर उस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ मेरे साथ में कि जो जीवन भर हमेशा याद रहता है मुझे, कि मेरा 11th में एडमिशन जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जब लेने पहुंचे तो वहां के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म देखा और मेरे क्या 10th में जो है परसेंटेज काफी कम थे, 58% कुछ थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जब एडमिशन फॉर्म में लिखा था साइंस बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है साइंस बायोलॉजी क्यों लेना चाहते हो? तो उन्होंने, मैंने कहा कि सर मेरे को जो है डॉक्टर बनना है। तो उन प्रिंसिपल सर ने वो मेरा फॉर्म मेरे सांखों के, मेरे पिताजी और मैं बैठे थे, मुझे आज तक याद है वो जो लम्हा, उन्होंने मेरे सामने वो फॉर्म फाड़ा था और मेरे सामने मेरे ऊपर फेंक दिया था वो, जो है बोलते हैं कि इस परसेंटेज पे तो बेटा तुम जानवरों के डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंसानों के तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो लम्हा था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि जो है जानवरों का नहीं।

0: इंसानों का ही डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। तो वहां से शुरुआत हुई सर इस चीज की।
1: बहुत ही एक ट्रिगर था जो आपकी लाइफ में हुआ, और मतलब एक तरह से कुछ कुछ धन्यवाद उन हेडमास्टर साहब को भी देना चाहिए कि जो ऐसी बात कह दी आपको।
0: बिल्कुल, मैं तो जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ था मैं गया था। अच्छा। मैंने एक बार उनके आशीर्वाद जरूर लूंगा, अगर काश उन्होंने उस दिन वो नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता।
1: क्या क्या क्या बढ़िया बात पे आपने शुरुआत कर दी। एक ऐसी घटना है जो हिला के रख देती है आदमी को, और बचपन के उस एज में अगर कोई ऐसा कर दे तो आपके हमेशा एक रह जाता है आपके दिमाग के अंदर बात।
0: जी जी सर, वो भी मेरे पापा के सामने, और मेरी वो इंसल्ट सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे फादर की भी इंसल्ट थी, तो मुझको वो चीज चार गुना चुभी की जो है, मतलब कि मेरे फादर को ऐसा लगा कि जो है क्या कहते हैं ये पता नहीं क्या करेगा लाइफ में।
1: सही बात है, सही बात
0: सर।
1: तो
0: इस तरह से
1: बिल्कुल, तो आपने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली है क्या कभी, और फिर मेडिकल एंट्रेंस की भी तैयारी की, संगीत और इन दोनों को साथ लेके चलना कितना मुश्किल होगा उस टाइम। बचपन से ही आपको संगीत का शौक लग गया था, कैसे करते थे आप?
0: एक्चुअली फिर जो है सर, मेरे को जो है एडमिशन बायोलॉजी मिली थी केंद्रीय विद्यालय में, मुझे वहाँ पे जो है मेरे नंबर तो इस लायक थे ही नहीं, बट प्रिंसिपल सर ने वहाँ जो है बड़े बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हें दे देते हैं एडमिशन बायोलॉजी में, कुछ करके दिखाओगे तो। लेकिन तो उसके दौरान वहाँ मैं बायोलॉजी ली, लेकिन स्कूल में फिर थोड़ा जो है जब एकेडमिक्स चालू हुई, क्लासेस चालू हुई, तो जो है संगीत की जो तरफ मेरा रुझान बढ़ा स्कूल की तरफ से आया पहले। फिर जो है मैं एक हमारे क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर जो है वो संगीत सीखने जाती थी एक मैडम के पास, तो मैं उसको छोड़ने जाता था सिस्टर को।
1: अच्छा।
0: तो मैं वहां बैठ जाता था जो है छोटी सिस्टर के साथ में। तो वो आज भी याद है, मैम का नाम था वंदना, वंदना मैम थी वो। अब वो संगीत सिखाती, मैं वहां बैठा रहता सब बच्चे देखते, तो मेरे को उस दौरान ऐसा लगा कि मैं भी गा सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो रुचि पैदा शुरू हुई। तो फिर मैंने मैम से सीखना शुरू करा थोड़ा थोड़ा, तो उस दौरान मैंने एक थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग संगीत में लेना शुरू करी। बट मीनवाइल जो है क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत था, तो बहुत ज्यादा उसमें जो है नहीं घुस पाया फॉर्मल ट्रेनिंग में, तो मैं खाली जितना समय मिल पाता था तो मैं उनके पास जाकर के जो है संगीत के बारे में जानता था।
1: हाँ, तो ये एक तरह का संजोग ही रहा कि आप अपनी सिस्टर को छोड़ने जाते थे और वहां बैठे रहते थे। वही जैसे गुरु पढ़ा तो किसी और शिष्य को रहा है, लेकिन साथ में बैठे कोई और भी सीख लेता है।
0: यही बात
1: है। हाँ, कुछ कुछ कुछ बिल्कुल एकलव्य
0: की शुरुआत हुई थी संगीत के सफर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकलव्य जैसी बात हो गई। चलिए, तो डॉक्टर साहब अब अपन ने संगीत की बात कर ली है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा माहौल को संगीतमय बना ही लेते हैं। आप अगर इस टाइम कंफर्टेबल हो तो हम एक कोई आपका कोई पुराना गीत या कोई भी एक गीत उसका मुखड़ा अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका।
0: जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाता हूँ।

0: सो सर, ये गाना था मेरा लम्हे, मेरा पहला ओरिजिनल कंपोजिशन रिकॉर्ड किया था सर।
1: मजा आ गया साहब, डॉक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, थोड़े बहुत पुराने हिंदी के सॉन्ग सुनाते हैं, ये इस तरह से कंपोजिशन और किसी ने गिटार पे गा के सुनाया तो हमें तो बहुत ही मजा आ गया। एकदम नई चीज हो गई हमारे रेडियो स्टेशन के लिए। तो
0: थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब ये पीछे लम्हों की बात चलिए डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं कि कुछ पुराने अपने मेडिकल कॉलेज चेन्नई के किस्से भी तो कुछ होंगे आपके साथ में, कुछ यादें होंगी, और जब आपने ये गाना कंपोज किया होगा तो उससे जुड़ी कोई बात हो तो कुछ याद दिलाइए हमारे को, फिर आपके म्यूजिक बैंड के सिक के बारे में बात करते हैं।
0: जी सर, जी सर। कॉलेज में तो जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, तो उस समय काउंसलिंग के दौरान जो है सबका ये रहता है कि अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले
1: जी।
0: तो काउंसलिंग में जो है उस समय टॉप 3 में था मद्रास मेडिकल कॉलेज। इंडिया टुडे की एक मैगजीन में जो है एक रैंकिंग आती थी
1: जी जी,
0: तो उसमें जो है क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी, मेरा 734 कुछ रैंक था ऑल इंडिया में, तो मेरे को कॉलेज सारे अवेलेबल थे, मिल रहे थे मुझे साथ, लेकिन मेरे को था कि टॉप 3 कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। तो उस समय बहुतों ने मना किया कि नहीं, वहां पर बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लैंग्वेज डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट मुझे तो वो और ज्यादा वो मजा आ रहा था कि ये चैलेंज भी और लाइफ में कम से कम इसी दौरान हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे फिर। तो सर इस तरह से मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो अब एडमिशन लेने के बाद में वहां पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में तो काफी प्रॉब्लम्स रही क्योंकि लैंग्वेज बहुत इश्यू, दूसरा था इंग्लिश, हम बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते थे, वहां पे बिना इंग्लिश के काम ही नहीं चलता।
1: सही, सही बात है।
0: तो लेकिन सो ऑल जो है हमने सब चीजें सीखी सर हमने चेन्नई में। फिर जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो तमिल में भी इंटरेस्ट आने लगा, धीरे धीरे इंग्लिश भी जो है सीख गए, लेकिन तमिल जो लैंग्वेज थी लोगों को, बाकी मेरे मित्रगणों को जो है थोड़ा सा लगता था कि दे वॉज फीलिंग प्रेशर कि जो है उनको यार ये तमिल और सीखनी पड़ेगी जब जाकर के यहाँ रहेंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ कुछ ये था कि मुझे मजा आ रहा था तमिल सीखने में, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पहले ही आ जाते यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था। तो अब उस लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ ही जो है वहां कॉलेज के जो मैंने मेरे इस तरह के जो लड़के जो संगीत में रुचि रखते थे, क्योंकि उस कॉलेज में मेरे से पहले कभी कोई म्यूजिक बैंड नहीं था।
1: ओके, अच्छा।
0: जी सर। तो हम लेकिन चेन्नई में क्या होता था कि जैसे वहाँ इंट्रा चेन्नई और इंटर तमिलनाडु वाले पूरे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं तो उनमें फेस्ट होते थे, तो उनमें कॉम्पिटिशन होते थे। तो अब लेकिन हमारे कॉलेज से कभी कोई बैंड जाता ही नहीं था परफॉर्म करने के लिए। बाकी हम जब किसी कॉलेज के, जैसे चेन्नई में दो मेडिकल कॉलेज और हैं जो गवर्नमेंट के हैं, एक स्टेनले मेडिकल कॉलेज था, एक किलपॉक मेडिकल कॉलेज, अब हम जब वहां जाते तो देखा हमारे कॉलेज की तरफ से कोई बैंड ही नहीं आता है। तो
1: अच्छा।
0: उस समय ये विचार आया मेरे कि जो है यार जो है कोई बात नहीं, मेरे को जो है तमिल का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं, बट फिर भी कुछ गाने मैंने तमिल में सीखे और फिर मैंने अपने जैसे कुछ मित्रगण ढूंढे और मैंने एक बैंड बनाया। उसके बाद फिर हम जो है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, कई जगह जो है क्या कहते हैं अपने कॉलेज की को रिप्रेजेंट करते थे बैंड के थ्रू जो है म्यूजिक फेस्ट में।
1: डॉक्टर साहब, गजब का काम किया आपने। देखिए पहली बात है कि आपने साउथ के कॉलेजेस का, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वहां का थोड़ा सा एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो हमेशा से अच्छा रहा ही है। एक तो वहां एडमिशन ले लिया, फिर आपने जाके वहां तमिल सीख ली, विच इज नॉट एन इजी लैंग्वेज टू लर्न, मतलब कोई इजी लैंग्वेज नहीं है तमिल सीखना साउथ, और स्पेशली तमिल, मलयालम कुछ लोग सीख लेते हैं लेकिन तमिल नहीं सीख पाते। और फिर आपने उसमें गाने भी गा लिए और आपने म्यूजिक बैंड भी बना लिया और फिर कंपटीशन में भी जाने लग गए, तो कितने सारे काम आपने कर लिए, मतलब आप तो बिल्कुल एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ गए वहां का। बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मजा आ गया। तो तमिल भाषा में आपने गाने भी सीख लिए, तो एक तमिल टेलीविजन म्यूजिक चैनल पर भी आपका एक प्रदर्शन हुआ है, वो कैसा
0: जी सर।
1: एक्सपीरियंस था, वो कैसा एक्सपीरियंस?
0: एक्चुअली सर वो कॉलेज फेस्ट से ही जो है मेरे को जो है एक टेलीविजन म्यूजिक शो था, तो हम लोगों ने कोई उसके लिए अलग से ऑडिशन नहीं दिया। हमारा कॉलेज का मेरा परफॉर्मेंस देख करके उस जो वहाँ पे जजेस आते थे तो उन्होंने जो है अप्रोच किया था मुझे कि आप जो है क्या कहते हैं एक हमारे शो में जो है तमिल गाना गाओगे क्या। मैंने डेफिनेटली क्यों नहीं, एक जया टीवी करके वहाँ बहुत फेमस
1: हाँ,
0: जो
1: बहुत
0: है
1: फेमस
0: क्या
1: है,
0: कहते हैं
1: बहुत फेमस है,
0: बहुत
1: आई नो। हाँ
0: जी, तो उस पे जया चाहे उनके जो है वो प्रोड्यूसर थे, एक प्रोग्राम आता था कोई सिंगिंग का, तो उस प्रोग्राम में जो है मेरे को जो है एक बार गाना गाने का मौका मिला था जो है, तो मैंने वो जीवन भर याद रहेगा, वो मैंने तमिल गाना गाया था टेलीविजन
1: तो ऐसा करते हैं, आपसे बाद में एक हिंदी गाना सुनते हैं, कुछ हमें एक तमिल गाने की लाइन आप कैसा गाते थे कुछ सुना सकते हैं क्या आप, हल्का सा
0: जी जी बिल्कुल
1: छोटी
0: बिल्कुल सर,
1: मोटी?
0: एक दो लाइनें याद है मुझे
1: हाँ
0: अभी भी।
1: सुनाइए, थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमारे इस शो में तमिलियंस बहुत जुड़ते हैं रेडियो पे।
0: अरे वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो कोशिश करता हूँ सर वो
1: हाँ बिल्कुल
0: गाने की
1: बिल्कुल
0: जो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ट्रेले उन स्वासतई तने आग तेड़ी पारते, मैं अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये तमिल इसकी लाइनें आगे की याद नहीं आ रही सर।
1: हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। तो चलिए यहाँ इस तमिल गाने पे और आपके म्यूजिक चैनल के नाम पे रुक के एक हम ब्रेक लेते हैं और एक अच्छा सा गाना आपका सुनते हैं, बढ़िया सा, और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: श्योर सर श्योर सर।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर साहब। तो अब आते हैं एक और आपके जीवन के बहुत ही बड़े संगीतमय अनुभव की तरफ, विच इज इंडियन आइडोल। इंडियन आइडोल के मंच, प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचना बहुत गायक का सपना होता है और कोई आसान काम भी नहीं है। तो ये इंडियन आइडोल की जर्नी आपकी किस तरह से शुरू हुई, ये कैसे किया आपने?
1: जी सर, मैं उस समय था सेकेंड ईयर MBBS में, तो इंडियन आइडल 2 उस समय स्टार्ट हुआ था ऑडिशन। तो हमारा सेकेंड ईयर MBBS में ये जो प्रॉप होता है हमारे, क्या 1.5 ईयर्स का होता है वो प्रॉप,
0: अच्छा,
1: तो एग्जाम भी लेट होते हैं। हमारा सेकेंड ईयर शुरू ही हुआ था उस समय। तो जो है उस समय ये इंडियन आइडल ऑडिशंस की डेट आई, तो जो है उस समय चेन्नई में ऑडिशन नहीं था उसका, तो हमने मुंबई के लिए फिर जो है डेट और वो थी टिकट बुक कराई और बिना घर बताए हम मुंबई पहुंच गए।
0: ओके। हाँ
1: तो सर वहाँ जो है अगर पहुंच रहे रात को पहुंचे थे, और सुबह जहाँ जो ऑडिशन का जो स्टेडियम था वो ऑडिटोरियम, वहां जाकर के देखा तो वहां जो लाइन थी वो, मतलब कि लोग एक दिन शाम से, मतलब अगले दिन सुबह, और 24 घंटे पहले से लाइन में लगे हुए थे लोग।
0: अच्छा,
1: और तो फिर हम लोग रात को वहां जाके लगे लाइन में, और अगले दिन जो सुबह ऑडिशन टाइम स्टार्ट होना था, जब तक तो वो सारी लाइन एक स्टेडियम में घुमानी पड़ी। इतनी इतना रश मैंने लाइव में नहीं देखा था एक किसी ऑडिशन के लिए। तो
0: अच्छा,
1: सर उसमें फिर जो है सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ऑडिशंस में स्टार्टिंग के राउंड जब नंबर आया, तो आदमी सोचता है कि जब टीवी में देखते हैं कि अन्नू मलिक है, सोनू निगम जी बैठे हैं, तो सीधा उन्हीं से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं होता, एक स्टार्टिंग के राउंड्स में तो काफी अननोन जो है जजेस होते हैं, जो कि फेमस नहीं है, संगीत के जो है ज्ञाता लोग हैं, वो लोग एक बेसिक सा स्क्रूटनी कर देते हैं। तो पहले वो राउंड हुआ एक, उसके बाद में फिर जो है हमें शाम तक बिठाया, फिर जो है अगले शाम को फिर एक और राउंड था जो उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर अगले दिन जो है फिर एक दिन ब्रेक था 1-2 दिन, फिर हमें वहीं पे ही होटल दिया गया रुक के, जो लोग सेलेक्ट हो गए थे जो है। फिर उसके हमारा जो है टॉप 100 जो है, मैं जब पहुंचा था तब सारे इंडिया से उन्होंने फिर कंटेस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए थे जो सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमें फिर हमारे टॉप 100 में जब सारे हो गए थे, उस दौरान फिर जो है अनु मलिक जी, सोनू निगम जी और एलिशा चेनॉय थे उस समय जस्ट थे।
0: अच्छा,
1: तो उस दौरान फिर हमसे उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने बेसिक सारी बताई, बातें बताई किस तरह गाना है। उस दौरान जो है काफी अलग-अलग लोगों से और संगीत के इतने धुरंधर लोगों से जो है मुलाकात हुई, उस समय बड़ा टेंशन भी हुई, यार हम तो कुछ भी नहीं है। लोग तो मतलब दिन रात बस म्यूजिक ही म्यूजिक कहे, हम लोग तो जो है कहाँ है, उनके सामने तो कहीं डरते ही नहीं हम। लेकिन फिर भी अपना जो एक जुनून अलग था कि भाई नहीं करना है, कुछ करना है जरूर। तो जो है उस दौरान जो है फिर एक राउंड में मैं बाहर निकला था, जब टॉप 50 के लिए सिलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें अन्नू मलिक जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जो है कि अरुण आप ये बताओ कि आज आपको मेडिसिन और संगीत में से एक चीज चुननी है तो क्या चुनोगे, वो आज ही डिसाइड करो। तो सर
0: अच्छा,
1: अब जो है मेडिसिन, और उस समय मैंने बोल दिया सर मेडिसिन के लिए तो मैंने दिन रात मेहनत करी है, कैरियर है वो मेरी लाइफ का, म्यूजिक मेरा पैशन है, तो पैशन के लिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा सर, तो बहुत मेहनत करी है, पैशन मेरा, पैशन कंटिन्यू कर सकता हूँ कैसे भी। तो उस दिन मेरे को बाहर कर दिया गया था इंडियन आइडल से जो है।
0: अच्छा। तो ये मतलब, खैर जवाब तो आपने सही दिया, लेकिन ये भी एक रीजन उनके दिमाग में रहा हो कि ये पूरी तरह संगीत को समर्पित नहीं है। लेकिन
1: हाँ
0: ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो खैर बाद में भी जो सब तरह के लोग जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल।
0: लेकिन आपने माहौल बड़ा अच्छा बताया है इंडियन आइडल का। कुछ और इंडियन आइडल में किस तरह से ये सब कराओके पे ही होता है वहां ये गाना, या लाइव ऑर्केस्ट्रा चलता है जब आप वहां अपना ऑडिशन देते हैं, क्या होता है?
1: नहीं, कैरियोके तो बिल्कुल नहीं होता सर वहाँ पे, वहाँ
0: अच्छा,
1: लाइव होता है सब कुछ, ज्यादा
0: हाँ,
1: बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस नहीं होते, एक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ही लोग होते थे, एक पियानो पे जो है सिंथेसाइजर पे, एक जो है गिटार, और एक जो है ड्रम्स बीट्स के लिए,
0: अच्छा
1: वो
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा
1: पैड आता है पैड पर,
0: अच्छा अच्छा
1: बस
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उसी पर ही ज्यादातर स्टार्टिंग के जो राउंड्स होते थे। ये जो अपन देखते हैं पूरा बैंड के साथ में जो टीवी पे जो आता है, ये तो टॉप 20-30 में
0: हाँ
1: जब आ जाते हैं, जब शुरू होता है ये
0: तब
1: लाइव
0: शुरू होता है,
1: टेलीकास्ट।
0: तब शुरू होता है। ओके कोई ऐसी

0: यादगार कोई ऐसी सीख या कोई अनुभव इंडियन आइडल से रिलेटेड, आप जब इन लोगों से बात करते थे, जजेस से, या अपने साथियों के साथ कोई ऐसा रहा कोई जो अभी भी आपको याद आ जाता है और हंसी आ जाती है उस बात पे याद करके?
1: काफी किस्से रहे सर जो है उस दौरान जो है, लेकिन जो मैंने सीखने वाली चीज ये थी कि जो है वही जो जब मैंने MBBS के लिए जब अपन मेडिकल की प्रिपरेशन करते थे तो हमें हमारे जो सर थे कोचिंग में, तो उनका एक दादा बेटा कि जो है ना बीच के लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है ना, या तो आपके अंदर जो है जुनून है तो आप हासिल कर पाओगे, और अगर जुनून नहीं है सिर्फ कई लोग क्या यहाँ मैं देख लेता हूँ एग्जाम दे के हो गया तो डॉक्टरी कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो वो चीज भी मैंने सेम चीज वहां देखी कि संगीत में जुनून चाहिए, जुनून आपको पीछे नहीं हटना है, अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर जाओगे, जुनून नहीं है सिर्फ जो है क्या कहते हैं लेट्स सी, तो वो लेट्स सी वाला सीन नहीं होता। बिल्कुल
0: बहुत बहुत गहरी बात कह रही डॉक्टर साहब आपने। अच्छा, क्योंकि ये संगीत एक ऐसा महासागर है, पूरी जिंदगी निकाल दी है इसमें क्लासिकल सिंगर्स ने, और उनको अगर आप देखो तो एक महासागर है जिसमें लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही
1: जी
0: जाते
1: सर, नो डाउट नो
0: हैं।
1: डाउट नो डाउट
0: बहुत
1: नो डाउट।
0: संगीत तो एक गजब का ही है। मैं तो अभी भी अब यहाँ जयपुर में हर रोज कोई नए प्रोग्राम होते रहते हैं, लोग गाना गाते हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और बढ़ती जा रही है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है।
1: नो डाउट सर, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए,
1: फॉर मी एक्चुअली म्यूजिक इज नॉट जस्ट क्या कहते हैं कोई एक कला नहीं है, मैं तो एक्चुअली म्यूजिक को एक तरह से मेडिटेशन है।
0: बिल्कुल
1: मुझे
0: सर,
1: ऐसा लगता है कि आदमी जितना म्यूजिकली इन्वॉल्व है ना वो काम अपने आप को अपने कंट्रोल रहता है उसका अपने ऊपर।
0: तो चलिए रुक के यहाँ फिर एक आपका गाना सुनते हैं और इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। इतनी बढ़िया इंडियन आइडल की बातें आपने हमें हमारे साथ शेयर कर दी हैं, फिर
1: थैंक यू
0: एक
1: सर,
0: गाना
1: थैंक यू सर।
0: सुनते हैं आपका।

0: हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। अब आते हैं थोड़े से आपके प्रोफेशन के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट और पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन के दौरान संगीत के कुछ समय के लिए आपको पीछा रखना पड़ा होगा, तो वो दौर कैसा रहा होगा आपने जब बिल्कुल ही अपने इसकी तैयारी शुरू की स्पेशलाइजेशन की?
1: जी सर, जी सर, वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। वो सारा दौर मेरा जयपुर आके ही शुरू हुआ था सर।
0: ओके, अच्छा।
1: मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद मैं फिर जॉब करी कई जगह। उस दौरान मैंने सीएम रहा, मैं सीएमओ रहा, मैं नोएडा में, दिल्ली में, चेन्नई में
0: अच्छा
1: भी जॉब करी थी मैंने। फिर
0: अच्छा
1: मैं जयपुर में आफ्टर एमबीबीएस मैं जूनियर रेजिडेंट रहा। यहाँ नारायणा विद्यालय से शुरुआत हुई थी,
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो हुआ। उसके बाद फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो जो हुआ नागपुर से,
0: ओके, अच्छा।
1: जो है मैंने डीसीएच वहां से करा था फिर जो है। और लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेक्शन तक मेरे से संगीत बिल्कुल पीछे हट गया था, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ, क्योंकि उस समय शादी हो चुकी थी, तो जो है उस समय ये था कि अब लाइफ में जब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिली तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट जॉब में कहीं रहना पड़ेगा बाहर, और मैं जयपुर छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो है फिर, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने सोच लिया कि अब मेरे को अपना पैशन वापस से जिंदा करना है। और जो है फिर मैंने जो है संगीत की सारी चीजें दोबारा से जो है अपने आप को रिफाइन करा, रियाज शुरू करा प्रॉपरली। और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान में बहुत ज्यादा जो है म्यूजिकली कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई का ड्यूटी टाइमिंग्स का बहुत प्रेशर होता था। मतलब 24 24 घंटे, 38 घंटे, 36 घंटे हम सिर्फ ड्यूटी पे ही रहते थे, तो
0: सही बात
1: वो उस दौरान तो पॉसिबल नहीं है सर।
0: है। रेजर, जब रेजिडेंसी की बात होती है, बहुत इम्पोर्टेंट,
1: राइट राइट सर। तो
0: बहुत।
1: उसके बाद जब खत्म हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे जो है दौर शुरू हुआ मेरा यहाँ जो है जॉब का। जॉब के साथ साथ फिर मैंने जो है अपना जो लिखने का जो शौक था उसको मैंने सोचा। मैं एक्चुअली क्या था कि मैं पुराने गाने जब गाता था कहीं पर, तो हर कोई क्या होता था कि आपको वॉइस को उस पुराने सिंगर से कनेक्ट करता है।
0: जी
1: अरे किशोर जी ने गाया है तो वो किशोर जी का अच्छा था यार। आप वो तो लीजेंडरी सिंगर्स हैं वो लोग, तो उनसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते देखो अपन लोग उसका। लेकिन तो उस दौरान फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को अपनी आवाज के गाने, खुद की आवाज में अगर मान लो सुनाऊं जो है, जो मेरे लिखे हुए कॉम्पोजिशन है, तो फिर मैंने गाने शुरू करे थे। कॉलेज लम्हे जो मेरा पहला गाना लिखा था कॉलेज की यादों को लेकर के, और वो मैंने किया, वो काफी पसंद किया लोगों ने। यह है उसके बाद सिलसिला चलता चला। फिर मैंने अभी इस समय 11 सॉन्ग्स रिलीज हो गए मेरे सारा भी।
0: अरे वंडरफुल। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक अपना कंपोजिशन कोई सुनाइए, आप एक मुखड़ा सुनाइए भले ही, फिर हम आपका वो वाला गाना भी सुनेंगे, रिकॉर्डेड भी। एक
1: जी
0: एक
1: जी
0: कोई
1: जी
0: मुख सुनाइए।
1: सर, मैं सुनाता हूँ। ये गाना जो मैं सुना रहा हूँ सर, ये अभी मेरा रिसेंट रिलीज है, मैं ही
0: हाँ
1: क्यों।
0: हाँ मैं क्यों, मैं क्यों, राइट।
1: जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू

0: जो भी छुपा है अगले मोड़ पे जिंदगी तू बता। थैंक यू सर।
1: चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं और एक और आपका एक और गाना सुनते हैं आपका, और फिर हम बातचीत को जारी रखते हैं।
2: भूलिए जब जब बरसात आती है, मेरी बेचैनी को मिले चैन, जो इस दिल

0: हाँ डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपके एक और दूसरे पैशन की तरफ, जो इसमें आपने भी बड़ी महारत हासिल कर ली है एज ए यूट्यूबर। तो 2018 में आपका पहला, जैसे अभी आपने बताया, ओरिजिनल सिंगल लम्हे ये एल्बम रिलीज हुआ लम्हे,
1: जी सर,
0: जिसने
1: जी सर,
0: आपने
1: जी सर,
0: स्वयं लिखा है, कंपोज किया है और गाया है। तो
1: जी सर, जी सर,
0: वो कैसा लम्हा था जब पहली बार आपने इसको किया, और क्या किसी ने कोई प्रेरणा दी आपको कि आप करो इस तरह से, पहला गाना अपना कंपोज भी करो, लिखो भी और गाओ भी?
1: एक्चुअली सर जो है लिखने का जो प्रेरणा थी ये सडनली जो है मेरे अंदर, ये काफी समय पहले मैंने क्या शायरियां लिखना शुरू करा था।
0: जी
1: तो वो हो गए, बात हो गई जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय बस ऐसे ही कुछ लाइनें अगर मन में आई तो लिख दिया। तो जो वो जो एक शुरुआत थी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। फिर जो है कुछ एक शायरी लिखी, फिर दो, फिर चार, ऐसे करके मैं एक अपनी डायरी में शायरियां लिखता चला गया। लेकिन कुछ पता नहीं था कि ये शायरियां कहाँ लेके जाएंगी, कुछ पता नहीं था इनका क्या होगा। लेकिन जो है एक यूं ही जो है एक मंच मिला मुझे चेन्नई में, चेन्नई में वाइल MBBS जो है एक प्रोग्राम में ही एक कवि आए थे, उनसे मुलाकात हुई तो उनने कुछ कविताएं सुनी, तो उन्होंने कहा कि जो है यार आप आओ हमारे साथ भी कवि सम्मेलनों में जोड़ो। उस दौरान मैंने जो है एक शुरुआत में एक दो कवि सम्मेलन करे, उसमें जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो फिर मेरे अंदर वो और अच्छा लिखने की जो है
0: अच्छा।
1: इच्छा जागृत हुई। अब चेन्नई में ही जो है मेरे को एक मौका मिला, एक एक्चुअली नेशनल कवि सम्मेलन का एक था, तो
0: अच्छा
1: उन्होंने, लेकिन उनका एक टॉपिक था, उन्होंने कहा कि इसमें जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा, उन्होंने कहा था भ्रूण हत्या पर लिखना है आपको।
0: अच्छा अच्छा
1: तो उस दौरान एक मैंने कविता लिखी थी भ्रूण हत्या पे, और वो मैंने ताज चेन्नई में था वो प्रोग्राम, और काफी अच्छे अच्छे जज थे उसमें, काफी बड़े बड़े कवि आए थे जो है, हास्य कवि जो थे उसमें काफी फेमस है, जो क्या नाम है, शर्मा, महेंद्र शर्मा है,
0: सुरेंद्र
1: और भी
0: शर्मा,
1: सुरेंद्र
0: सुरेंद्र शर्मा जी,
1: शर्मा, हाँ वो
0: सुरेंद्र
1: आए
0: शर्मा,
1: थे, सुरेंद्र
0: हाँ अच्छा।
1: शर्मा जी, उनसे बहुत ही करीबी से मुलाकात हुई उनसे जो है। उन्होंने मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, बेटा तुम्हारी उम्र में तो हम फूल पत्तियों पे लिखते थे, तो इतने सीरियस इश्यू पर कैसे लिख रहे
0: हाँ
1: हो। तो बड़ा वाकया आज भी याद रहता है। तो उस कवि सम्मेलन में सर मैं विनर रहा था, मुझे जो है अच्छा गोल्डन ट्रॉफी और काफी उनके हाथों से वो सम्मान मिला था
0: अरे वेरी
1: चेन्नई में।
0: गुड, बहुत बढ़िया।
1: जी सर,
0: तो
1: जी
0: मल्टी
1: सर,
0: टैलेंट।
1: जी सर,
0: तो अब कुछ देखिए, आपको शेर व शायरी का शौक है, शेर व शायरी का शौक मुझे भी है, तो कोई शेर व
1: जी
0: शायरी या कोई कोई छोटा सा अगर कुछ सुनाना चाहें आप, तो एक
1: सर, बिल्कुल बिल्कुल
0: वो भी
1: बिल्कुल,
0: हो जाए।
1: मतलब
0: बिल्कुल
1: एक कवि से पूछना ही नहीं है, तैयार रहता हूँ कभी।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत है इरशाद।
1: जी सर, तो अर्ज किया है सर कि जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं,
0: वाह वेरी गुड।
1: जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं, लड़खड़ाया हूं अगर तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं,
0: ओ वाह
1: लड़खड़ाया हूं अगर
0: वेरी
1: तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं, क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे, क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे कि जिंदा तो हूं मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं मैं,
0: अरे वाह वाह, बहुत
1: जिंदा हूं
0: बढ़िया,
1: मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं
0: वाह,
1: मैं।
0: जिंदा
1: थैंक
0: तो हूं मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं मैं, वाह क्या बात है,
1: यू सर,
0: बहुत
1: थैंक यू
0: बढ़िया। ये
1: सो
0: तो हमें
1: मच
0: पता नहीं था, नहीं तो हम तो एक प्रोग्राम आपके साथ शेर व शायरी का ही कर लेते
1: सर,
0: बहुत मजा आ गया। आप तो
1: थैंक
0: मल्टी टैलेंटेड हैं, आप गाते भी हैं,
1: यू सर,
0: कंपोज भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो
1: थैंक
0: आप
1: यू
0: ये
1: सो
0: थोड़ा
1: मच
0: सा
1: सर।
0: अपने YouTube चैनल के बारे में बता दिए, इतने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप ओरिजिनल सॉन्ग
1: हाँ
0: रिलीज
1: हाँ
0: करें, तो अब ये जो प्रोसेस होता है एक गीत के जन्म से लेकर उसको रिलीज तक का, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये किस तरह से
1: जी
0: चलता
1: जी सर, एक्चुअली मैंने मेरे यूट्यूब चैनल तो है, दो यूट्यूब चैनल्स हैं, एक तो
0: है?
1: मेरे नाम से बनाया है मैंने अरुण शर्मा नाम से,
0: जी
1: एक मैंने बनाया था म्यूजी रिकॉर्ड्स, एक लेबल जो है मैंने उसको असाइन करा, एक लेबल के थ्रू उसको बना करके उस पर डालता हूँ फिर मैं।
0: अच्छा
1: तो इसमें ये होता है कि जैसे कुछ गाने जो है मैंने, जैसे मैंने अभी एक गाना लिखा था और वो गाना बहुत अच्छा चला जो है, काफी सारी एनजीओ ने उसको यूज करा है, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ।
0: अच्छा
1: तो वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर था, तो और उसको जब मैंने कंपोज किया तो वो जो गाया है एक लड़की थी मुजफ्फरनगर, इरम फातिमा,
0: अच्छा
1: उन्होंने गाया इस गाने को, और वो गाना बहुत सुर्खियां बटोरी है उस गाने ने, काफी जो है पेपरों में उसका वो रहा। और वो गाना इस तरह के गाने जो मैं जैसे कोई दूसरे सिंगर्स में रहते हैं तो वो मैं अपने लेबल के थ्रू रिलीज करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है सर इसमें, जैसे मान लो अपना आपने कॉम्पोजिशन अपन ने रेडी किया, गाना कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन हमने जैसे दिमाग में आई, धुन आई, धुन के हिसाब से फिर अपन ने लिरिक्स आए, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है फील कि वो आप किस दिशा में जा रही है वो फील उसकी। तो इस तरह ये गाना जैसे रेडी होता है फिर हमारा क्या है कि जैसे उस गाने को आपने प्रोडक्शन करवाया म्यूजिक प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन करके डबिंग हुई, डबिंग करके वो मिक्स मास्टर होके रेडी हो गया। अब इसमें इस जैसे सारे दो चीजें होती हैं कि यूट्यूब पर डाल दो, एक तो एक होता है कि वो गाना सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी बजे। तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट नाउअडेज। अभी तो आराम से अपन, जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको आपसे एनुअली कुछ चार्ज लेती हैं, 3-4 हजार रुपए एनुअली लेती हैं।

0: आप उनको अपना उनकी साइट पर सारा डिटेल शेयर करना होता है, हमारा ऑडियो डालना है, अपना सॉन्ग का नाम टाइटल पूरा क्लियर करके, वो सारा काम वो करती हैं। वो आपके ऑडियो को सारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाएंगी और साथ में उस की स्ट्रीमिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप तक जो है आपके अकाउंट में पहुंचाएंगी।
1: अच्छा,
0: जी, तो ये आजकल जो है ट्यून कोर है, डिस्ट्रोकिड है, कई बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि आजकल इसी वजह से आजकल ये आसान हो गया है कि अपन को गाने बना करके अपन सारी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। ये है, और सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सब
1: करते
0: इसमें।
1: ही ये तो बहुत नई चीज पता लगी डॉक्टर साहब मेरे को तो। ये आपका मतलब है बेसिकली ये सब प्रोफेशनलाइज हो गया एक तरह से सारा,
0: यस सर, यस
1: बस
0: सर, यस सर,
1: प्रोफेशनलाइज हो गया है सारा मामला।
0: जी सर, जी
1: तो
0: सर,
1: नए लोगों को बड़ा चांस मिल रहा है इसपे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, इसमें से बेटर
1: हाँ,
0: कुछ
1: लगातार करते रहना,
0: लगातार करते रहो, बस ये इंपॉर्टेंट
1: आप गैप नहीं दे सकते, बिल्कुल
0: है।
1: सही।
0: ना ना ना,
1: तो चलिए यहाँ एक रुक के एक आपका हम रिकॉर्डेड गाना और सुनेंगे और फिर
0: ये है
1: उसके
0: सर।
1: बाद
0: जी सर,
1: आखिरी सवाल।
0: जी सर, जी सर,
1: समय कैसे जा रहा है पता ही नहीं लग रहा
0: पता ही नहीं पड़
1: अब
0: चुका।
1: ये बहुत काफी टाइम हो गया अपने को बात करते हुए। ये और मुझे लग रहा है कि बहुत कम बातें कर पाए हम समय सीमा की वजह
0: हाँ
1: से, अदरवाइज लगता तो अब दो
0: सही
1: 3 घंटे बैठ के बात करते रहते हैं ऐसा लगता है।
0: सर।
1: चलिए रुक
0: नहीं,
1: जाते हैं,
0: थैंक
1: एक गाना सुनते हैं फिर।
0: यू, थैंक यू सर।

0: हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। तो अब ये जैसे मैं ही क्यों, आपका जो नवीनतम गीत है ये काफी इसको पॉपुलरिटी मिल रही है, तो अभी बताइए आगे आपका क्या प्लान है, कुछ और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अपने?
1: जी सर, अभी मैंने मेरे पास में अभी एट प्रेजेंट करंटली करीबन 7 to 8 सॉन्ग्स रेडी हैं, सब रिलीज होंगे।
0: अच्छा
1: सर, इसमें हर महीने एक गाना निकालने का प्लान है बस अभी इसमें मेरा। तो सबसे अभी रिसेंट में जो है, एक मैंने अभी बहुत अच्छी गाना लिखा है, परिंदा।
0: अच्छा
1: परिंदा गाना जो है वो मतलब मेरी, वो गाना मेरे काफी सोल के क्लोज है वो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के साथ साथ क्या एक एनजीओ भी चलाता हूँ,
0: अच्छा।
1: तो जी सर, तो जो है सब ह्यूमन एंड लव नेचर फाउंडेशन नाम से एनजीओ है वो। तो उसमें जो बच्चे हैं उन बच्चों को कास्ट करूंगा मैं, और कुछ बच्चों की जिनकी जिंदगी हमने सच में बदली है, उनको उनकी स्टोरी को उस गाने के थ्रू दिखाना चाहूंगा मैं। तो वो मेरे को उम्मीद है कि वो गाना काफी लोगों के दिलों तक पहुंचेगा।
0: चलिए बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर।
0: और ये एनजीओ भी चला रहे हैं आप, इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक
0: तो
1: यू सर।
0: डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जुनून को कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे मेडिकल कॉलेज के दिन हो, इंडियन आइडल का मंच हो, कवि सम्मेलन का संसार हो, या ओरिजिनल म्यूजिक की रचनात्मक दुनिया, आपने हर मोड़ पर अपने भीतर के कलाकार को जीवित रखा है। मुझे विश्वास है आपकी कहानी हमारे श्रोताओं विशेषकर युवाओं को यह प्रेरणा देगी कि जीवन में सफलता केवल एक पहचान बनाने में नहीं, बल्कि अपनी सभी प्रतिभाओं को सम्मानपूर्वक जीने में है। रेडियो परिवार की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सफलता और आपकी संगीत एवं साहित्यिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामना देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपके इस मंच पर आकर के सभी श्रोताओं के साथ जुड़ने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।
0: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ, नमस्कार।
2: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।

बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो।

0: में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था, तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी? नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या अर्ज है? एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी, फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठी चार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था, पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी? पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गईं, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गईं। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक

प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई। अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।

एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था, वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं, क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: घर वाले मुझे सुबह सुबह रोज ऐसे उठाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, मैं एक अकेला सैनिक बचाऊं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र होता है दोस्तों, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं।

0: Patata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 10 के अभी 90.8 FM।

0: अजेय मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम।
1: भारत की एमसी मैरी कॉम ने पांचवी अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की सवेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है।

0: अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
1: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
0: हाँ?
1: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।

0: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: दो साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज चार महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरीकॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरीकॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
2: Interesting. I can see a great cheering crowd. Mario of the United States has punched to the right. Marycom of India defended very well and punched back. And now, showers of punches from Mary.
0: आश्चर्य की बात है कि मैरीकॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरीकॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरीकॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और

0: ये लड़कियों का है। बापू ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
1: अरे बेटा कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा।
0: पापा आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
1: मेरा नाम ऊंचा होगा, क्या कह रही है ये।
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई।

0: गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है, जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।

0: मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे अरे, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ, रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डट कर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से जी। देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।

0: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती।
1: Yeah.

0: 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थीं। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

मार्च का महीना है, होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, तो ये ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिलने, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु,

पहुंच गए वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हाँफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी।
1: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुबैया,
1: मैं थोड़ा सुस्ता लूं।
2: ठीक है,

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने, सच सुनिए।
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने।
0: चलो
1: संभल कर।
0: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: को सूर्य की किरणों का कमाल।
1: वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं।
0: वाह, हम यही कोई समुद्र तल से 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंदी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां, एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे, तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: जहां सब कुछ जमा हुआ है वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थीं।

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी, सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबूजी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा।

चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा, अच्छा ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब, वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है, अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचें।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह,
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब।
0: अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है?
2: साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है।
0: पीर पंजाल?
2: जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं, तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब।
0: लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो?
2: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
0: अच्छा।
2: यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
0: अच्छा,
1: शहर भी।
0: बहुत अच्छा।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: ऐसा निजाम है कुदरत का। हाँ? एकाएक ये फूल कहाँ से? भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं, पर क्यों? एक खास वातावरण के कारण।
1: अब मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो सुपैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
1: हाँ।
0: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
1: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब समझा।
0: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: उनके करीब गया।
1: आप सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माना हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब। माना हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह,
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है साहब।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
2: और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
3: बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान है, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर, ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है।

0: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूँ, जो उत्तरकाशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहाँ पीर पंचाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहाँ बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं 4000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
1: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े, सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: टम्पोट।
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में। आशा करते हैं आप सभी किसान साथी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से आप तक हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचा सके, जिससे आजीविका में सुधार कर सके, साथ ही अपनी कृषि भूमि में हो रहे बदलावों को समझ पाए और अपनी कृषि संबंधी जो भी समस्या है उन्हें हम तक पहुंचा सके। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए नई से नई तकनीकी की कृषि को आपके परीक्षण आपको दें, उसके बारे में आपको जानकारी दें और इसके लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कहां से इसका लाभ लेना चाहिए आदि जानकारियां को आप तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है। साथ ही हमारा किसान भाई भी हमें फोन कॉल के माध्यम से हमारे रेडियो स्टेशन पे आकर भी अपनी समस्याओं को अब तक हमारे साथ साझा करते आया है और हमारे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की यही प्रयास रहा है कि हम उनकी समस्याओं को एक्सपर्ट के माध्यम से उस समस्याओं का हम निदान कर सके। तो किसान साथियों आज पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज पुनः हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारा जो यूथ है, हमारा जो किसान है, वह इस जानकारी को लेकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है और अपने व्यवसाय के साथ ही अपनी खेती में भी सुधार कर सकता है।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: किसान साथियों आज का खेतीबाड़ी कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि उन्नत कृषि के लिए हमें कृषि यंत्रों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हम कृषि यंत्रों का सहारा लेते हैं तो इसमें हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे आदि जानकारियों को हम जानेंगे। वैसे तो हम बता दें कि अगर कृषि में हम यंत्रों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा किसान है, अभी अधिकतर जो किसान है हमें मजदूरी के लिए किसानों की

0: बहुत बहुत समस्या देखने को मिलती है। हमारा खेत जब तैयार हो जाते हैं तो समय पर हमारी फसल को निकाल लेना बहुत ही आवश्यक होता है, और समय समय पर जो हमारी कृषि है, कृषि में समय समय पर उचित समय पर दवाई का छिड़काव करना, उसकी कटाई, उसकी बुआई आदि चीज़ों में एक समय जो होता है, समय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किसान साथियों, हमें अभी बदलते ही समय में मजदूरों की कमी हमें साफ नज़र आती है, तो इस समस्या से हमारा किसान काफ़ी जूझ रहा है कि कैसे हम कम मजदूरों में अधिक से अधिक काम करवा सके, तो यहाँ पर इसका हमको लाभ मिलता है कृषि यंत्रों से। तो आइए जानते हैं कैसे कृषि यंत्रों से हमें किस तरीके से लाभ मिल सकता है और कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियों को हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: खरीफ फसलों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अगर हम पूरी खेती की बात करें तो कृषि यंत्रों का उपयोग किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है?
3: जैसा कि किसान भाई जानते हैं और वो इस चीज़ को फील भी किए हैं कि जो अभी किसानी रही है, जो भी हम खेत में काम करते हैं, अभी हमारे पास मजदूर अवेलेबल नहीं रहते हैं। हम देखें कि गांव से जूं जूं मजदूरों ने शहर की ओर जाना शुरू किया, वहां पे उनको जो नौकरी का या वहां पे जो काम का सवाल मिला, उस हिसाब से जो गाँव में खेती रह गई उसके लिए हमारे पास मजदूरों की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो उसमें अब हम हमारे किसान भाई जान चुके हैं कि सिर्फ यंत्रों से ही हम जो आगे की खेती है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं तो खेतों में मजदूरी से अभी वो वक्त नहीं है कि हम उस हिसाब से खेत से फायदा पा सके। इसलिए हमारे किसान भाई
2: धीरे धीरे समझने लगे हैं यंत्रों का उपयोग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पहले मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब मजदूरों की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान भी हो रहा है, मुश्किलें भी हो रही हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का जो उपयोग है हमारे किसानों का काम आसान कर रहा है। तो और किस तरह से हमारे किसानों को ये सहूलियत पहुंचा रहा है, कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं, बताएंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक हमारी रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं।
4: कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। प्लांटर की बात करें तो इस यंत्र का इस्तेमाल बीजों को एक निश्चित बीज की दूरी पर पंक्तियों में बुआई के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों और स्प्रो किटों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कल्टीवेटर का इस्तेमाल जुताई के बाद खेतों में ढेलों को तोड़ने और मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल कतार युक्त फसलों में निराई के लिए भी किया जाता है। अगर हम जुताई के काम की बात करें तो इसके लिए रिवर्सिबल 2 बॉटम और 3 बॉटम के MB फ्लो है, जो मिट्टी की काफी अच्छी जुताई करते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ पलटते भी हैं। मिट्टी पलटने से खरपतवार नीचे दब जाते हैं और बाद में कार्बनिक खाद का काम करते हैं। वहीं ट्रैक्टर खेती के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल की कटाई और ढुलाई के काम आसानी से हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेसर, जीरो टील सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल को जोड़कर खेती के काम कर सकते हैं।
2: तो जाना आपने कृषि यंत्रों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को आसान बना सकते हैं, काम को आसान बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब खरीफ फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। खरीफ फसलों का यहां पर बुआई का समय भी है, हमारे किसान काफी खेतों में लगे हुए हैं, तो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों को बिल्कुल मदद कर सकते हैं? रिपोर्ट में भी हमने देखा है, आपसे भी जानना चाहेंगे।
3: जैसा कि अभी बारिश का मौसम है और अभी इस बारिश के पानी से हमारे जो किसान लोग हैं वो खेत की तैयारी में लगे हैं कि बुआई करनी है। ज्यादातर किसान लोग इस मौसम में हम देखते हैं कि धान लगा देते हैं। अगर हम धान की बात करेंगे तो धान की बुआई के लिए ट्रांसप्लांटर है, जो ट्रांसप्लांटर सेल्फ प्रोपेल्ड भी रहता है या राइडिंग टाइप भी रहता है। तो अभी लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज में पानी की किल्लत है, तो वहां पर ट्रांसप्लांटिंग के बदले डायरेक्ट सीडिंग, जो हमारे किसान लोग डायरेक्ट बुआई करना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट सीडर है या इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर है। और अगर हम बात करेंगे छोटे किसान की, उनके लिए भी यंत्र है, वो चाहे तो बुआई कर सकते हैं ड्रम सीडर से या प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर से। तो ये चारों वो बुआई कर सकते हैं इससे या ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटर से कर सकते हैं। तो किसान जिस हिसाब से अपने खेत को तैयार, अगर वो नर्सरी के लिए तैयार है तो ट्रांसप्लांटर इस्तेमाल करें, नहीं तो
2: कर सकते हैं। तो देखिए, अगर धान की खेती आप करना चाह रहे हैं तो कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, इनके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में खुद से काम करने में या मजदूरों से काम करवाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे में यंत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे तो फायदा होगा। बरसात के मौसम में जैसे आपने कहा कि यंत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं, बारिश आ जाए ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं?
3: जैसा कि हम देखते हैं कि जो किसान लोग जिनके पास यंत्र रहते हैं, बारिश की वजह से उन यंत्रों में पहली बात है कि यंत्र के खराब होने का, उसमें जंग लगने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो मैं यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो भी यंत्र आप इस्तेमाल करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से हाउसिंग करना जरूरी है, जब भी आपने रख रखाव करना की जरूरी है। जैसा कि आप हम देखते हैं कि अक्सर घरों में हम जो मोटर कार या बाइसिकल रहता है उसको तो हाउसिंग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यंत्र रहता है हमारे खेत पे जिससे हम पूरा रोजगार लेते हैं, उसको हम बाहर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, किसान ने जो उसको 50,000 लगाया या 1,00,000 लगाया खरीदने में, वो 4-5 सालों में बारिश की वजह से खत्म हो जाता है,
2: खराब हो जाता है।
3: तो इसलिए यहाँ पे किसान भाइयों को पहली सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जो भी यंत्र आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से मोम जाम से या अगर आप कोई शेड बना सकते हो उसमें हाउसिंग करके उसमें स्टोर कर, जब भी आप खेत पे ले जाओ उसके बाद वापस घर के सामने उसको हाउसिंग करना है। इसी तरह अगर ट्रैक्टर की बात करें, बहुत सारे किसान लोग के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी क्या रहता है कि अगर आपने ट्रैक्टर को सीधे बाहर रख दिया ऐसे ही इस बारिश के मौसम में, उसकी बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसमें खासतौर पर प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर को भी सही अंदाज से स्टोर करने का, घर में हाउसिंग करके बाहर हाउसिंग करना बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा भी हमारे किसानों के पास बहुत सारे जैसे सीड कम्फर्टिलाइजर ड्रिल है या जहां जाम होने का चांस रहता है वहां पे किसानों को जरूरी है कि कम से कम, अगर पूरी मशीन नहीं कम से कम उस एरिया को वो कवर कर पाए, उस मशीन के उस हिस्से को वो कवर कर पाए, तो वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।
2: जहां पर आशंका रह सकती है कि जंग लग सकता है पानी पड़ने से, तो ऐसे में पूरी मशीन नहीं तो उस छोटे से ही भाग को आप ढककर जरूर रखें। देखिए, आपके पास कोई भी यंत्र है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। आप खुले बरसात में यूं ही छोड़ देंगे तो खराब हो सकता है। आपने इतना पैसा लगा के कोई चीज ली है, आपके काम की चीज है, अगर हम उसकी देखभाल ढंग से नहीं करेंगे, रख रखाव ढंग से नहीं करेंगे, तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को ये बताएं, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह से ध्यान रखें खुद के लिए भी और यंत्रों के लिए भी, क्या सावधानी बरतें इस्तेमाल करते समय?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पे किसान भाइयों को मैं ये फिर से आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे गांवों में बहुत सारे जोखिम इसी वजह से होते हैं कि जब भी कोई यंत्र हम खेत पे इस्तेमाल करते हैं हम उसका ख्याल नहीं रखते। जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई मामूली सा फावड़ा भी यूज करेंगे तो पैरों में जूता नहीं पहनते हैं, तो उससे कभी कभी क्या होता है जो फावड़ा है पैर में लग जाता है, और इतने दूर खेत में काम करते हुए वहां पे जो हम बोलते हैं फर्स्ट एड वो भी नहीं होता है, तो उससे जख्म और बढ़ जाता है। तो पहले मैं किसान भाइयों को बोलूंगा कि या जो भी आप यंत्र यूज करते हैं पहले अपने प्रोटेक्शन देख लीजिए। जैसे अगर आप स्प्रे करते हैं तो नाक को ढक के रखना है, मुंह को ढक के रखना है। अगर आप कोई यंत्र जो तेज है उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने जो पैर है हाथ है इनमें पैरों में गम बूट्स यूज करना है और हाथ में ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे बहुत सारे किसान भाई थ्रेशर चलाते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, थ्रेसर चलाते समय हमारा जो किसान है काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी उसे ख्याल ही नहीं रहता है, जल्दी के चक्कर में वो कभी कभी उनके बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके उंगलियां कट चुकी है, बहुतों के हाथ कट चुके हैं, तो इस प्रकार की कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं हमारा जो किसान है वो बाजार से सारे ये उपकरण तो ले लेता है, कृषि यंत्रों को ले लेता है, बल्कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है कहीं पर भी, ये इसके प्रशिक्षण केंद्र अभी तक तो हमें नहीं दिखाई पड़े हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कृपया कर हमें बताएं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: और रही बात सावधानियां बरतने की, हम देखते हैं कि जो तमाम घरों में चैप कटर है, जो चारा काटने की मशीन है, अक्सर इंजरी हमारे जो गांवों में इस चैप कटर के जरिए होती है, बच्चा उसमें अटक जाता है, ब्लेड से कट जाता है, या चारा काटते समय हाथ आगे चला जाता है वहां कट। तो आजकल हम देखते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए कवरिंग डिवाइस बनाए हैं, आप चारा काटने की मशीन को देखो उसके लिए एक सिंपल लॉक आता है, उसको आप बंद कर सकते हैं, या अगर वो ब्लेड है उसके ऊपर कवरिंग है ताकि उसके साथ अगर कोई छेड़खानी भी करेगा तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी जो इंजरी होती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है वो है जहां पे कहीं पे रोटरी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा रोटावेटर है या थ्रेशर है, जहां पे घूमने वाला उसका जो शाफ्ट होता है उसमें अक्सर हमारे कपड़े फंस जाते हैं। जब भी हम थ्रेशर को इस्तेमाल करें, जब भी हम रोटावेटर के साथ काम करते हो, तो हमको अपने जो कपड़े हैं ज्यादा कपड़े लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए,
2: ढीले
3: कपड़े नहीं, ये याद है। इसी तरह जब हम धराती यूज करते हैं, हाथ में जख्माने का चाहो तो हम ग्लोव्स करके काम करें। तो ये जो मेन मैंने बताया आपको कि जो भी ज्यादा नुकसान होता है इन्हीं चीजों से होता है, और आजकल हमारे किसान ज्यादा जागरूक भी हो गए हैं, तो खासतौर कोविड के टाइम से, तो जो वहां पे आप प्रकाश लेते इसी तरह खेत के टाइम में भी आप प्रकाश लेते सावधानियां बरते रहे।
2: तो बिल्कुल, तो देखिए ये कुछ यंत्र हैं जिससे यहाँ पर हम।
0: डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान का ये सवाल था कि हमें कितने उपकरण रखना चाहिए, हमें बुआई के लिए अलग, फिर कटाई के लिए, उसके साथ गुड़ाई के लिए आदि के लिए काफी यंत्र हैं, तो हमें उनमें से कौन सा यंत्र रखना चाहिए, इसको लेकर हमारे एक किसान का सवाल था, तो कृपया हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
3: आजकल के डेट में इतना यंत्र रखने की कोई जरूरत नहीं, आप कोशिश, क्योंकि हमारे अक्सर किसान छोटे किसान हैं, आजकल गवर्नमेंट जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर से हमारे किसान भाई मशीन ले, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत, उनके पास खेत छोटे हैं, तो अगर वो कोई नई मशीन खरीदे, इतनी मशीन खरीदेंगे तो फायदा कहां से लेंगे। ये तो मैं, अब उनका जो सवाल है कि इसके अलावा कौन सा भी यंत्र हम रखें, ये हमारे किसान भाई कौन सी खेती करते हैं उसके हिसाब से उस पर निर्भर करता है। अगर वो धान की खेती करते हैं, आप डायरेक्ट सीडेड प्लांट रख सकते हैं या ड्रम सीडर रख सकते हैं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो मक्का के लिए आपके पास मक्का के लिए प्लांट आता है अलग से। अगर आप हाइब्रिड सीड यूज करते हैं मक्के में तो उसके लिए एक स्पेशल जो जिसको हम एडवांस इक्विपमेंट बोलते हैं न्यूमेटिक प्लांटर, तो आप न्यूमेटिक प्लांटर रख के या उसको लाके खरीद के दूसरे किसानों के इस्तेमाल के लिए भी दे सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: में हम बात कर रहे थे जिससे सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा रहता है, हमारे पास चारा काटने की मशीन होती है, थ्रेशर होता है, रोटावेटर होता है, या और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर के साथ किसी मशीन को जोड़ते हैं उसके पीछे आदमी आ जाता है,
2: जी।
3: तो जब भी ट्रैक्टर को हम चलाएं उसके पीछे किसी भी आदमी के आने से हमको बचना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन जोड़ते हैं बीच में आदमी आ जाता है ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ने के समय, और तो कभी कभी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ते हुए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में या पीछे कोई भी आदमी नहीं है। बाकी जो अभी तक मैंने बताया कि चारा काटने की मशीन है, रोटावेटर, ओ हाँ, यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा कि जो थ्रेशर है उसमें जो घूमने वाला शाफ्ट होता है उसको कवर करना जरूरी है। आप घर में भी एक सिंपल जाली का कवर बना सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते ताकि उसमें कपड़ा अटक ना जाए। बाकी हम बात कर रहे थे कि ऐसे चीजों के साथ इस्तेमाल करते समय हमको जो अपने कपड़े हैं ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और जो छोटे हम यंत्र यूज करते हैं चाहे दराती हो फावड़ा हो उस टाइम में हमको ग्लोव्स पहनना जरूरी है। और रही बात जो स्प्रेइंग के समय, तो जो हम स्प्रे करते हैं उस टाइम क्या होता है कि जो फ्यूम्स है हमारे अंदर चला जाता है, जो स्प्रे हमारे अंदर चला जाता है, तो उसके टाइम में हमको अपने मुंह को ढकना पड़ेगा।
2: जैसे भी कोविड ने हमें सिखा दिया है मास्क पहनना, तो अगर आप स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुंह को ढक के रखें, क्योंकि सांस के जरिए ये सारे जो उसके हानिकारक तत्व हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम और आज के जो हमारे कृषि के मुख्य बिंदु हैं वो है कृषि उपकरणों को लेकर। कौन से उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साथ ही अगर हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका रख रखाव कैसा करना चाहिए, साथ ही जो उपकरणों की वजह से हमें जो चोट लग जाती है, जो हम घाव बन जाते हैं, ऐसे समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, आइए जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जैसे कि जो भी यंत्र हम इस्तेमाल करें उसका सही से उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे किसान भाई को पूरी जानकारी हो कि यंत्र कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है।
3: तो इसके लिए क्या कोई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं?
2: उसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर किसान भाई नजदीकी केवीके से भी जुड़ के थोड़ी सी भी ट्रेनिंग ले तब भी कम से कम जो उसको फायदा मिलेगा उसमें 5 से 10% चेंज आएगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जितने भी संस्थान है वो अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे जितने भी संस्थान है उनमें एक्सटेंशन का एक अलग से डिवीजन रहता है, तो उनका यही काम होता है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए कि इस यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम मेरी किसान भाइयों से यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि वो नजदीकी केवीके से भी जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जो मेन संस्थान है पूसा में है या जो भी जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे जरूर कृषि विभाग का कोई संस्थान होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी कि जो भी आपका लोकल यंत्र हो या पूरे देश में जिसका इस्तेमाल हो उसको कैसे चलाना है। और एक बार आप वहां से ट्रेनिंग लेके उस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको खुद महसूस होगा कि कितना फर्क आ गया पहले इस्तेमाल में और बाद के इस्तेमाल।
3: बिल्कुल। तो देखिए, हम कुछ भी, हम गाड़ी ही लेते हैं तो उसे भी चलाना सीखते हैं पहले, तब जाकर हम कहीं गाड़ी चला पाते हैं। ऐसा ही हमारे कृषि यंत्रों का भी साथ है। आप उसे चलाने की पहले ट्रेनिंग ले लीजिए कि किस तरह से आपको चलाना है, कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या सावधानी बरतनी है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो बदलाव खुद ब खुद आप महसूस करने लगेंगे, आपकी खेती किसानी में आसानी होगी, बदलाव आपको खुद नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं यहां पर सब्सिडी की, क्योंकि हमारे किसान जानना चाहेंगे जरूर कि अगर इन यंत्रों को हम ले रहे हैं, अगर इनका मूल्य ज्यादा है तो क्या हमें कोई अनुदान यहां पर मिलेगा?
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कृषि को, पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कृषि को बोलते हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी रियासत है वो अपने हिसाब से वहां पे जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा यंत्र जो महत्वपूर्ण रहते हैं उसी हिसाब से उनपे सब्सिडी देता है। उसके अलावा हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी जैसे हम पराली के लिए बहुत सारे यंत्र है उनपे सब्सिडी रखा है। तो किसान भाई एक तो ये है कि जो उनका लोकल इक्विपमेंट है, लोकल यंत्र है जो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग यंत्र के लिए सब्सिडी है। उसके अलावा अगर हम सेंटर की केंद्र की बात करें तो वहां पे भी कुछ यंत्र है जिन पे उनको सब्सिडी मिल सकता है। उसकी जानकारी अगर वो लेना चाहेंगे जो स्टेट रियासत में जो भी यंत्र है वहां पे किस पे सब्सिडी है, वहां का जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बिल्कुल वहां से आपको जानकारी मिलेगी। और जो केंद्र की है आप उनकी साइट पे जाके पूरा लिस्ट देख सकते हैं। खासतौर पर जो हम पराली के लिए हम देखते हैं कि उसकी समस्या जो है उसके लिए बहुत सारे यंत्रों पे जो सब्सिडी है वो सरकार ने घोषणा की है उसकी, वो आप ले सकते हैं।
3: बिल्कुल।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
2: देखिए जो कस्टमर एग्जेंट है, पहले हमको देश का जो एग्रीकल्चर है उसको समझना पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल, जरूर।
2: हम समझते हैं कि लगभग 80-85% लोग हमारे जो किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है।
3: जी।
2: अगर ऐसे किसान को हम बताएं कि आप जैसे धान की फसल लगा रहे हैं, आप एक किसान है धान की फसल लगा रहे हैं, उनको बताएंगे कि बुआई के लिए ये मशीन लेनी है, आपको जमीन तैयार करने के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद कटाई के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें जो खरपतवार वगैरह के लिए ये ऐसी मशीन लेनी है, तो एक किसान को एक फसल के लिए कम से कम 10-12 मशीन रखनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल।
2: अब एक किसान 1 हेक्टेयर उसके पास एरिया है, लैंड है, उसमें उस मशीन का इस्तेमाल 5-3 दिन ऐसे होगा, तो बाकी साल ऐसे बैठ के रहेगा। तो इसका कैसे हम फायदा बढ़ा सके, इसके लिए कस्टम हायरिंग का कंसेप्ट है। कस्टम हायरिंग पे सरकार की ओर से सब्सिडी भी है कि एक एरिया में जो ज्यादा मशीनें यूज होती है उसका एक सेंटर रखें, ताकि वहां से किसान लोग वो मशीन लेके, वो यंत्र लेके अपने खेत में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के हिसाब से पे करें, और उसके बाद वो यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे रखा जाएगा। इसमें किसान लोग आपस में मिलके भी वो यंत्र खरीद सकते हैं, सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद जो यंत्र है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम आज बात करते हैं कैब की जरूरत पड़ती है, हर एक के पास अगर गाड़ी नहीं है तो वो कैब बुक कर लेता है, अपने हिसाब से जहां तक जाना है पे करता है। ऐसे ही खेत में जो यंत्र इस्तेमाल होना है, कितना इस्तेमाल किया उस हिसाब से पे किया, और यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे, तो किसान भाई आगे आके अपना कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकते हैं।
3: जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर का यहाँ पर जिक्र किया, एक तो ये बहुत ही अच्छा है सभी किसानों के लिए, क्या युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर बन सकता है ये?
2: बिल्कुल, इसमें जो हमारे युवा हैं वो आगे आके इसमें रोजगार कमा सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते, सिर्फ अपना नहीं कमा सकते। हम देखते हैं कि अगर हम एक एरिया में एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, पहले तो ये है कि जो उसकी एक डिटेल्स रखेगा, एक आदमी की जरूरत है।
3: जी,
2: जो किसान लोग बुक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, किसके यहाँ खेत पे जाना है, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ेगा।
3: जी,
2: खेत पे मॉनिटर करने के लिए एक आदमी को रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है उसको भी रोजगार मिलेगा। मतलब एक कस्टम हायरिंग सेंटर से हम मान सकते हैं कि कम से कम अगर कुछ नहीं तो 3-4 लोग जुड़ सकते हैं।
3: जी।
2: 3-4 लोग अपना रोजगार कमा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया में करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है ये इसीलिए है, एक तो एक साइड से किसानों को फायदा मिलता है, दूसरे साइड से कि जो हमारे युवा है वो अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना सेंटर है, लोगों को सर्विस दे सकते हैं।
3: जी,
2: तो ये जरूर
3: तो रोजगार भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कितने फायदे हैं इस कदम के, एक तो हमारे किसानों को मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं जिससे वो अपने खेतों में आसानी से काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। ग्रामीण ही क्यों, हम शहरी युवाओं की भी बात कर लें, आप भी इससे जुड़ सकते हैं, एक कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं जिससे न केवल आपको फायदा मिलेगा बल्कि अन्य लोगों को भी आप रोजगार दे पाएंगे और सभी को आर्थिक रूप से यहां पर बल मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, हमारे किसानों के फायदे के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। आपने जिक्र किया यहां पर कि हमारे किसान हर स्टेज पर अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने खरीफ फसलों में धान का जिक्र यहां पर किया था कि आप अगर बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं तो आपको इन मशीनों की जरूरत है, आप उसके बाद भी तो मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खरपतवार आपने यहां पर कहा, खरपतवारों के लिए कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करें, या तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उसमें बहुत समय जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, निराई गुड़ाई खरपतवार में किसानों का बहुत समय जाता है और इसको करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक स्टेज होता है, पहले क्रॉप छोटा होता है उसमें अलग तरीके से करना है, बढ़ गया क्रॉप उसमें मशीन नहीं चल सकती है। तो अगर हम बात करेंगे खरपतवार के लिए, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे कुछ किसान लोग हमारे कल्टीवेटर को भी यूज करते हैं बीच में, लेकिन उसके अलावा भी कौन सा क्रॉप लगा है अगर उसके बीच में जगह है तो हमारे पास छोटे छोटे जिनको हम सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट बोलते हैं उसके पीछे रोटावेटर, जैसे हमारे पास मक्का है, मक्का के बीच में अच्छी खासी गैप रहती है, तो उसके बीच में हम छोटे यंत्र जैसे रोटावेटर, छोटा वाला रोटावेटर छोटा ट्रैक्टर के साथ चलते हुए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे जो इसके लिए स्प्रेइंग के लिए तो हम बूम स्प्रेयर यूज करते हैं, उसके लिए बूम स्प्रेयर यूज कर सकते हैं, या छोटे किसान जो जो हम नैपसैक स्प्रे जो बैकपैक बोलते हैं, बैकपैक बोलते हैं उसको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ किसान जैसे धान में खासतौर पर ये समस्या रहती है कि उसमें कैसे हम इनका जो वीड निकालने के लिए, उसके लिए आप कोनो वीडर भी यूज कर सकते हैं, जो छोटे किसान अक्सर रखते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल। तो देखिए, खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है जब हम खेती के काम कर रहे हैं, हाथ से कब तक निकालेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है, समय भी काफी जाता है। ऐसे में इन यंत्रों का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल। इस समय हम बात करें तो बागों की तैयारी भी की जाती है डॉक्टर रॉफ, बागों में कौन कौन से यहाँ पर यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान, इस पर क्या कहेंगे आप?
2: जैसे जो बागों की तैयारी है, जैसे हमारे पास जो बागों की तैयारी के लिए पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पेड़ है उनके आसपास में जो खेत है उसको जोतने के लिए एक छोटे जो इक्विपमेंट आते हैं जिनको हम जो रोटरी इक्विपमेंट उसमें लगा रहता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बागों में ज्यादातर स्प्रेइंग का समस्या रहता है, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जो ड्रोन अभी आया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन का, क्योंकि स्प्रेइंग करना बहुत ही मुश्किल काम है खासतौर पर बागों में।
1: और किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जानकारियां हमें मिल रही है, अगर हमें सारी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरपतवार बढ़ जाती है तो छोटी खरपतवार जब हमारी फसलें छोटी होती है उस समय हमको कम अलग तरीके से उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, और जब फसलें बड़ी हो जाती है तो हमें उसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी विपरीत समस्याएं हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसी के साथ ही हमें उसके हिसाब से हमें कौन से यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियाँ आप सुन रहे हैं। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और यहाँ पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों आइए जानते हैं, अगर हम हमारे बाग का अगर अपना बगीचा है उसमें अगर हम रोटावेटर चलाना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए और क्या हमें चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए आदि चीजों को हम जानेंगे, तो आइए सुनते हैं।
2: हम रोटावेटर का पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि
3: कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल
2: रोटावेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम जमीन की जुताई करते हैं आजकल अक्सर हमारे किसान भाई रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां पे हम MB प्लो को यूज करते हैं, जहां पे हम डिस्क प्लो को यूज करते हैं, उसके बाद जो जमीन तैयार होती है अगर हम साइड में रोटावेटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा सीडबेड तैयार होता है, मतलब उस जमीन में अच्छी नमी भी रहती है और उसमें जो हम बीज बोते हैं सही से निकल भी आता है। अब जो हमारे किसान भाई सवाल किए कि अनार की खेती में अगर आप रोटावेटर उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप सही में जो अनार का पेड़ है उसके आसपास में जमीन खोलना चाहते हो तो आप उसमें रोटरी इक्विपमेंट यूज कर सकते हो, ताकि उसके आसपास जो जड़ है उनमें सही से जो भी आप फर्टिलाइजर देना चाहोगे या कुछ भी उसमें न्यूट्रिएंट डालना चाहोगे वो सही से इस्तेमाल हो, या जमीन एरेट हो जाएगी सही से उसमें हवा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अनार के पेड़ के आसपास अगर आप जमीन खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप छोटा सा जो ट्रैक्टर वाला है वो सही से नहीं आ पाएगा,
3: क्योंकि इतना जगह नहीं होगी,
2: उतना जगह नहीं होता है। सेल्फ प्रोपेल आता है जिसके पीछे आप चल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला रोटरी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते।
3: तो पेड़ के आसपास है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे मिट्टी में अच्छी तरह से खाद हो चाहे उर्वरक हो वो जा पाएंगे और उससे आपकी अनार के पेड़ को ही यहाँ पर लाभ मिलेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं हमारे कृषि में लगने वाले उपकरणों को कैसे यह हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, साथ ही हमें ये कृषि यंत्रों का की देखरेख कैसे करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें हमारा सावधानी से इसका इस्तेमाल करना भी काफी जरूरी है। इसी के साथ आइए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं ड्रोन के ऊपर। हमारे डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में हमसे बता रहे थे ड्रोन के बारे में, तो आइए जानते हैं थोड़ी सी विस्तार से इसके बारे में, आइए सुनते हैं।
2: जो ड्रोन की बात है कि जो ड्रोन है बागों में उसका बहुत ही इस्तेमाल है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो सबसे बड़ी समस्या फेस करते हैं बागों में वो है कि उसमें स्प्रे करना है। अगर हम ड्रोन की बात करेंगे कैसी भी जमीन हो, अक्सर हमारे क्या होते हैं कि जो बाग है किसी ढलवान पे होते हैं या कहीं पे कोई पेड़ ऊंचा कहीं नीचा, तो उसमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल रहता है और टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और जो केमिकल है जो उसमें स्प्रे पेस्टिसाइड वो भी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसमें किसानों की जो आई है उसमें भी ज्यादा बढ़ाव नहीं होता है उसके बाद। तो इसीलिए जो ड्रोन है ड्रोन का बहुत ही उपयोग है उस बाग खेतों में, उसमें हम ड्रोन को इस्तेमाल करके किसी हाइट पर रख के ड्रोन से
3: अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में ही छिड़काव होता है, जितना जरूरी होता है उतना ही छिड़काव होगा, आपकी लागत में भी यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं होगी, लागत में कमी ही आएगी इससे। और कौन कौन से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने रोटावेटर के बारे में तो बता ही दिया कि कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से यंत्र हैं?
2: जैसे अभी हमारे किसान भाई कुछ जो यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम खरीफ की बात करेंगे अगर वो मक्का लगाते हैं तो कुछ लोग हम देखते हैं कि जो ये मक्का है इसमें, मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि अगर बहुत ही पानी है उससे भी इसमें प्रॉब्लम आती है, उससे भी इसका जो प्रोड्यूस है कम हो जाता है, और अगर ज्यादा खुश्क जमीन है तो उससे भी आता है। तो हमारे कुछ किसान भाई उसमें क्या कर देते हैं, एक फरो बना देते हैं और बेड पे प्लांटिंग करते हैं, तो वहां पे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि वो वहां पे बेड प्लांटर का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो या रिजर्व प्लांटर भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके आप साइड में नाली भी बनेगी और वहां पे बेड पे प्लांटिंग भी होगी। या अगर हमारे किसान भाई, कुछ लोग किसान भाई आजकल मेज यूज करते हैं हाइब्रिड मेज, उसमें आप न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो सीड है हाइब्रिड सीड बहुत ही महंगा रहता है, उसमें हमारे किसान भाई अगर नॉर्मल प्लांटर से प्लांटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा सीड जाता है
3: जी,
2: तो उसमें और डैमेज भी होता है सीड, उससे अच्छा है कि आप वहां पे न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जो धान के बदले मक्का लगाते हैं, जहां पानी की कमी होती है वहां पे अक्सर लोग हमारे मक्का लगा देते हैं। इसी तरह अगर आप बागवानी में है कि उसको तैयार कर रहे हो, आपके लिए सबसे अच्छा है कि जो पेड़ है उसके आसपास में जमीन को तैयार करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है रोटरी इक्विपमेंट, क्योंकि आपको बाग के आसपास पेड़ के आसपास घूमना है और वहां पे जमीन को तैयार करना
3: है, उसके लिए ये यंत्र है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए काफी सारे यंत्र उपलब्ध हैं जिनको आप अपने खेती किसानी में शामिल कर सकते हैं, अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और सरकार इसमें आपकी पूरी मदद कर रही है, आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके। यंत्रों
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि लगातार हम कृषि उपकरणों को लेकर बातें कर रहे हैं, कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी ले रहे हैं, आइए लेते हैं कुछ और जानकारी। ड्रोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं और ड्रोन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कौन सी नई तकनीकी अभी आ चुकी है, आइए जानते हैं कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को।
4: ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है, यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे, वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर चार छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं, इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: इसका रख रखाव में और कौन कौन सी चीजें जिसका हमारे किसानों को अधिकतर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे हमें इनमें सावधानियां रखनी चाहिए, जैसा कि हमारे कृषि एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि इसमें लापरवाही की वजह से काफी लोगों ने अपनी उंगलियां अपने हाथ का नुकसान कर लिया है। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान से चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें इन कृषि उपकरणों से हमें चोटें भी आई है, इससे काफी नुकसान भी हुआ है लोगों का। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसका इस्तेमाल हमारे लिए फायदेमंद तभी हो सकता है जब हम इसका ध्यान रखें, इसका रख रखाव अच्छे से करें और इसकी हमें ट्रेनिंग लेने की बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण मिले हैं जिससे हमारा जो मजदूर है, हमारा किसान पे जो काम का जो भार था वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो चुका है और हमारा जो किसान है अभी इन उपकरणों की सहायता से जहां हमें अधिक मजदूर लगते थे और समय जहां पर काफी ज्यादा लगता था वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो चुका है। तो किसान साथियों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भी 90.8 FM के साथ।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर आपकी अपनी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर को। आज का एपिसोड थोड़ा सा सोलफुल, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव और थोड़ा गहरा है। आज हम बात करें

0: भी है, हीलिंग भी है, थेरेपी भी है। तो इन सब का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कोई एक इमोशनल झुकाव हमेशा बचपन में रहा, या आपके घर में कोई ऐसा माहौल रहा। वो कौन सा पल था, वो कौन सा एहसास था जहां आपको ये लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है? क्योंकि ये बहुत रेगुलर इंटरेस्ट एरिया नहीं है, ये बहुत अलग हटके, सब लोग है हीलिंग में नहीं जाते, सब लोग थेरेपी वर्क में नहीं जाते, साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। तो वो कौन सा पल था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पे आपने ये रियलाइज किया कि ये मेरा इंटरेस्ट है और यही मेरी कॉलिंग है?
1: सो राइट सी, ये तो बहुत सही बात है कि ऐसे ही कोई इस फील्ड में नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी, जब मुझे समझ भी नहीं थी, जब मुझे साइकोलॉजी वर्ड भी शायद नहीं पता होगा, मतलब तब से ही ऐसा होने लग गया कि मेरे फ्रेंड्स से ना सब कुछ शेयर कर लेते थे मुझसे बिना किसी डर के।
0: जी
1: और अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो एक काउंसलिंग प्रोसेस है ना, स्टार्ट हो चुका था बचपन में। मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स भी कई बार बहुत चीजें से बता के जाते थे, स्कूल में भी मेरे से शेयर करते थे मेरे फ्रेंड्स अपने पर्सनल इश्यूज। तो धीरे धीरे आई रियलाइज कि पीपल लाइक टू शेयर देयर थिंग्स, लाइक देयर स्टोरीज, देयर पर्सनल स्टफ विथ मी। वो ऐसा समझ में आने लग गया था। एंड जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मतलब मैं कॉलेज मैंने जब कंप्लीट किया था, उसके बाद में कुछ सालों बाद मेरे को अपनी एक टीचर मिली थी जिम में, जिनको मैंने कहा कि मेरे को आज भी साइकोलॉजी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा वापस से पढ़ सकते हो। और वहां से ये जर्नी, एक्चुअल जर्नी जो आप पूछ रहे हैं ना, एक्चुअल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है। उससे पहले मुझे ये पता था कि ठीक है, पीपल ट्रस्ट मी, दे लाइक टू, मतलब वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे बात करना पसंद करते हैं, अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। और जब मैं शांति से सुनती हूँ तो एक लिसनर क्वालिटी थी। पर मैं सब्जेक्ट में प्रोफेशनली काम कर पाऊंगी, ये मुझे मास्टर्स, जब मैंने 10 साल बाद मास्टर्स किया था,
0: वाओ
1: अपनी या अपनी ग्रेजुएशन के 10 साल बाद, मतलब मास्टर्स करने के बाद भी। मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया था, तो मैं कंटेंट राइटिंग का वर्क कर रही थी, थोड़ा बहुत मैंने एनिमेशन सीखा, एंड उस टाइम एनिमेशन का इतना स्कोप नहीं था। या तो मैं जहां जाती थी, मतलब मैं आईसीजी से पास आउट थी, तो आईसीजी की टीचर उसी जिम में आई थी, तो मैंने उनको बोला कि आई रियली लव दिस सब्जेक्ट, वो मेरी फेवरेट टीचर थी और मैं सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाती थी। तभी मुझे लगा ओके, मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को अच्छा लगता है साइकोलॉजी।
0: हाँ
1: उन्होंने कहा आप अभी भी मास्टर्स कर सकते हो। देन आई अप्लाइड इन भवानी कॉलेज एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक टिल
0: वाह
1: नाउ। या
0: वाह, कितना ब्यूटीफुल सफर रहा मैम। और आपसे बात करके इन 2-3 मिनट में ही मुझे ये एहसास हुआ कि आप बहुत सरल हैं, शायद एज अ पर्सन बहुत सटीक, सरल और सहज हैं, इसीलिए आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम हैं, शायद लुप्त हो गए हैं, जो बहुत सरलता से अपनी बात कह दे, बहुत सहजता से अपनी बात को कन्वे कर दे। तो शायद इसीलिए आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग अपने आप उस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं और आपके सामने अपने जीवन के पन्ने खोल देते हैं। तो
1: थैंक
0: बहुत ही खूबसूरत एहसास है ये। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम शुरू करेंगे हमारे गीतों के सफर को और सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत, ये रातें नई पुरानी।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी। दीपा जी, हम आपकी हीलिंग मोडालिटीज पर अगर चलें, तो आपने बताया कि आप टैरो को और मेटाफर थेरेपी को अपनी साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करती हैं। अब सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, मेरे दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मेटाफर थेरेपी होती क्या है, ये अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानती कि मेटाफर थेरेपी होती क्या है, क्या मेटाफर से सिखाना, या व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। और दूसरा इस क्वेश्चन का मेरा यही पार्ट है कि आप आपके हिसाब से साइंस नहीं है सिर्फ हीलिंग, इसमें और भी मॉडलिटीज इंक्लूड करके आप एक बहुत खूबसूरत एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं और एक खूबसूरत मॉडलिटी बना सकते हैं और उसको कन्वे कर सकते हैं, जिसमें आर्ट भी आ सकती है और एसोटेरिक साइंसेस भी आ सकती हैं। तो ये किस तरह से आपने डेवलप किया और इस जर्नी के बारे में, इस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा अबाउट मेटाफर, सी कई बार हम कहते हैं ना कि ये शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये मेटाफर है ना। सिंबलिक लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, अगर इसको और सिंपल कहूँ तो मेटाफर थेरेपी में हम क्या करते हैं, आपसे जैसे मैंने एक ड्राइंग बनवाई, आपने उसमें क्रेयॉन कलर्स यूज किए, मैंने आपको कहा जो आपको लग रहा है ना ये कलर्स हैं, ये शीट है, आप इसमें कलर्स में सिंबल्स जो आपको बनाना है, जो ड्राइंग बनानी है बनाए, उन सिंबल्स से, उन कलर्स जो आपने चूज किए, जैसे आपने जिस हिसाब से हाउस बनाया, जिस हिसाब से आपने गार्डन बनाया, या आपने कुछ भी कोई कैरेक्टर भी बनाया, उसको हम एनालाइज करते हैं, हम ड्राइंग को एनालाइज करते हैं आपके इमोशंस पढ़ने के लिए।
0: वाओ।
1: फिर आपके जो इमोशंस आते हैं, जैसे किसी का फियर का इमोशन बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ड्राइंग, या कंफ्यूजन का, या लाइफ में करियर में आगे कैसे मोल्ड करे, वो उसकी ड्राइंग प्रेजेंट कर रही है, तो हम उस हिसाब से उसके सेशंस लेते हैं क्रिएटिव विजुलाइजेशन के साथ। दिस इज नोन एज मेटाफर थेरेपी।
0: वाओ। तो जैसे अगर मे को आपने कैनवस दिया और कलर्स दिए और मैंने एक खूबसूरत सी सीनरी बनाई, क्योंकि वही एक ड्राइंग है जो मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे कोई ड्राइंग करने के लिए कहता है। आई थिंक 80% और 70% ऑफ इंडियंस वही करते हैं, एक हार्ट, एक ट्री, एक बहती नदी, दो चिड़िया, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा?
1: वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से शेप्स यूज किए, आपने कौन से कलर्स यूज किए।
0: ओह, सो कलर्स एंड शेप्स से भी हम इंटरप्रिट कर सकते हैं। वाओ,
1: डेप्थ पे जाते हैं अपन, तो डेप्थ पे जाके हम देखते हैं।
0: हाउ इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं जी, आप बता रहे थे।
1: और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कैसे साइंस के साथ साथ इसमें आर्ट भी इंक्लूडेड है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए, इनफैक्ट ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि आर्ट में भी एक स्ट्रक्चर्ड होता है जब हम डेप्थ में जाते हैं इमोशंस के। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये साइंस है, आर्ट है, ये वो मोडालिटी है जहां हम इमोशन के डेप्थ समझ के बहुत ही इजी वे में सामने वाले को काउंसिल कर रहे हैं, उसको प्रोफेशनली सपोर्ट दे रहे हैं। रीजन जैसे मेटाफोर में हमने उसके इमोशन समझे और उस अकॉर्डिंग उससे बात की, तो उसको बेटर लगेगा क्योंकि देयर इज समवन जो समझ भी रहा है और एक रास्ता भी दिखा रहा है। एक नहीं, हम तो बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं और उसके अच्छे बुरे पार्ट्स भी बताते हैं और आपको फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम टू चूज आपको कौन से रास्ते में जाना है। फिर चाहे हम पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, मेटाफोर थेरेपी, आर्ट वर्क, कुछ भी करें, तो दिस कॉम्बिनेशन। और टैरो, टैरो में भी सिंबल्स होते हैं, टैरो में भी जो सिंबल्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सामने वाले के थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प मिल जाती है उसको अच्छे से प्रोफेशनली ऑप्शंस बताने में, इसीलिए हम इंटीग्रेट करते हैं साइंसेस और आर्ट को।
0: वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग।
1: Yeah.
0: और अब आपने टैरो की बात करी दी है, तो मेरा मैं चाहूंगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, अभी नहीं, जब हम आखिरी सवाल की तरफ पहुंचेंगे, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी अभी कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन और हमारे श्रोताओं के साथ जो हमारा कनेक्ट है, उसके लिए आप एक टैरो पिक करें और थोड़ा सा समझाएं, सो दैट हमारे श्रोताओं को थोड़ा फील मिले टैरो का। ये मैं हर टैरो कार्ड रीडर के साथ करवाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि श्रोतागण फील करें कि एक्चुअली टैरो होता क्या है. इतना कलरफुल, इतना एनर्जी से भरा, इतना ब्यूटीफुल एक यू नो आई थिंक अगेन वो सिर्फ एक एसोटेरिक साइंस नहीं है, वो एक आर्टवर्क भी है. तो मैं चाहूंगी कि लोग और इससे जुड़े. नेक्स्ट सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग, जो अभी आपने शब्द यूज किया, अगेन मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इनर चाइल्ड हीलिंग होता क्या है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है अर्बन इंडिया के लिए. तो ये क्या होता है, और आपके एक्सपीरियंस में अगर आप अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को इग्नोर करते हैं, तो आप क्या क्या खो सकते हैं अपनी जर्नी में, उसके बारे में थोड़ा बताएं.
1: सो देखिए, ये दो टर्म है, एक होता है इनर चाइल्ड थेरेपी, एक होता है इनर चाइल्ड हीलिंग. एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं इनर चाइल्ड थेरेपी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग हीलर्स कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से. अब इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ, फिर ये होता क्या है वो भी समझ आ जाएगा. व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, वो चक्रास पे वर्क करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं. व्हेन इट कम्स टू इनर चाइल्ड थेरेपी, जो मैं करती हूँ या मेरे थेरेपिस्ट फ्रेंड्स करते हैं, उसमें क्या होता है, हम अंतर मन के उस पार्ट को, उस पार्ट से बात कर रहे हैं जिसको सैडनेस है, जिसको कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन थोड़ा डिसअपॉइंट कर गई, गिल्ट में ले गई. जरूरी नहीं है कि वो बचपन का ही हो, बचपन का भी हो सकता है वो इवेंट, वो टीन एज का भी हो सकता है. एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था, या वो हुआ जो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस दे गया, तो उस ट्रॉमा को रिलीज करना, उस सिचुएशन को, उस एज टाइम को रिलीज करना थ्रू थेरेपी इज इनर चाइल्ड वर्क ऑफ प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ में हुआ है. उसको चाइल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एडल्ट समझ जाता है कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है, स्टिल आई एम विथ माई सेल्फ, आई नो माई वर्थ, आई एम सेफ, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम. लेकिन एक बच्चे को चाहिए होता है ना सेफ स्पेस, तो इसीलिए हम इसे अनहील्ड इमोशन को एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, टर्म दे देते हैं, जिसमें हम उसे इनर चाइल्ड बोलते हैं. और हम थोड़ा सा आर्ट प्लस साइंस वर्क करते हैं ना, हमारा वर्क फिर भी साइंटिफिक ज्यादा होता है, तो हम इसे थेरेपी बोलते हैं. जहां ऑरा क्लीनिंग हीलिंग आता है, वो उसी एज पे जाकर जब हीलिंग करते हैं, तो उसे इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं. लेकिन दोनों में सेम एक बात ये हो रही है कि वो इमोशन, वो सिचुएशन, जो उस टाइम जो थॉट्स बने थे, जो विचार बने थे, उसे हील किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान का कॉलेज में रिजल्ट खराब आया और उसमें ये होप थी उसको कि अब मेरा करियर इसी मार्क से होगा, तो उसके लिए वो भी ट्रॉमा है, क्योंकि उसके सारे होप, ड्रीम, डिजायर उस सिचुएशन से है. तो उस टाइम एक अनहील्ड इमोशन बन जाएगा, अनहील्ड थॉट बन जाएगा कि अब तो मैं कुछ कर पाऊंगा ही नहीं, या मैं क्या करूंगा. और अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो देन वहां हम या हीलर्स की सपोर्ट से, प्रोफेशनल सपोर्ट से, उस बात से बाहर निकलने का प्रोसीजर जो यूज होता है, उसको हम इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं.
0: राइट राइट. तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे हीलिंग में तो आपने बताया चक्रास पे आप वर्क करते हैं,
1: और आप पे मैं नहीं, हीलर्स वर्क करते हैं, हम लोग थेरेपी पे करते हैं. थेरेपी के दो तीन तरीके हैं. जैसे हमने उसे बोला कि ये जो भी आपको फील हो रहा है, चलो हम इसको पेपर पे एक्सप्रेस करते हैं कलर्स के थ्रू. तो हो गया इनर चाइल्ड वर्क विथ आर्ट थेरेपी. जैसे हम लोग हिप्नोसिस में ले जाके कि पहली बार कब आपको प्रेजेंट लाइफ में ऐसा फील हुआ, वो सैडनेस, उसको हम बोलेंगे इनर चाइल्ड थेरेपी. जब उसने लिख के एक्सप्रेस कराया, वो भी इनर चाइल्ड थेरेपी हुई. या हमने उसे क्रिएटिव विजुलाइजेशन से उसके सामने उस एज को दिखाया, और एज एडल्ट आज वो अपने आप को जब ये बता रहा है, यू आर सेफ, आई एम हियर, एंड वी विल फिगर इट आउट, एंड एक विजडम मैसेज जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इनर चाइल्ड थेरेपी.
0: जी. तो आप इसमें पास्ट लाइफ भी, रिग्रेशन भी करते हैं क्या, आपकी वो भी मोडालिटी है?
1: हाँ, पास्ट लाइफ इज अ डिफरेंट वर्क, एंड इनर चाइल्ड इज डिफरेंट, इनर चाइल्ड प्रेजेंट लाइफ. हाँ, और हम पास्ट लाइफ वर्क भी करते हैं.
0: वाओ. सो मैम, आपने 5000 क्लाइंट्स से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ डील किया है, कोई ऐसी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपके जहन में अभी आ रही हो, जो आप कभी भूल ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ था, अगर वो हमारे साथ साझा करना चाहें? और आपका जो खुद का वेंचर है धीसुकम काउंसलिंग सर्विसेज, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, धीसुकम,
1: धीसुकम,
0: धीसुकम,
1: हाँ जी
2: ओके, इसका मतलब क्या है और अपने यू नो इन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताएं, और सबसे पहले मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि कोई ऐसा जो जो यू नो इज वेरी स्पेशल टू यू.
1: सो देयर इज नॉट ओनली वन क्लाइंट, माय ऑल क्लाइंट्स आर लाइक दे हैव एक्चुअली हैव डन अ ग्रेट वर्क. मतलब कितना अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देना है, कितना सेल्फ वर्थ इज इम्पोर्टेंट, वो मेरे हर क्लाइंट ने मुझे बताया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो हमसे हो रहा है, हम वो कर पा रहे हैं. मैं अपने कई क्लाइंट्स का देखती हूँ, जब वो आए थे मेरे पास तब उनकी अचीवमेंट ओकेश होती है या ठीक ठाक होती है, वो इतना अमेजिंगली ग्रो करते हैं कि आज वो बहुत ही अपनी, मैं ये कहूंगी अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में वन ऑफ द टॉप मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स. दैट्स व्हाट दिस इज समथिंग आई हैव सीन, कि उनको एक लेवल पे जा, मतलब वो बहुत ही बेस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर में. एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक इट, कि आपको अपना सोल पर्पस पता चल गया.
2: Right.
1: वो बेस्ट चीज होती है लाइफ की, चाहे आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, लेकिन सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है, जब वो सॉर्ट होता है ना और अपना सोल पर्पस समझ आता है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है. और ये मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ हुई है कि जब वो आते हैं तब अपने करियर को लेके अगर कंफ्यूज हैं, तो आज वो टॉप कर रहे हैं, उनका मैं नाम न्यूज़पेपर में देखती हूँ. रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट का देखा था कि उसके बोर्ड में नाम मेंशन था. दैट वाज, मैं क्या कितनी स्टोरीज बताऊं, कम पड़ जाएंगी. एक नए मेरे पास तो बहुत है
2: जी,
1: सक्सेस स्टोरीज बहुत है मेरे पास
2: जी. और अब थोड़ा सा धी सुखम के बारे में बताएं, इसका मतलब और इसका मकसद. हाँ.
1: इसका मतलब तो ये होता है, धी होता है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है मन, और सुखम होता है शांति. हमारा मन है ना बहुत सारे लॉजिक्स में जाता है, बहुत सारे थॉट्स में, एक होता है इनर क्रिटिक थॉट प्रोसेस, उसको शांत करना और एक प्रेजेंट हैप्पी लाइफ में अपने आप को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. होता है फंक्शनिंग माइंड, आपने ये वर्ड सुना फंक्शनिंग माइंड. हमारा विजन यही है दी सुखम के साथ, कि हम एक हैप्पी फंक्शनिंग माइंड के साथ चैनलाइज कर पाए अपने इमोशंस को और ग्रो कर पाए.
2: लाइक एक्टिव माइंड की वो जो प्रेजेंट में एक्टिव रहे वैसा.
1: हाँ हाँ, क्योंकि अगर वो फंक्शनिंग नहीं होगा, फंक्शनिंग का मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि कब हम उठे हैं तो हमें ब्रश करना है, खाना खाना है, हम अपनी रूटीन लाइफ को भी नॉर्मल फंक्शन कर पा रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं से कहाँ पहुंच गए. फंक्शनिंग उस वर्ड को कहते हैं हम लोग, जहाँ पे नॉर्मली हमारी चीजें चल रही है. हाँ, एक्टिवली चल रही है, राइट, वी कैन से दैट. तो हमारा विजन है तो यही, माना आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी विजन है.
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत टफ है ये. और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे होते हैं, हम सब कुछ ऑटो मोड में इतना बह जाते हैं कि हम किसी भी काम को करते समय एक्टिवली उसके बारे में फील ही नहीं करते. जैसे व्हेन आई एम एक्चुअली ईटिंग फूड, मैं उस खाने को महसूस ही नहीं करती, क्योंकि मैं सारा टाइम ये सोचती रहती हूँ कि खाने के बाद मुझे क्या करना है या खाने से पहले मेरा कितना काम रह गया. सो मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग लाइक दैट, ज़ॉम्बीज की तरह. तो बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है इस आज के डे एन एज में. आज से शायद 10 साल पहले भी चीजें बहुत अलग थी, बट आज हम जिस टाइम एंड एज में पहुंच चुके हैं वहां बहुत अच्छा काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू धी सुखम. आई होप इट रीचेस ग्रेट हाइट्स और बहुत बहुत सक्सेसफुल हो आपका वेंचर मैम.
1: थैंक यू सो मच
2: जी. तो इसी एहसास के साथ दोस्तों हम सुनेंगे हमारा अगला गीत. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी। दीपा जी, मेरा अगला सवाल है कि आप करियर काउंसलिंग भी करते हैं और बहुत एक्टिवली आपके क्लाइंट्स रहे हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जब हम आज के यूथ की बात करते हैं, जिनको सब लोग बहुत इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं और अंडर द रग कर देते हैं कि ये तो जनरेशन ही पूरी खराब है, तो ऐसे में जब आप ऐसे बच्चों से डील करते हैं, इस जनरेशन से डील करते हैं, जनरेशन अल्फा, जी, व्हाटएवर, तो आपके लिए सबसे की रिसोर्स क्या होता है कि सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग आप क्या कन्वे करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो आपसे करियर काउंसलिंग सीख करते हैं, और किस तरह से आप चीजों को अमलगमेट करके उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जहां पे वो सिर्फ एक हैप्पी करियर चूज करें, एक सक्सेसफुल एंड हैप्पी करियर, नॉट जस्ट सक्सेस इन नंबर्स बट अ होलसम हैप्पीनेस इज वॉट दे शुड चूज। तो आप किस तरह से काउंसिल करते हैं, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस में शेयर कर सकें?
1: हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी वर्क है ना, वो क्लाइंट सेंटर्ड ज्यादा है, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, कोई भी एज हो, क्लाइंट जैसा वैसा कम्युनिकेशन। और अभी जो मेजरली चैलेंजेस और इश्यूज मैंने देखे हैं वो ये है कि हमें तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों को अपने आप से कनेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि बाहर से हमारे लिए क्या जजमेंट आएगा। इमेज कॉन्शियस जो थोड़ा ज्यादा इसीलिए भी हो गए हैं क्योंकि अब सब सोशल एप्स में ज्यादा हैं, और भी बहुत रीजंस हैं इसके। तो आप जैसे जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि अभी जो चल रहा है उसमें कैसे हम काउंसिल करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि अगर नहीं चला तो हमें लोग कैसे जज करेंगे, अगर हम ये नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे वो अभी भी कंसर्न है, क्योंकि अब तो
0: चीजें बहुत चेंज हो गई हैं।
1: हाँ, लेकिन अंदर से नहीं हुई है। ऐसा लगा था कि ठीक है, नाउ वी आर मोर मॉडर्न एंड मोर ओपन माइंडेड, बट स्टिल दैट छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात का टेंशन ज्यादा है कि अगर हम नहीं कर पाए तो
0: क्या होगा।
1: एग्जैक्टली, वो एक चैलेंज डेफिनेटली है, और उसके उनके अपने रीजन है, इसमें यहाँ पे कुछ गलत सही की बात नहीं है।
0: करेक्ट
1: नहीं है, बिकॉज उनको उनके ऊपर ऑब्वियसली इतना प्रेशर है, तभी उनके पास ये थॉट आया, नहीं तो आता ही नहीं।
0: करेक्ट,
1: तो कहीं ना कहीं उनपे ये प्रेशर है, फैमिली से है, बाहर से है, सबसे है, वो कमेंट नहीं कर सकते, बट प्रेशर है, ये जरूर प्रॉब्लम है। अब है तो, बट कहीं ना कहीं अगेन जो मेन बात है जो अभी बहुत ज्यादा है कि सेल्फ वर्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। जब हमें अपनी वर्थ पता होती है, हम अपने करियर में बेस्ट करते हैं और हम सक्सेसफुल होते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपनी वर्थ समझ गए, इसलिए उनके करियर में वो बेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन नंबर्स बट हाँ दे आर हैप्पी ऑल्सो। मतलब दे आर गुड इन नंबर्स ऑल्सो बट दे आर हैप्पीली सक्सेसफुल
0: विथ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस।
1: या दे हैव नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर काउंसलिंग, we check their personality also, not only the aptitude, inborn ability होती है aptitude, लेकिन उसके साथ personality भी उतना important है, interest भी उतना important है। तो अगर इन तीनों का combination ही करे counseling में सबसे important बात है हमारे लिए। जो इंसान सबसे बात करना चाहता है और design करता है, और जो इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता और design करता है, दोनों designer है।
0: Right.
1: बट उनका प्रोफेशन जो सबसे बात करना चाह रहे हैं उनका अलग होगा, और जो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता वो कंप्यूटर डिजाइनिंग में जाएगा। सो इन दिस वे जो आप पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, और उनका इंटरेस्ट भी, प्लस जो उनके फियर, जो भी उनके फियर हैं, उनके लिए हम उनको साथ में काउंसिल करते हैं। इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू नो योर वर्थ, थिंग्स विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू।
0: राइट राइट
1: जी।
0: ऑल्सो इसी के साथ अभी आपने एक वर्ड यूज किया, सेफ स्पेसेस। तो अगेन, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें इंसान को इमोशनली सेफ फील करने के लिए आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मैम?
1: ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने साथ सेफ फील करने के लिए अपना एनवायरमेंट सेफ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं ये नहीं कह सकती कि आप खुद को जानते हो, खुद को समझते हो तो बस इतना काफी है. नहीं, एनवायरमेंट है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर लगता है कि एनवायरमेंट बहुत अनहेल्दी है और फिर भी उधर ही रहना है तो अपनी बाउंड्रीज बनाना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है.
0: कितना डिफिकल्ट है मैम बाउंड्रीज बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग नो नहीं कह पाते.
1: बहुत
0: स्ट्रगल करती हूँ.
1: बहुत डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए, आई एग्री विथ यू. लेकिन बाउंड्री बनाने का मतलब रूड होना होता ही नहीं है ना. अगर मैं कहूँ कि तनुषा मैं ना आज इतना ही बात कर पाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे लिए आज कंफर्टेबल नहीं है, हम कल बात करेंगे, तो क्या ये आपके लिए रूड है?
0: नॉट रियली, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि भाई आपका एक कट आउट है एंड यू रीच दैट. यस,
1: आज हम इस टॉपिक को इतना ही देखते हैं, थोड़ा कल बाद में देखेंगे. अभी के लिए अपन दोनों के लिए इतना ही कंफर्टेबल है. नहीं तो मैस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये बाउंड्रीज है ना. और डिपेंड करता है सी, अब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हर जगह यूज नहीं हो सकता. कुछ बातों में यूज हो सकता है, कुछ में नहीं. लेकिन अगर हम बाउंड्रीज को ढंग से समझें तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से तो अपना पार्ट कर सकते हैं, फिर हमें सेफ फील होगा. बट हाँ, इसके साथ एक और बात है, सेल्फ डाउट और फियर प्रेमाइसिस से चलने से सेफ फील नहीं हो सकता. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेल्फ डाउट और फियर प्रेमाइसिस को ज्यादा एंटरटेन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इजी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो टफ हो जाता है.
0: राइट.
1: तो हम चाहे छोटे छोटे स्टेप लें अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ और करियर में, पर जहां हमारा ट्रस्ट बैठता है, जहां हम अपने लिए ग्रो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम सेफ भी रहेंगे.
0: बिल्कुल. तो बाउंड्री सेट करना इज हेल्दी और नो कहना इज इम्पोर्टेंट.
1: इट इज रिक्वायर्ड इन अ रीसेंट वे.
0: राइट, वरना हम ओवरवेल्म हो जाएंगे, इतना कुछ है हमारे आसपास. अगर हम सबको हाँ कहते रहेंगे तो कहाँ तक गाड़ी पहुंचेगी, हम हमारे लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाएंगे और वो बहुत अनहेल्दी सिचुएशन होती है.
1: Right.
0: तो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही डीप और यू नो सटीक बातें आपसे हो रही हैं. इसी एहसास के साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गीत आज का, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से.

0: दीपा जी, अब हम वापस आ गए हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जहां हम टैरो के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कि टैरो आपके लिए, अगेन बिकॉज आप उसको अपनी हीलिंग मोडालिटीज, अपनी थेरेपी में यू नो यूज करते हैं, और उसको एक तरह से एक टूल की तरह यू नो अपनी थेरेपीज को फ्यूल करने के लिए एक यू नो एक कैटलिस्ट है आपके लिए टैरो। तो इसी सिचुएशन में, इसी यू नो एक थॉट प्रोसेस से, अगर आप हमें बताना चाहें कि टैरो आपके लिए क्या एक फ्यूचर बताने की मोडालिटी है, या प्रेजेंट को समझने की, या इट इज जस्ट अबाउट एनर्जीज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, और या हम इससे फ्यूचर कुछ जान सकते हैं, आपके हिसाब से टैरो क्या है? एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप एक कार्ड पिक कर सके हमारी आज की रीडिंग के लिए।
1: ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो मेरे लिए लाइफ गाइडेंस है। लाइफ गाइडेंस प्रेजेंट को ज्यादा बताता है, और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस करते हैं या प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाते हैं, तो फ्यूचर थोड़ा बेटर भी होता है ना। कहते हैं ना, एक गलत स्टेप और सब उल्टा हो जाता है,
0: डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। जी
1: एग्जैक्टली, तो मैं टैरो को वैसे यूज करती हूँ। कई बार हमें जो फ्यूचर दिखता है 3 महीने बाद, वो फ्यूचर वैसा नहीं रहता है। फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करना समवेयर इज नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए टैरो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जहाँ पे फ्यूचर दिख तो रहा है, बट वो फ्यूचर में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस या अपने आप को संभाल तो सकते हैं, ये मुझे पता है।
0: तो साइकोलॉजिस्ट हूँ,
1: हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ,
0: right.
1: तो मैं प्रिडिक्शन में जा भी नहीं सकती।
0: राइट
1: जी,
0: ब्यूटिफुली आंसर्ड। एंड यस, कि अगर टैरो को हम राइटफुली यूज करें और प्रेजेंट एनर्जीज कोई सच में पहचान सके, तो शायद फ्री विल है, और फ्री विल को यूज करके आप फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको खत्म तो नहीं कर सकते, बट उनको थोड़ा लेसन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी, इसी एहसास के साथ अगर आप हमारे लिए कार्ड पिक करें और उसका पूरा मतलब थोड़ा डेप्थ में समझाएं।
1: ठीक है, तो जो भी अभी सुन रहे हैं हमें,

0: उन सब के लिए, राइट?
1: राइट, और हम दोनों की कॉन्वर्जेशन के लिए.
0: अच्छा, हम दोनों के लिए, तो फिर मैं दो कार्ड्स निकालूंगी.
1: Perfect.
0: हम दोनों ने जो बात की है उसके कार्ड क्या कह रहे हैं. फर्स्ट कार्ड हम ये निकालेंगे. सो हम दोनों ने जो बात की है, दैट इज बिगनिंग ऑफ न्यू इमोशन. उसमें एस ऑफ कप आ रहा है, जिसमें ब्लेसिंग भी है, नॉलेज भी है, एंड इमोशंस के बारे में बात की है, इसीलिए भी एस ऑफ कप आ रहा है. जिसमें जो सिंबल है वो एक लव एनर्जी को भी एसोसिएट कर रहा है. सो जो भी हमने बात की है वो इमोशनल हीलिंग भी कर रहा है कहीं ना कहीं किसी की. और
1: आई एम श्योर मैं हील हो रही हूँ बहुत बहुत लेवल्स पे. जी जी बिल्कुल.
0: एंड एक पीस भी दे रहा है. और रही बात आपके ऑडियंस के लिए जो आज हमें, एंड एक पीस भी दे रहा है. और रही बात आपके ऑडियंस के लिए जो आज हमें सुन रहे हैं और जो जब भी इसको सुनेंगे उनके लिए जो कार्ड है कि आप अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें उस चीज को बैलेंस के साथ स्टार्ट कीजिए. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जरूर स्टार्ट कीजिए अगर जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं. लेकिन उसके साथ ये भी है कि जहां जहां रेस्ट लेने की जरूरत है वहां रेस्ट लीजिए. मतलब जब हम बैलेंस होके काम करते हैं तो हमें ये नहीं करना कि हम अपने आप को भूल जाए. होप है कि वो काम अच्छे से होगा, लेकिन कहीं कहीं उसमें रेस्ट लेने की जरूरत है. मैंने इसमें 5 कार्ड्स निकाले हैं. फर्स्ट इज एस ऑफ वांड्स, बिगनिंग ऑफ समथिंग वेयर देयर इज लॉट ऑफ पैशन, बहुत पैशन है. दूसरा द स्टार, जहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, होप भी है, बैलेंसिंग भी हो रही है, ब्लेसिंग भी है. तीसरा मैंने तभी बोला रेस्ट के लिए क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो जहाँ रेस्ट लेने की जरूरत है वहाँ रेस्ट लीजिए. गाइडेंस में आ रहा है हीरोफ्रेंट. हीरोफ्रेंट होता है हर चीज प्रॉपर तरीके से करने के लिए. एम्परर साथ में स्ट्रक्चर तरीके से, प्रॉपर और स्ट्रक्चर तरीके से अपने वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हैं. बट जहां जहां सेल्फ टाइम, मतलब होता है ना खुद के सेल्फ रेस्ट का टाइम चाहिए, वहाँ आप जरूर दीजिए जो भी आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए.
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतना होलसम मैसेज है ये. हर तरह से एक एक बैलेंस क्रिएट करता हुआ और एक स्ट्रक्चर के साथ, एक फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ और नई बिगनिंग्स के साथ जुड़ा हुआ ये जवाब. बहुत ही खूबसूरत सफर रहा मैम आपके साथ. जाते जाते अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए जो कंफ्यूज हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, एक थेरेपिस्ट की तरह, एक हीलर की तरह आपके लिए क्या सिंपल सा थॉट या मंत्रा है जो प्रैक्टिकल है और वो अपनी लाइफ में अपना के उसको थोड़ा सा लाइट फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में?
0: जो प्रैक्टिकल है, सबसे प्रैक्टिकल बात यही है कि जब भी आपको ये, किसी को भी ये लगता है कि वो अपने आप को खो रहा है इस प्रोसेस में, वो अपने आप को प्रायोरिटी दे. क्योंकि प्रॉब्लम जो चल रही है आजकल वो ये चल रही है कि हम किसी और को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं. और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दो. कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप सामने वाले को प्रायोरिटी मत दो. अगर आपका करियर है, आपका रिलेशन है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, नंबर वन में आता है, तो आप खुद को भी तो नंबर वन में ला सकते हो ना, साथ चल सकते हो. लेकिन हम क्या करते हैं, हम साथ नहीं चलते. या तो हम पीछे हैं या तो हम आगे हैं, हम बैलेंस नहीं.
1: राइट,
0: दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना सामने वाला है, चाहे वो आपका करियर है या रिलेशन है. और आप भी उतना ही हैप्पीनेस डिजर्व करते हो जितना आप सामने वाले को दे रहे हो. और सारा बैगेज ना खुद को उठाना है ना सारा बैगेज सामने वाले को देना है. जहां आप बैलेंस करके चल रहे हो, खुद को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, उससे भी कई चीजें सॉर्ट हो जाएंगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल, द बुद्धा वे, द बैलेंस्ड वे.
0: या
1: बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, एंड थैंक यू सो मच आज SN रेडियो के साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ ये बातचीत करने के लिए. और इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी सही, इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन इतनी सरलता से साझा करने के लिए, थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो दोस्तों, दीपा जी की बातों में एक सुकून है, एक क्लैरिटी है जो दिल को सीधा छू जाती है. आज का एपिसोड हमें याद दिलाता है कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है जहां हर रोज हम खुद को थोड़ा सा और समझते हैं. मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हम सफर.

0: पर आपसे इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए सफर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी के रंगों को थोड़ा सा और महसूस कीजिए और गीतों के संग जीते रहिए। नमस्कार
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 एफएम रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
1: आप सभी को सच्चिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छी का तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गाँव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है

0: जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा ना हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से, और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
1: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है, जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं, और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम,
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है। जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
1: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
0: एक मिनट रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
1: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
0: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत? आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई, ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
1: हमारे घर में शौचालय तो है, लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझ से रहम की पुकार करो।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
1: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
0: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
1: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
0: अच्छा तो तुम हो दूषिका, और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो, और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं, और दूषिका बहुत बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां कैसे ढक दी, क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया, दुर्गंध कहां गई, अरे मच्छर भी नहीं है, अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है, अरे।
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
5: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, मैं वहीं रहती हूँ, और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
1: शौचालय प्यार

0: लागे रे, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वही मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
5: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई,
5: तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां कैसे ढकती, क्या ये शौचालय पर दरवाजा कब लग गया, दुर्गंध कहां गई, अरे मच्छर भी नहीं है, अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है। अरे
5: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
0: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
5: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
0: शौचालय प्यारा।

0: गेले घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को सदूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। बम्बे कहाँ जाऊं अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए नाली साफ कर दी गई अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों

0: में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए? अब नहीं बोलोगी? सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत। चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
2: अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
2: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी।
0: खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
3: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
2: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो।
0: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
4: नमस्ते सर,
5: आप स्वच्छता के बारे में क्या समझते हो?
4: स्वच्छता न भरा मत घेर शौचालय सब ने शौचालय में जाओ जो हाथ साबुन धोना शौचालय जाओ बाद घर में साफ सफाई रखवानी कसरू कूटू घर में साफ कर खाडा में डालवा नेबू पानी खराब नहीं हो जाए खाडा में डालवा निकास करवा खाडा में पानी पेलखा पानी भी साफ नहीं आत हेडपंप न साफ पानी डाल छाणी पेलना ढाकी ढाकी मेलवा एक लोटी मेली ने लोटी ही निकाले गिलास में निकाले भी साफ मतलब घेर ले साफ सफाई रखवा ही छोरा गंदगी नहीं रहे छोरा ना छोरा साफ सफाई करवा और गंदगी छोरा बीमार था घेर में बीमारी था है।
5: ये बड़ी जानकारी तमन कई थी मिली
4: ये जानकारी हम ले हम चेतना सम्मा जोड़ाई ते फिर हर महीने हमारे बैठक में मीटिंग में हम बैठक ले ली फिर हर महीने हम सर हम बोला बैठक ले दी बैठक ले ली हम तीन बैठक में जानकारी मिली कि घर में साफ सफाई रखवानो शौचालय जाए तो साबुन हाथ ने धोवाना ये हम ये चेतना समूह में जोड़ाए तीन में जानकारी में कि मतलब घेर ने केव राखवानो घेर में केवी साफ सफाई राखवानी ये जानकारी हम फिर मिले तो हम फिर हमारे घेर ने हमन की किम साफ सफाई करवानो ये जानकारी हम सब फिर बैठक ही हम सब जानकारी में।
5: तो दीदी तुम्हारे घर शौचालय बना हुआ है कि नहीं है?
4: हमारा घर शौचालय बना वेलू से
5: ते तुम घेर थी बनायो कि सरकारी मिली
4: सरकार ना भी सरकारी से पर सरकार ना भी आधा पैसा है ना आधा हमारे घेर ना पैसा करी ना हमें एक असल बनाए ले दो शौचालय घड़ी घड़ी बनाए नहीं तो हमें असल बनाए ले दो।
5: दीदी आप तो मतलब घर से निकलने वाला कचरा उसको का एक जगह इकट्ठा करते कि आप फेंक देते हो?
4: घेर मान कचरो इकट्ठा करी नहीं खाडा में खाडो बनाए नहीं खाडा में कचरो पूरा नाखे।
5: दीदी आप बताओ कि जो अपना घर से निकलने वाला पानी जैसे बर्तन साफ करते नहाते धोते वो पानी को आप कैसे निकास करते
4: हैं? ये पानी हम बर्तन करी उंगली चित्रा धोबी ये पानी सब हम एक नाले बना भी नहीं एक खाडो पहाड़ में खोद में इतना खाडा में पूरा पानी जाए ते दिन मैं जमीन में रंजी जाए पानी એના ખાડામાં તો એવું ફેલાડી ની ફેલાડી મચ્છર લેવા પડે ગંદકી હિ ફેર બીમારીઓ થાય કરી એ ખાડો ખોદી મેં તેના ખાડામાં સબ પાણી જાય તે રંજી જાય મેં જ।
5: દીદી એક બાર આપકા પૂરા પરિચય દે દો।
4: મારું નામ સોનિયા વાસ્કેલ છે ગામ માછલિયા છે તહસીલ રણમાં જિલ્લા ઝાબવા છે અને ચેતના મહિલામાં હું 2020
1: जोड़ा। स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो सच

0: स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
0: सही कह रही हो सोचिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना, तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
1: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
0: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: हाँ सुजल, ठीक बोले। और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
0: अच्छा सोचिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
1: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
0: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
1: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
0: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
1: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
0: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है?
1: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
0: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
1: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
0: अच्छा अच्छा, समझा समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
0: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
1: हाँ हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
2: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे, आखिरी बूंद।
0: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
1: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम

0: भाई ने। जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
1: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है दोस्तों। स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए एक ग्लास पानी के बदले 3 ग्लास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे।
0: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी, कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
1: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छ का और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल बुल।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

शाम चुराने आए, चमचा चिलमचा खोर्च भैया चूचू चूचा राय भैया चूचू का मुरब्बा भैया चूचू का मुरब्बा टकला टकलू टाक तवोरी टकिया टकी जाए।

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से फिर जाए, खोखा खोखा भाई जी खोखा खोखा खोखा खोखा भाई जी खो

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है मगर रहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे, बिना याद किए रहा ही नहीं जाता। किसी ने पूछा, सफर मायने रखता है या मंजिल? मैंने कहा साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर, SN रेडियोज और रेडियो टांडिया भील पर मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं हमारा सबका प्यारा सा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही तो है जो मुझे हर वक्त तहरीक देता है, यानी इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है, और इसी हौसले के साथ मैं हर बार लेकर आती हूँ आप सभी के लिए जज्बातों का एक अनोखा सफर। दोस्तों, अल्फाज तो एक जरिया है, असली मकसद तो उन छुपे हुए एहसासों को आपके दिलों तक पहुंचाना है। कभी थोड़ी सी खुशी, कभी हल्की सी नमी, तो कभी ढेर सारी यादें। आज इस सफर में सब कुछ शामिल होगा। हम बातें करेंगे, कुछ नज़में और कुछ गज़लें सुनेंगे और दिलों की दास्तान को लफ्ज़ों में पिरोएंगे। तो फिर क्या, अपने दिलों की धड़कनों की रफ्तार को थोड़ा सा थाम लीजिए और तैयार हो जाइए जज्बातों की इस हसीन लहर में डूबने के लिए। आइए मिलकर शुरू करते हैं ख्यालों का ये खूबसूरत सा कारवां, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही दोस्त आरती के साथ अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मशहूर गजल, जो ओरिजिनली तो मेहदी हसन साहब ने गाई है, लेकिन देखते ढूंढते ये वर्जन सामने आ गया, तो जरा देर ठिठक कर रुक कर बजा के देखा तो फिर वहीं रुक गई। एक लाइन, दो लाइन, और फिर वो चलती ही रही। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में अब यही बजेगी। गजल का मिसरा कुछ यूं है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, हर एक सांस में तेरी आहट छुपी है। तुम्हें जो लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी हमारी शुरू है। जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। दोस्तों गौर फरमाइए, कह रहे हैं जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। जगा के नहीं रखेंगे, जाग देंगे। तुम्हारी नजरों से चाहे उतर जाऊं, मगर दिल से तुम गिरा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, काइंड ऑफ फ्यूजन म्यूजिक, तो आप भी सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्यूजन वर्जन।

दोस्तों हमारे प्रोग्राम की दूसरी पायदान पर आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और पाकीजगी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा सुमन कल्याणपुर जी की। 1950 से 1960 की दहाई में उनके सुरों के सफर ने हर किसी को दीवाना बनाया। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी उनका क्लासिकल बेस और बेहद नरम और सुनहरी गायकी। और जब ऐसी आवाज को पर्दे पर बयां करने के लिए अदाकारा निम्मी जी मिल जाएं, तो जादू तो होना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1961 की फिल्म शमा की। इस फिल्म में निम्मी जी ने शमा नाम की एक ऐसी यतीम लड़की का किरदार निभाया था जो दिल ही दिल में अपने कजिन और फिल्म के हीरो परवेज से बेइंतहा प्यार करती है। परवेज एक शायर है, लेकिन कहानी में तब एक मोड़ आता है जब परवेज को एक अमीर घराने की लड़की रोशन आरा यानी सुरैया से मोहब्बत हो जाती है। तब अपनी मोहब्बत पर किसी और का हक देखकर शमा खुद परवेज और रोशन आरा की शादी करवा देती है। अपने अंदर के इस गहरे दर्द और जलन को छुपाते हुए पर्दे पर निम्मी जी ने जो खामोश

अदाकारी की है वो दिलों को रुला देती है। खयाम साहब और गुलाम मोहम्मद जी की मौसीकी से सजी और कैफी आजमी साहब के लफ्जों में ढली ये गजल शमा के उसी इसार यानी सेक्रीफाइस को बयां करती है। तो सुनिए सुमन कल्याणपुर जी की रूहानी आवाज में उस शमा का वो सारा दर्द जो ऐसा जला कि पिघल पिघल कर रूह तक पहुंच गया। गजल का मिसरा कुछ ऐसे है, दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान ना हो। फिर कहते हैं अब तो वही सुकून मिलेगा मुझे जहां में ये संग दिल जमीन ना हो आसमान ना हो जमीन आसमान ना हो। दिल गम से जल रहा है जले पर धुआं ना हो, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तहान ना हो।

दोस्तों, जज्बातों के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ साल 1953 की एक ऐसी शाहकार फिल्म की तरफ जिसने जबान और अदाकारी के मायने ही बदल दिए। मैं बात कर रही हूँ फिल्म फुटपाथ की। जब फुटपाथ का जिक्र है तो जाहिर है भला दिलीप कुमार साहब की उस खामोश, गहरी और शानदार अदाकारी को कोई भूल सकता है भला। इस फिल्म में उनके साथ मोहतरमा मीना कुमारी जी भी थी, लेकिन इस फिल्म की रूह थी वो नज़्म जो आज भी अकेलेपन में गुनगुनाई जाती है। मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी के लिखे उन लफ्जों को जब मौसिकार खयाम साहब ने धुनों में पिरोया तो उन्हें बयां करने के लिए आवाज किसकी चुनी गई? तलत महमूद साहब की। तलत साहब की आवाज का वो रेशम जैसा दर्द और उनका वो खामोश ठहरापन जब पर्दे पर दिलीप साहब के चेहरे के गम से मिलता है तो लगता है वक्त कहीं रुक गया हो, गमजदा हो गया हो। जैसे गजल का मिसरा है, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई, ढूंढती है नजर तो कहाँ है मगर, देखते देखते आया आंखों में दम। तो आइए दिल को थोड़ा गमगीन होने देते हैं। और इसमें मैं एक बात और शामिल करना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे याद आया कि ये गजल मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि इसको मेरे मरहूम बड़े भाई बहुत सुर और सोज के साथ गाते थे। उनका नाम कुंदन लाल था, सहगल नहीं, और ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट हुआ करती थी। ये गजल मैं आज उनकी याद को डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे बड़े भाई जिनको मैं प्यार से चिया बुलाया करती थी। और सुनते हैं तलत महमूद साहब में ये बेहद हसीन और बेमिसाल गजल। अब तो आ जाके अब रात भी सो गई,

दोस्तों, जज्बातों का ये सफर अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जहां सुरों के शहंशाह की रूहानी आवाज हमारा इंतजार कर रही है। जब भी सच्ची मोहब्बत और वफा की बात होती है तो दिल खुद ब खुद इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। साल 1960 की शानदार तारीखी फिल्म बाबर का एक ऐसा नगमा जिसे बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी साहब ने अपने खूने दिल से लिखा और मौसिकार रोशन साहब ने एक बहुत संजीदा धुन में पिरोया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीत के मसीहा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सजी इस पुरसोज गजल की। पर्दे पर अदाकार थे सोहन कपिला और अदाकारा अजरा के बीच के उस पाक इश्क को रफी साहब की आवाज ने तारीखी कर दिया। इस गजल की खासियत ही यही है कि जब रफी साहब अपनी मखमली मगर कशिश से भरी अल्फाज में वहशत और खुलूस जैसे अल्फाज को पुकारते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए रफी साहब की पाक साफ आवाज के साथ मोहब्बत की उस गहराई को नापते हैं। गजल का मिसरा कुछ यूं है। सलाम शौक पे रंजिश भरा बयाम न दो, सलाम शौक पे रंजिश भरा बयाम न दो, मेरे खुलूस को हिरसो हवस का नाम न दो, मेरी वफा की अकीदत का इम्तहान तो लो। फिर कहते हैं, न तख्त ताज न लालो जहर की हसरत है। फिर कहते हैं, मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, यूं ही कहीं मेरी चाहत का इम्तहान तो लो, तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इम्तहान तो लो। मोहम्मद रफी साहब, आपकी नजर।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश को मशहूर एल्बम जो कि गुलाम अली साहब और आशा ताई ने बनाई थी, जिसका नाम है मेराज़े गज़ल, उसमें से लिया गया है। जब गुलाम अली साहब इसकी धुन बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर इसमें पूर्वी और अवधी लोक रंग डाला, जिसमें कागा और पवन यानी हवा जैसे खालिस देसी और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई थोड़ा हिचकिचाई कि एक संजीदा गजल एल्बम में कागा और पवन जैसे अल्फाज कैसे लगेंगे। तब गुलाम अली साहब ने उन्हें समझाया कि नासिर काजमी साहब ने इन अल्फाजों के जरिए जुदाई के दर्द को बहुत सादगी से पेश किया है। जब आशा ताई ने सावन की मल्हार के साथ इस गजल की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक हो गया। गजल के खत्म होने पर सब म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू थे। इसे मेराज़े गज़ल एल्बम की सबसे भीगी गज़ल कहा जाता है। जब आशा ताई अपनी मखमली आवाज़ में सावन के इस दर्द को पुकारती हैं तो गुजरा ज़माना आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। सुनिए इस खूबसूरत मिसरे को। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। और फिर मक्ता अर्ज किया है, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए।

लीजिए, आशा ताई और गुलाम अली साहब की आवाज में। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजी, तुम याद आए। शौक फरमाए।

दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत सफर को मुकम्मल करने के लिए अब मैं आपको मौसीकी की और अदब के उस मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ लफ्ज खुद तारीख बन जाते हैं। जब हम सुनते हैं ये मिसरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारा जहन सीधे कभी कभी फिल्म और अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है या मुकेश साहब की आवाज की तरफ चला जाता है। लेकिन आज अल्फाज से एहसास तक की इस आखिरी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजीम शायर साहिर लुधियानवी साहब की वो मुकम्मल और असली नज्म जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब तलखियां में लिखी थी। इसी नज्म के को जब आप सुनेंगे तब भी आपको इसमें सुनाई देगा कि साहिर साहब जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने उनको एक पंजाबी लड़की से उनसियत हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, जो कि उस वक्त की लाइलाज बीमारी तपेदिक की शिकार होकर गुजर गई। तो साहिर साहब को उसका आखिरी दीदार भी वो नहीं कर सके, मरघट में अंदर जा नहीं पाए, तो उस तड़प का बयान उन्होंने कुछ यूं किया था। ये एक बेहद लंबी, गहरी और फिलोसफिकल नज्म है जिसे राजेश सिंह ने अपनी बेहद रूहानी आवाज़ में बिना किसी फिल्मी तामझाम के उसके असल और मुकम्मल रूप में गाया है। साहिर साहब ने जब ये नज्म लिखी थी तो इसका मिजाज सिर्फ रूमानी नहीं था, बल्कि इसमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों और समाज के तल्ख दौर का भी जिक्र था। फिल्म में तो सिर्फ मोहब्बत वाले हिस्से को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से लिया गया था, लेकिन असली नज्म में साहिर साहब लिखते हैं कि इस दुनिया में भूख, गरीबी और बेबसी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं जी सकता। राजेश सिंह ने इसे खालिस और मुकम्मल अदबी रूप से ही इसको अपनी आवाज़ दी है। ज़रा तल्ख मिसरा गौर फरमाएं। कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गई, अंबर से रिश्ते गेसुए शब्दों भी जल गए, वो दीदा हाय मस्तो पुरफसून भी जल गए, मासूम कह कहूं का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया, ये दोपहर की धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता कि अब मैं पुकारूं किसे कहां। दोस्तों, आपने इस नज्म का ये वर्जन शायद पहले ना सुना हो, पर आप जब आप इसे सुनेंगे तो सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और आंखें नम भी हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं

मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे, इसे किसी के सहारे की आरज़ू है।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में। आशा करते हैं आप सभी किसान साथी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से आप तक हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचा सके, जिससे आजीविका में सुधार कर सके, साथ ही अपनी कृषि भूमि में हो रहे बदलावों को समझ पाए और अपनी कृषि संबंधी जो भी समस्या है उन्हें हम तक पहुंचा सके। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए नई से नई तकनीकी की कृषि को आपके परीक्षण आपको दें, उसके बारे में आपको जानकारी दें और इसके लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कहां से इसका लाभ लेना चाहिए आदि जानकारियां को आप तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है। साथ ही हमारा किसान भाई भी हमें फोन कॉल के माध्यम से हमारे रेडियो स्टेशन पे आकर भी अपनी समस्याओं को अब तक हमारे साथ साझा करते आया है और हमारे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की यही प्रयास रहा है कि हम उनकी समस्याओं को एक्सपर्ट के माध्यम से उस समस्याओं का हम निदान कर सके। तो किसान साथियों आज पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज पुनः हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और हमारा जो यूथ है, हमारा जो किसान है, वह इस जानकारी को लेकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है और अपने व्यवसाय के साथ ही अपनी खेती में भी सुधार कर सकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि उन्नत कृषि के लिए हमें कृषि यंत्रों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हम कृषि यंत्रों का सहारा लेते हैं तो इसमें हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे आदि जानकारियों को हम जानेंगे। वैसे तो हम बता दें कि अगर कृषि में हम यंत्रों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा किसान है, अभी अधिकतर जो किसान है हमें मजदूरी के लिए किसानों की बहुत समस्या देखने को मिलती है। हमारा खेत जब तैयार हो जाते हैं तो समय पर हमारी फसल को निकाल लेना बहुत ही आवश्यक होता है और समय समय पर जो हमारी कृषि है, कृषि में समय समय पर उचित समय पर दवाई का छिड़काव करना, उसकी कटाई, उसकी बुआई आदि चीजों में एक समय जो होता है, समय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किसान साथियों हमें अभी बदलते ही समय में मजदूरों की कमी हमें साफ नजर आती है, तो इस समस्या से हमारा किसान काफी जूझ रहा है कि कैसे हम कम मजदूरों में अधिक से अधिक काम करवा सके, तो यहाँ पर इसका हमको लाभ मिलता है कृषि यंत्रों से। तो आइए जानते हैं कैसे कृषि यंत्रों से हमें किस तरीके से लाभ मिल सकता है और कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियों को हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खरीफ फसलों की

0: बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अगर हम पूरी खेती की बात करें तो कृषि यंत्रों का उपयोग किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है?
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं और वो इस चीज को फील भी किए हैं कि जो अभी किसानी रही है, जो भी हम खेत में काम करते हैं, अभी हमारे पास मजदूर अवेलेबल नहीं रहते हैं। हम देखें कि गांव से जू जू मजदूरों ने शहर की ओर जाना शुरू किया, वहां पे उनको जो नौकरी का या वहां पे जो काम का साधन मिला, उस हिसाब से जो गांव में खेती रह गई उसके लिए हमारे पास मजदूरों की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो उसमें अब हम हमारे किसान भाई जान चुके हैं कि सिर्फ यंत्रों से ही हम जो आगे की खेती है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं तो खेतों में मजदूरी से अभी वो वक्त नहीं है कि हम उस हिसाब से खेत से फायदा पा सके। इसलिए हमारे किसान भाई
0: धीरे धीरे समझने लगे हैं यंत्रों का उपयोग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पहले मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब मजदूरों की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान भी हो रहा है, मुश्किलें भी हो रही हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का जो उपयोग है हमारे किसानों का काम आसान कर रहा है। तो और किस तरह से हमारे किसानों को ये सहूलियत पहुंचा रहा है, कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं, बताएंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक हमारी रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं।
2: कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। प्लांटर की बात करें तो इस यंत्र का इस्तेमाल बीजों को एक निश्चित बीज की दूरी पर पंक्तियों में बुआई के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों और स्प्रो किटों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कल्टीवेटर का इस्तेमाल जुताई के बाद खेतों में ढेलों को तोड़ने और मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल कतार युक्त फसलों में निराई के लिए भी किया जाता है। अगर हम जुताई के काम की बात करें तो इसके लिए रिवर्सिबल 2 बॉटम और 3 बॉटम के MB फ्लो है, जो मिट्टी की काफी अच्छी जुताई करते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ पलटते भी हैं। मिट्टी पलटने से खरपतवार नीचे दब जाते हैं और बाद में कार्बनिक खाद का काम करते हैं। वहीं ट्रैक्टर खेती के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल की कटाई और ढुलाई के काम आसानी से हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेसर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल को जोड़कर खेती के काम कर सकते हैं।
0: तो जाना आपने कृषि यंत्रों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को आसान बना सकते हैं। काम को आसान बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब खरीफ फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। खरीफ फसलों का यहां पर बुआई का समय भी है, हमारे किसान काफी खेतों में लगे हुए हैं। तो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों को बिल्कुल मदद कर सकते हैं? रिपोर्ट में भी हमने देखा है, आपसे भी जानना चाहेंगे।
1: जैसा कि अभी बारिश का मौसम है और अभी इस बारिश के पानी से हमारे जो किसान लोग हैं वो खेत की तैयारी में लगे हैं कि बुआई करनी है। ज्यादातर किसान लोग इस मौसम में हम देखते हैं कि धान लगा देते हैं। अगर हम धान की बात करेंगे तो धान की बुआई के लिए ट्रांसप्लांटर है, जो ट्रांसप्लांटर सेल्फ प्रोपेल्ड भी रहता है या राइडिंग टाइप भी रहता है। तो अभी लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज में पानी की किल्लत है, तो वहां पे ट्रांसप्लांटिंग के बदले डायरेक्ट सीडिंग, जो हमारे किसान लोग डायरेक्ट बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सीडर है या इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर है। और अगर हम बात करेंगे छोटे किसान की, उनके लिए भी यंत्र है, वो चाहे तो बुआई कर सकते हैं ड्रम सीडर से या प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर से। तो ये चारों वो बुआई कर सकते हैं इससे या ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटर से कर सकते हैं। तो किसान जिस हिसाब से अपने खेत को तैयार, अगर वो नर्सरी के लिए तैयार है तो ट्रांसप्लांटर इस्तेमाल करें, नहीं तो डायरेक्ट सीडेड इंक्लाइंड प्लेट
0: से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर धान की खेती आप करना चाह रहे हैं तो कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, इनके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में खुद से काम करने में या मजदूरों से काम करवाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे में आप यंत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे तो फायदा होगा। बरसात के मौसम में जैसे आपने कहा कि यंत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं, बारिश आ जाए, ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: जैसा कि हम देखते हैं कि जो किसान लोग जिनके पास यंत्र रहते हैं, बारिश की वजह से उन यंत्रों में पहली बात है कि यंत्र के खराब होने का, उसमें जंग लगने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो मैं यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो भी यंत्र आप इस्तेमाल करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से हाउसिंग करना जरूरी है, जब भी आपने रख रखाव करना की जरूरी है। जैसा कि आप हम देखते हैं कि अक्सर घरों में हम जो मोटर कार या बाइसिकल रहता है उसको तो हाउसिंग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यंत्र रहता है हमारे खेत पे, जिसे हम पूरा रोजगार लेते हैं, उसको हम बाहर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, किसान ने जो उसको 50,000 लगाया या 1,00,000 लगाया खरीदने में, वो 4-5 सालों में बारिश की वजह से खत्म हो जाता है,
0: खराब हो जाता है।
1: तो इसलिए यहाँ पे किसान भाइयों को पहली सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जो भी यंत्र आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से मोम जाम से, या अगर आप कोई शेड बना सकते हो उसमें हाउसिंग करके, उसमें स्टोर कर, जब भी आप खेत पे ले जाओ उसके बाद वापस घर के सामने उसको हाउसिंग करना है। इसी तरह अगर ट्रैक्टर की बात करें, बहुत सारे किसान लोग जिनके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी क्या रहता है कि अगर आपने ट्रैक्टर को सीधे बाहर रख दिया ऐसे ही इस बारिश के मौसम में, उसकी बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसमें खासतौर पर प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर को भी सही अंदाज से स्टोर करने का, घर में हाउसिंग करके बाहर हाउसिंग करना बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा भी हमारे किसानों के पास बहुत सारे जैसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, या जहां जाम होने का चांस रहता है वहां पे किसानों को जरूरी है कि कम से कम, अगर पूरी मशीन नहीं, कम से कम उस एरिया को वो कवर कर पाए, उस मशीन के उस हिस्से को वो कवर कर पाए, तो वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।
0: जहां पर आशंका रह सकती है कि जंग लग सकता है पानी पड़ने से, तो ऐसे में पूरी मशीन नहीं तो उस छोटे से ही भाग को आप ढककर जरूर रखें। देखिए आपके पास कोई भी यंत्र है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। आप खुले में बरसात में यूं ही छोड़ देंगे तो खराब हो सकता है। आपने इतना पैसा लगा के कोई चीज ली है, आपके काम की चीज है, अगर हम उसकी देखभाल ढंग से नहीं करेंगे, रखरखाव ढंग से नहीं करेंगे, तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को ये बताएं, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से रखरखाव करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह से ध्यान रखें खुद के लिए भी और यंत्रों के लिए भी, क्या सावधानी बरतें इस्तेमाल करते समय?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहाँ पे किसान भाइयों को मैं ये फिर से आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे गांवों में बहुत सारे जोखिम इसी वजह से होते हैं कि जब भी कोई यंत्र हम खेत पे इस्तेमाल करते हैं हम उसका ख्याल नहीं रखते। जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई मामूली सा फावड़ा भी यूज करेंगे तो पैरों में जूता नहीं पहनते, तो उससे कभी कभी क्या होता है, जो फावड़ा है पैर में लग जाता है, और इतने दूर खेत में काम करते हुए वहां पे जो हम बोलते हैं फर्स्ट एड वो भी नहीं होता है, तो उससे जख्म और बढ़ जाता है। तो पहले मैं किसान भाइयों को बोलूंगा कि या जो भी आप यंत्र यूज करते हैं पहले अपने प्रोटेक्शन देख लीजिए। जैसे अगर आप स्प्रे करते हैं तो नाक को ढक के रखना है, मुंह को ढक के रखना है। अगर आप कोई यंत्र जो तेज है उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने जो पैर है, हाथ है, इनमें पैरों में गम बूट्स यूज करना है और हाथ में ग्लव्स इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे बहुत सारे किसान भाई थ्रेशर चलाते हैं।
3: जी हाँ बिल्कुल, थ्रेशर चलाते समय हमारा जो किसान है काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी उसे ख्याल ही नहीं रहता है, जल्दी के चक्कर में वो कभी कभी उनके बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके उंगलियां कट चुकी है, बहुतों के हाथ कट चुके हैं, तो इस प्रकार की कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं हमारा जो किसान है वो बाजार से सारे ये उपकरण तो ले लेता है, कृषि यंत्रों को ले लेता है, बल्कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है कहीं पर भी, ये इसके प्रशिक्षण केंद्र अभी तक तो हमें नहीं दिखाई पड़े हैं। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कृपया कर हमें बताएं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: और रही बात सावधानियां बरतने की, हम देखते हैं कि जो तमाम घरों में चैफ कटर है, जो चारा काटने की मशीन है, अक्सर इंजरी हमारे जो गांवों में इस चैफ कटर के जरिए होती है। बच्चा उसमें अटक जाता है, ब्लेड से कट जाता है, या चारा काटते समय हाथ आगे चला जाता है वहां कट। तो आजकल हम देखते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए कवरिंग डिवाइस बनाए हैं। आप चारा काटने की मशीन को देखो, उसके लिए एक सिंपल लॉक आता है, उसको आप बंद कर सकते हैं, या अगर वो ब्लेड है उसके ऊपर कवरिंग है, ताकि उसके साथ अगर कोई छेड़खानी भी करेगा तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी जो इंजरी होती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है, वो है जहां पे कहीं पे रोटरी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा रोटावेटर है या थ्रेशर है, जहां पे घूमने वाला उसका जो शाफ्ट होता है उसमें अक्सर हमारे कपड़े फंस जाते हैं। जब भी हम थ्रेशर को इस्तेमाल करें, जब भी हम रोटावेटर के साथ काम करते हो, तो हमको अपने जो कपड़े हैं ज्यादा कपड़े लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए,
0: ढीले कपड़े ना हो,
1: कपड़े नहीं, ये याद है। इसी तरह जब हम धराती यूज करते हैं, हाथ में जख्म आने का चाहो तो हम ग्लोव्स करके काम करें। तो ये जो मेन मैंने बताया आपको कि जो भी ज्यादा नुकसान होता है इन्हीं चीजों से होता है, और आजकल हमारे किसान ज्यादा जागरूक भी हो गए हैं, तो खासतौर कोविड के टाइम से, तो जो वहां पे आप प्रिकॉशन लेते हैं, इसी तरह खेत के टाइम में भी आप प्रिकॉशन लेते हैं, सावधानियां बरतते रहे।
0: तो बिल्कुल, तो देखिए ये कुछ यंत्र हैं जिससे यहाँ पर हम,
3: डॉक्टर साहब हमारे एक किसान का ये सवाल था कि हमें कितने उपकरण रखना चाहिए, हमें बुआई के लिए अलग, फिर कटाई के लिए, उसके साथ गुड़ाई के लिए, आदि के लिए काफी यंत्र हैं, तो हमें उनमें से कौन सा यंत्र रखना चाहिए, इसको लेकर हमारे एक किसान का सवाल था। तो कृपया हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
1: आजकल के डेट में इतना यंत्र रखने की कोई जरूरत नहीं, आप कोशिश, क्योंकि हमारे अक्सर किसान छोटे किसान हैं। आजकल गवर्नमेंट जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर से हमारे किसान भाई मशीन ले, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत, उनके पास खेत छोटे हैं, तो अगर वो कोई नई मशीन खरीदे, इतनी मशीन खरीदेंगे तो फायदा कहां से लेंगे। ये तो मैं, अब उनका जो सवाल है कि इसके अलावा कौन सा भी यंत्र हम रखें, ये हमारे किसान भाई कौन सी खेती करते हैं उसके हिसाब से, उस पर निर्भर करता है। अगर वो धान की खेती करते हैं, आप डायरेक्ट सीडेड प्लांट रख सकते हैं या ड्रम सीडर रख सकते हैं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं, तो मक्का के लिए आपके पास मक्का के लिए प्लांट रहता है अलग से। अगर आप हाइब्रिड सीड यूज करते हैं मक्के में, तो उसके लिए एक स्पेशल जो, जिसको हम एडवांस इक्विपमेंट बोलते हैं, न्यूमेटिक प्लांटर, तो आप न्यूमेटिक प्लांटर रख के या उसको लाके खरीद के दूसरे किसानों के इस्तेमाल के लिए भी दे सकते हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: में हम बात कर रहे थे जिससे सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा रहता है, हमारे पास चारा काटने की मशीन होती है, थ्रेशर होता है, रोटावेटर होता है, या और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर के साथ किसी मशीन को जोड़ते हैं उसके पीछे आदमी आ जाता है
0: जी।
1: तो जब भी ट्रैक्टर को हम चलाएं, उसके पीछे किसी भी आदमी के आने से हमको बचना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन जोड़ते हैं, बीच में आदमी आ जाता है ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ने के समय, और तो कभी कभी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ते हुए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में या पीछे कोई भी आदमी नहीं है। बाकी जो अभी तक मैंने बताया कि चारा काटने की मशीन है, रोटावेटर, ओ हाँ, यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा कि जो थ्रेशर है उसमें जो घूमने वाला शाफ्ट होता है उसको कवर करना जरूरी है। आप घर में भी एक सिंपल जाली का कवर बना सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि उसमें कपड़ा अटक ना जाए। बाकी हम बात कर रहे थे कि ऐसे चीजों के साथ इस्तेमाल करते समय हमको जो अपने कपड़े हैं ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और जो छोटे हम यंत्र यूज करते, चाहे दराती हो, फावड़ा हो, उस टाइम में हमको ग्लोव्स पहनना जरूरी है। और रही बात जो स्प्रेइंग के समय, तो जो हम स्प्रे करते हैं उस टाइम क्या होता है कि जो फ्यूम्स है हमारे अंदर चला जाता है, जो स्प्रे हमारे अंदर चला जाता है, तो उसके टाइम में हमको अपने मुंह को ढकना पड़ेगा।
0: जैसे कोविड ने हमें सिखा दिया है मास्क पहनना, तो अगर आप स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुंह को ढक के रखें, क्योंकि सांस के जरिए ये सारे जो उसके हानिकारक तत्व हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8।
5: What's up?

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम और आज के जो हमारे कृषि के मुख्य बिंदु हैं वो है कृषि उपकरणों को लेकर। कौन से उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साथ ही अगर हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका रख रखाव कैसा करना चाहिए, साथ ही जो उपकरणों की वजह से हमें जो चोट लग जाती है, जो हम घाव बन जाते हैं, ऐसे समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, आइए जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जैसे कि जो भी यंत्र हम इस्तेमाल करें उसका सही से उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे किसान भाई को पूरी जानकारी हो कि यंत्र कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है।
3: तो इसके लिए क्या कोई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं?
2: उसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर किसान भाई नजदीकी केवीके से भी जुड़ के थोड़ी सी भी ट्रेनिंग ले तब भी कम से कम जो उसको फायदा मिलेगा उसमें 5-10% चेंज आएगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जितने भी संस्थान है वो अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे जितने भी संस्थान है उनमें एक्सटेंशन का एक अलग से डिवीजन रहता है, तो उनका यही काम होता है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए कि इस यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम मेरी किसान भाइयों से यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि वो नजदीकी केवीके से भी जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जो मेन संस्थान है पूसा में है या जो भी जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे जरूर कृषि विभाग का कोई संस्थान होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी कि जो भी आपका लोकल यंत्र हो या पूरे देश में जिसका इस्तेमाल हो उसको कैसे चलाना है। और एक बार आप वहां से ट्रेनिंग लेके उस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको खुद महसूस होगा कि कितना फर्क आ गया पहले इस्तेमाल में और बाद के इस्तेमाल।
3: बिल्कुल। तो देखिए, हम कुछ भी, हम गाड़ी ही लेते हैं तो उसे भी चलाना सीखते हैं पहले, तब जाकर हम कहीं गाड़ी चला पाते हैं। ऐसा ही हमारे कृषि यंत्रों का भी साथ है। आप उसे चलाने की पहले ट्रेनिंग ले लीजिए कि किस तरह से आपको चलाना है, कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या सावधानी बरतनी है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो बदलाव खुद ब खुद आप महसूस करने लगेंगे, आपकी खेती किसानी में आसानी होगी, बदलाव आपको खुद नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं यहां पर सब्सिडी की, क्योंकि हमारे किसान जानना चाहेंगे जरूर कि अगर इन यंत्रों को हम ले रहे हैं, अगर इनका मूल्य ज्यादा है तो क्या हमें कोई अनुदान यहाँ पर मिलेगा।
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कृषि को, पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कृषि को बोलते हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी रियासत है वो अपने हिसाब से वहां पे जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा यंत्र जो महत्वपूर्ण रहते हैं उसी हिसाब से उनपे सब्सिडी देता है। उसके अलावा हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी जैसे हम पराली के लिए बहुत सारे यंत्र है उनपे सब्सिडी रखा है। तो किसान भाई एक तो ये है कि जो उनका लोकल है, लोकल यंत्र है जो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग यंत्र के लिए सब्सिडी है। उसके अलावा अगर हम सेंटर की केंद्र की बात करें तो वहां पे भी कुछ यंत्र है जिन पे उनको सब्सिडी मिल सकता है। उसकी जानकारी अगर वो लेना चाहेंगे जो स्टेट रियासत में जो भी यंत्र है वहां पे किस पे सब्सिडी है, वहां का जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बिल्कुल वहां से आपको जानकारी मिलेगी। और जो केंद्र की है आप उनकी साइट पे जाके पूरा लिस्ट देख सकते हैं। खासतौर पर जो हम प्राली के लिए हम देखते हैं कि उसकी समस्या जो है उसके लिए बहुत सारे यंत्रों पे जो सब्सिडी है वो सरकार ने घोषणा की है उसकी, वो आप ले सकते हैं।
3: बिल्कुल।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: देखिए जो कस्टमर एग्जेंट है, पहले हमको देश का जो एग्रीकल्चर है उसको समझना पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल, जरूर।
2: हाँ, हम समझते हैं कि लगभग 80-85% लोग हमारे जो किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है।
3: जी।
2: अगर ऐसे किसान को हम बताएं कि आप जैसे धान की फसल लगा रहे हैं, आप एक किसान है धान की फसल लगा रहे हैं, उनको बताएंगे कि बुआई के लिए ये मशीन लेनी है, आपको जमीन तैयार करने के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद कटाई के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें जो खरपतवार वगैरह के लिए ये ऐसी मशीन लेनी है, तो एक किसान को एक फसल के लिए कम से कम 10-12 मशीन रखनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल।
2: अब एक किसान, एक हेक्टेयर उसके पास एरिया है, लैंड है, उसमें उस मशीन का इस्तेमाल 5-3 दिन ऐसे होगा, तो बाकी साल ऐसे बैठ के रहेगा। तो इसका कैसे हम फायदा बढ़ा सके, इसके लिए कस्टम हायरिंग का कंसेप्ट है। कस्टम हायरिंग पे सरकार की ओर से सब्सिडी भी है कि एक एरिया में जो ज्यादा मशीनें यूज होती है उसका एक सेंटर रखें, ताकि वहां से किसान लोग वो मशीन लेके, वो यंत्र लेके अपने खेत में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के हिसाब से पे करें, और उसके बाद वो यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे रखा जाएगा। इसमें किसान लोग आपस में मिलके भी वो यंत्र खरीद सकते हैं, सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद जो यंत्र है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम आज बात करते हैं कैब की जरूरत पड़ती है, हर एक के पास अगर गाड़ी नहीं है तो वो कैब बुक कर लेता है, अपने हिसाब से जहां तक जाना है पे करता है। ऐसे ही खेत में जो यंत्र इस्तेमाल होना है, कितना इस्तेमाल किया उस हिसाब से पे किया, और यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे, तो किसान भाई आगे आके अपना कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकते हैं।
3: जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर का यहाँ पर जिक्र किया, एक तो ये बहुत ही अच्छा है सभी किसानों के लिए, क्या युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर बन सकता है ये?
2: बिल्कुल, इसमें जो हमारे युवा है वो आगे आके इसमें रोजगार कमा सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते हैं, सिर्फ अपना नहीं कमा सकते। हम देखते हैं कि अगर हम एक एरिया में एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टैब्लिश करते हैं, पहले तो ये है कि जो उसकी एक डिटेल रखेगा, एक आदमी की जरूरत है।
3: जी,
2: जो किसान लोग बुक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, किसके यहाँ खेत पे जाना है, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ेगा।
3: जी,
2: खेत पे मॉनिटर करने के लिए एक आदमी को रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है उसको भी रोजगार मिलेगा। मतलब एक कस्टम हायरिंग सेंटर से हम मान सकते हैं कि कम से कम, अगर कुछ नहीं तो 3-4 लोग जुड़ सकते हैं, 3-4 लोग अपना रोजगार कमा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया में करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है ये इसीलिए है, एक तो एक साइड से किसानों को फायदा मिलता है, दूसरे साइड से कि जो हमारे युवा है वो अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना सेंटर है, लोगों को दे सकते हैं।
3: जी,
2: तो ये जरूर
3: तो रोजगार भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कितने फायदे हैं इस कदम के, एक तो हमारे किसानों को मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं जिससे वो अपने खेतों में आसानी से काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। ग्रामीण ही क्यों, हम शहरी युवाओं की भी बात कर लें, आप भी इससे जुड़ सकते हैं, एक कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं जिससे न केवल आपको फायदा मिलेगा बल्कि अन्य लोगों को भी आप रोजगार दे पाएंगे और सभी को आर्थिक रूप से यहां पर बल मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, हमारे किसानों के फायदे के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। आपने जिक्र किया यहां पर कि हमारे किसान हर स्टेज पर अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने खरीफ फसलों में धान का जिक्र यहां पर किया था कि आप अगर बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं तो आपको इन मशीनों की जरूरत है, आप उसके बाद भी तो मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खरपतवार आपने यहां पर कहा, खरपतवारों के लिए कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करें, या तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उसमें बहुत समय जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, निराई गुड़ाई खरपतवार में किसानों का बहुत समय जाता है और इसको करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक स्टेज होता है, पहले क्रॉप छोटा होता है उसमें अलग तरीके से करना है, बढ़ गया क्रॉप उसमें मशीन नहीं चल सकती है। तो अगर हम बात करेंगे खरपतवार के लिए, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे कुछ किसान लोग हमारे कल्टीवेटर को भी यूज करते हैं बीच में, लेकिन उसके अलावा भी कौन सा क्रॉप लगाया अगर उसके बीच में जगह है तो हमारे पास छोटे छोटे जिनको हम सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट बोलते हैं उसके पीछे रोटावेटर, जैसे हमारे पास मक्का है, मक्का के बीच में अच्छी खासी गैप रहती है, तो उसके बीच में हम छोटे यंत्र जैसे रोटावेटर, छोटा वाला रोटावेटर छोटा ट्रैक्टर के साथ चलते हुए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे जो इसके लिए स्प्रेइंग के लिए तो हम बूम स्प्रेयर यूज करते हैं उसके लिए, बूम स्प्रेयर यूज कर सकते हैं, या छोटे किसान जो हम नैपसैक स्प्रेयर जो बैकपैक बोलते हैं, बैकपैक बोलते हैं उसको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ किसान जैसे धान में खासतौर पर ये समस्या रहती है कि उसमें कैसे हम इनका जो वीड निकालने के लिए, उसके लिए आप कोनो वीडर भी यूज कर सकते हैं, जो छोटे किसान अक्सर रखते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो देखिए खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है जब हम खेती के काम कर रहे हैं, हाथ से कब तक निकालेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है, समय भी काफी जाता है। ऐसे में इन यंत्रों का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, इस समय हम बात करें तो बागों की तैयारी भी की जाती है डॉक्टर रॉफ, बागों में कौन कौन से यहाँ पर यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान, इस पर क्या कहेंगे आप?
2: जैसे जो बागों की तैयारी है, जैसे हमारे पास जो बागों की तैयारी के लिए पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पेड़ है उनके आसपास में जो खेत है उसको जोतने के लिए एक छोटे जो इक्विपमेंट आते हैं जिनको हम जो रोटरी इक्विपमेंट उसमें लगा रहता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बागों में ज्यादातर स्प्रेइंग का समस्या रहता है, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जो ड्रोन अभी आया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन का, क्योंकि स्प्रेइंग करना बहुत ही मुश्किल काम है खासतौर पर बागों में।
1: और किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जानकारियां हमें मिल रही है, अगर हमें सारी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरपतवार बढ़ जाती है तो छोटी खरपतवार जब हमारी फसलें छोटी होती है उस समय हमको कम अलग तरीके से उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, और जब फसलें बड़ी हो जाती है तो हमें उसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी विपरीत समस्याएं हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी के साथ ही हमें उसके हिसाब से हमें कौन से यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियाँ आप सुन रहे हैं। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और यहाँ पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: सुने हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों आइए जानते हैं, अगर हम हमारे बाग का अगर अपना बगीचा है उसमें अगर हम रोटावेटर चलाना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए और क्या हमें चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए आदि चीजों को हम जानेंगे, तो आइए सुनते हैं।
2: हम रोटावेटर का पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि
3: कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल
2: रोटावेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम जमीन की जुताई करते हैं आजकल अक्सर हमारे किसान भाई रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां पे हम एमबी पुलों को यूज करते हैं, जहां पे हम डिस्क पुलों को यूज करते हैं, उसके बाद जो जमीन तैयार होती है अगर हम साइड में रोटावेटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा सीड बेड तैयार होता है, मतलब उस जमीन में अच्छी नमी भी रहती है और उसमें जो हम बीज बोते हैं वो सही से निकल भी आता है। अब जो हमारे किसान भाई सवाल किए कि अनार की खेती में अगर आप रोटावेटर उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप सही में जो अनार का पेड़ है उसके आसपास में जमीन खोलना चाहते हो तो आप उसमें रोटरी इक्विपमेंट यूज कर सकते हो, ताकि उसके आसपास जो जड़ है उनमें सही से जो भी आप फर्टिलाइजर देना चाहोगे या कुछ भी उसमें न्यूट्रिएंट डालना चाहोगे वो सही से इस्तेमाल हो, या जमीन एरेट हो जाएगी, सही से उसमें हवा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अनार के पेड़ के आसपास अगर आप जमीन खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप छोटा सा जो ट्रैक्टर वाला है वो सही से नहीं आ पाएगा,
3: क्योंकि इतना जगह नहीं होगी,
2: उतना जगह नहीं होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड आता है जिसके पीछे आप चल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला रोटरी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो पेड़ के आसपास है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे मिट्टी में अच्छी तरह से खाद हो चाहे उर्वरक हो वो जा पाएंगे और उससे आपकी अनार के पेड़ को ही यहां पर लाभ मिलेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं हमारे कृषि में लगने वाले उपकरणों को कैसे यह हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, साथ ही हमें ये कृषि यंत्रों का की देखरेख कैसे करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें हमारा सावधानी से इसका इस्तेमाल करना भी काफी जरूरी है। इसी के साथ आइए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं ड्रोन के ऊपर। हमारे डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में हमसे बता रहे थे ड्रोन के बारे में, तो आइए जानते हैं थोड़ी सी विस्तार से इसके बारे में, आइए सुनते हैं।
2: जो ड्रोन की बात है कि जो ड्रोन है बागों में उसका बहुत ही इस्तेमाल है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो सबसे बड़ी समस्या फेस करते हैं बागों में वो है कि उसमें स्प्रे करना है। अगर हम ड्रोन की बात करेंगे कैसी भी जमीन हो, अक्सर हमारे क्या होते हैं कि जो बाग है किसी ढलवान पे होते हैं या कहीं पे कोई पेड़ ऊंचा कहीं नीचा, तो उसमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल रहता है और टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और जो केमिकल है जो उसमें स्प्रे पेस्टिसाइड है वो भी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसमें किसानों की जो आई है उसमें भी ज्यादा बढ़ावा नहीं होता है उसके बाद। तो इसीलिए जो ड्रोन है ड्रोन का बहुत ही उपयोग है उस बाग की खेतों में, उसमें हम ड्रोन को इस्तेमाल करके किसी हाइट पर रख के ड्रोन से
3: अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में ही छिड़काव होता है, जितना जरूरी होता है उतना ही छिड़काव होगा, आपकी लागत में भी यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं होगी, लागत में कमी ही आएगी इससे। और कौन कौन से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने रोटावेटर के बारे में तो बता ही दिया कि कैसे

0: वो वहां पे बेड प्लांटर का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो या रिजर प्लांटर भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके आप साइड में नाली भी बनेगी और वहां पे बेड पे प्लांटिंग भी होगी। या अगर हमारे किसान भाई, कुछ लोग किसान भाई आजकल मेज यूज करते हैं, हाइब्रिड मेज, उसमें आप न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो सीड है हाइब्रिड सीड बहुत ही महंगा रहता है। उसमें हमारे किसान भाई अगर नॉर्मल प्लांटर से प्लांटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा सीड जाता है
1: जी,
0: तो उसमें और डैमेज भी होता है सीड, उससे अच्छा है कि आप वहां पे न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जो धान के बदले मक्का लगाते हैं, जहां पानी की कमी होती है वहां पे अक्सर लोग हमारे मक्का लगा देते हैं। इसी तरह अगर आप बागवानी में है कि उसको तैयार कर रहे हो, आपके लिए सबसे अच्छा है कि जो पेड़ है उसके आसपास में जमीन को तैयार करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है रोटरी इक्विपमेंट, क्योंकि आपको बाग के आसपास पेड़ के आसपास घूमना है और वहां पे जमीन को तैयार करना
1: है। ये यंत्र है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए काफी सारे यंत्र उपलब्ध हैं जिनको आप अपने खेती किसानी में शामिल कर सकते हैं, अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और सरकार इसमें आपकी पूरी मदद कर रही है, आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके यंत्रों।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, जैसा कि लगातार हम कृषि उपकरणों को लेकर बातें कर रहे हैं, कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी ले रहे हैं, आइए लेते हैं कुछ और जानकारी। ड्रोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं और ड्रोन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कौन सी नई तकनीकी अभी आ चुकी है, आइए जानते हैं कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को।
4: ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे, वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर चार छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं, इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: साहब।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज की खेती बाड़ी में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जैसे कि आपने आज के हमारे जो मुख्य बिंदु थे कृषि उपकरणों को लेकर, हमने भिन्न भिन्न उपकरणों की जानकारी हमने हासिल की। साथ ही हमने कैसे हमारा किसान ट्रेनिंग भी ले सकता है, कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कहाँ इसका रख रखाव में और कौन कौन सी चीज़ें जिसका हमारे किसानों को अधिकतर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे हमें इनमें सावधानियां रखनी चाहिए, जैसा कि हमारे कृषि एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि इसमें लापरवाही की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी उंगलियां, अपने हाथ का नुकसान कर लिया है। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान से चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें इन कृषि उपकरणों से हमें चोटें भी आई है, इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसका इस्तेमाल हमारे लिए फायदेमंद तभी हो सकता है जब हम इसका ध्यान रखें, इसका रख रखाव अच्छे से करें और इसकी हमें ट्रेनिंग लेना है कि बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण मिले हैं, जिससे हमारा जो मजदूर है, हमारा किसान पे जो काम का जो भार था वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हमारा जो किसान है अभी इन उपकरणों की सहायता से, जहां हमें अधिक मजदूर लगते थे और समय जहां पर काफ़ी ज़्यादा लगता था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो किसान साथियों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभील 90.8 FM के साथ।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टांट्याभील 90.8 FM में जावा की आवाज। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्याभील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, साथ ही रेडियो टांट्याभील 90.8 FM का यह प्रयास रहा है कि हमारा झाबुआ का किसान कृषि विज्ञान में आ रही नई से नई योजनाओं को, नई से नई तकनीकों को समझे और उसे अपने खेतों में उसका प्रयोग करें और इससे उन्नत पैदावार ले सके। साथ ही उन्नत किस्मों के बीजों के बारे में हमारा किसान जाने और हमारी कृषि में नए से नए बदलाव ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। हमारा यह हमेशा से सहयोग रहा है कि हमारी रेडियो टांट्या भील 90.8 FM की टीम हमारे किसानों के साथ ही साथ उनके साथ 1-to-1 के माध्यम से भी हमारे किसानों समस्याओं को जाना है, साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी हमारे किसान हम तक अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं। तो हमारा रेडियो टांट्या भील 90.8 FM का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम एक्सपर्ट को आप तक पहुंचा सके, एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा सके और हमारी जो उन खेती है उसमें विभिन्नता ला सके, उनमें उन्नति ला सके और उसे और बेहतर से और अधिक बेहतर बना सके। तो यही हमारा प्रयास है।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा झाबुआ का किसान न केवल खेती बल्कि पशुपालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन में कहीं न कहीं जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। किसान साथियों, मुर्गी पालन एक अच्छा और कम लागत में होने वाला एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं हमें कुछ बातों का अगर हम ध्यान दे ले तो हमें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में किसान साथियों, हम जानेंगे कैसे हमें मुर्गी का देखरेख करनी चाहिए, मुर्गी पालन, मुर्गी पोल्ट्री फार्म हमें कैसे खोलना चाहिए और हमें इसमें क्या क्या योजनाओं के लाभ मिल सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
6: मुर्गी पालन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में काफी अच्छे स्तर पर किया जाता है। किस तरह से हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत बन सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
7: भारत में मुर्गी पालन का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। पिछले 5 दशक में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है और आज भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पूरे उत्पाद की बात यदि हम करते हैं तो भारत का 3rd नंबर पर स्थान है अंडा उत्पादन में और 5वें नंबर पर स्थान है मुर्गी मांस उत्पादन में। इस समय भारत में कुल मिलाकर 851 मिलियन पोल्ट्री मौजूद हैं और जब मैं पोल्ट्री शब्द का प्रयोग करता हूं, जिसे हिंदी में कुक्कुट भी कहते हैं, तो इसमें मुर्गी और जापानी कोयल या जापानी बटेर, गिनी फाउल, बत्तख और जो भी व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं बर्ड्स या पक्षी, वो सब कुक्कुट में एक समूह के रूप में शामिल होते हैं
6: जी।
7: तो इस समय हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह लाभान्वित हो रहे हैं और ये आय को बढ़ाने का एक बहुत ही सुदृढ़ तरीका है, बहुत ही सक्षम एक टूल के रूप में इसको देखा जाता है। पोल्ट्री का
6: एक बहुत तो अच्छा जरिया बनकर सामने आ सकता है हमारे किसानों के लिए अगर वो अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं। देखिए, आप खेती किसानी के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को भी अपनाते हैं, काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं।
8: मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जला कर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुए, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
6: देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मुर्गी पालन पर, किस तरह से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, अभी आपने जाना है विशेषज्ञ से, भी हम कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, बरसात का मौसम चल रहा है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश है और लेकिन कहीं कहीं काफी हम अब कमी भी देख रहे हैं इसमें, लेकिन हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए जब बात आती है हमारे पशुओं की, तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इस मौसम में, खासतौर पर हमारे पशुओं के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे?
9: किसान भाइयों को जो बरसात के मौसम में पशुओं का जो ध्यान रखना है, उनका प्रबंधन करना है, वो मुख्यतः चार हिस्सों में अगर हम इसको देखें तो ये है। सबसे पहले है जो आहार का प्रबंधन कैसे करें, आवास का प्रबंधन कैसे करें, स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, और जो इसमें मुख्यतः जो दुधारू पशु है उनसे हमें दूध जो मिलता है ना, तो दूध दोहने का प्रबंधन कैसे करें। तो ये चार चीजों का प्रबंधन अगर हम अच्छे से करेंगे तभी हम पशु से जो है वो बहुत फायदा ले पाएंगे। तो आहार प्रबंधन की जब बात करते हैं जो पशु में सबसे मुख्य है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत होता है, घास जो है वो चारा जो है वो बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस चारे को वो बहुत कच्चा होता है, तो उसको जब पशु खाता है, उससे पहले जब बरसात का मौसम नहीं था तो पशु के जो पेट में वो अलग तरह की क्रियाएं थी, वो उसको अलग तरह से पचा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कच्चे घास खाता है जिसमें पानी ज्यादा होता है तो पशु का जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को दस्त लग जाते हैं, और एक बार जब पशु बीमार हो जाता है तो उससे फिर पशु का जो दुग्ध उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है।
6: जी, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे जो पशुपालक है वो संतुलित मात्रा में आहार का यहाँ पर सेवन हमारे पशुओं को कराएं ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे इस बरसात के मौसम में। किस तरह का संतुलन यहाँ पर हमारे आहार में हमारे पशुओं के लिए करना है इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, हम आपको वो दिखा देते हैं।
8: इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं को खास देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं को किसान का धन माना जाता है और गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं। इसलिए पशुओं पर ध्यान दें। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोंटू व मुँह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सप्ताह में एक या दो बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं, इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दें, जिसमें 60% गीला व हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। पशुओं की बाड़ी की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़ी के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें।
6: जाना अभी आपने कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है इसके बारे में विशेषज्ञ से लगातार जानकारी लेंगे, लेकिन यहां पर पहले डॉक्टर सक्सेना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है उनके लिए, लेकिन जरूरी है कि पहले वो निश्चित कर लें कि उन्हें अंडे के लिए उत्पादन लेना है या फिर मांस के लिए। तो ये निर्णय लेना कितना जरूरी हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है जब मुर्गी पालन के व्यवसाय से हमारे पशुपालक जुड़ रहे हैं?
7: देखिए, इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो जो पशुपालक भाई हैं उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास जो उनका इनकम का स्रोत है या उनके पास जो कैपिटल कहलाता है, धन कितना है, धनराशि कितनी है, और उनके आसपास किस तरह का बाजार उपलब्ध है, इसकी थोड़ा सा उनको जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। जिसके आधार पर यदि वो छोटे स्तर का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में इसका मांस का उत्पादन करना आसान रहेगा, क्योंकि अंडा उत्पादन यदि करते हैं तो छोटे स्तर पर अंडा उत्पादन करने में बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। अंडा उत्पादन के लिए यदि व्यवसायिक स्तर पर किया जा रहा है तो थोड़े बड़े स्तर का अंडा उत्पादन करने में ही फायदा होता है, जबकि मांस उत्पादन में एक साल में कई साइकिल ली जा सकती हैं, क्योंकि प्रति 5 सप्ताह में नया मतलब एक पुराना हैच निकलकर 1 सप्ताह का उसे विराम देने के बाद कुल 6 सप्ताह में एक साइकिल को कम्प्लीट करके नया ग्रुप चूजों का डाला जा सकता है। तो इससे बार बार आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आप पर बहुत ज्यादा धन का लोड नहीं आएगा।
1: जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। आइए किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो क्या इसे आर्थिक सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
7: मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो यदि आप मुर्गी पालन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के लिए आपके नजदीक में ही, बाराबंकी के नजदीक में ही बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ साल में कई बार ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। आप उनके निदेशक महोदय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, उसकी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। साथ ही साथ वहां पर जो वैज्ञानिक हैं वो आपको आर्थिक सहायता के लिए भी, उसके जो प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसे डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिससे आपको बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी, उस तरह के प्रोजेक्ट भी आपको बनाने में मदद कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आपको आपके अनुसार, जो आप पे जमीन उपलब्ध है, आप कितने बड़े स्तर का कार्य, अपना ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको देंगे, जिससे आपको बैंक में लोन आसानी से मिलेगा। और इसके साथ साथ वो आपको बैंक से लोन दिलाने में भी, आपको जो एक आजकल बहुत एक शब्द चल रहा है हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़कर चलने वाली बात, वो शुरू में आपको काफी मदद करते हैं। और एग्री बिजनेस भी एक आईसीआर के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए जितनी भी हमारी तकनीकियां हैं जो किसानों को लाभान्वित कर सकती हैं, वो उस एग्री बिजनेस के जरिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्वयं उनको करके देख सकते हैं संस्थान के अंदर। और उस ट्रेनिंग का यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा और विशेषज्ञ आपको वो प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट नीति भी है, जिसमें आप अंडा के लिए और मांस के लिए यदि कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। कुक्कुट के विषय में यदि आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा प्रोफार्मा उपलब्ध है, पूरी जानकारी उपलब्ध है। कई तरीके की इसमें सब्सिडी है, जमीन पर सब्सिडी है, बिजली पर सब्सिडी है, पानी पर सब्सिडी है, तो काफी आराम से आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं।
6: जी बिल्कुल। तो देखिए जितेंद्र जी, आपके जो सवाल था यहाँ पर कि किसी तरह की आर्थिक मदद के बारे में आप जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है कि किस आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रशिक्षण यहाँ पर जरूर ले लें, बहुत जरूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, श्री नारंग जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो।
10: हेलो,
6: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
10: मैडम, हमारा जैसे गाय है, हमारे पास जर्सी गाय
6: जी,
10: वो दूध कम देती है, उसका दूध बढ़ाते के लिए क्या करना पड़ेगा?
6: दूध जो है कम दे रही है, उसका दुग्ध उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार आप इस संदर्भ में?
9: जी, जहाँ तक जर्सी गाय की बात है तो ये ज्यादा दूध, अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय है, तो इसके लिए हमें इसके आहार के प्रबंधन की सबसे मुख्यतः इसमें है वो है आहार प्रबंधन। तो आहार प्रबंधन के लिए जब इसमें बात की जाती है तो इसमें जो है बरसात के मौसम से, अगर वैसे भी अगर हम दूध में ज्यादा हमें बढ़ाना है तो उसमें जो कंसंट्रेट है, जो दाना है, उसका मुख्यतः हमें ख्याल रखना होता है। तो अगर पशु का हरा चारा और सूखा चारा और कंसंट्रेट का अगर ये मात्रा जो है सही मात्रा में नहीं होगी तो पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर मुख्यतः गाय 10 लीटर से ज्यादा का दूध दे रही है तो 3 किलोग्राम के आसपास दाना जो है वो एनिमल को एक मुख्यतः देना ही देना है। उसके अलावा वो जितना ज्यादा दूध दे रही है, 6-7 किलो दूध के अलावा, तो हर एक केजी दूध के ऊपर हमने 2 से 2 किलो दाना उसको देना है। तो इस तरह से मुख्यतः अगर देखा जाए जो जर्सी गाय है उसमें अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें 4 केजी के आसपास हमें उसमें दाना उसको देना है। और उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम दिन भर में उसको हरा चारा भी देना है और 5 से 6 किलोग्राम के आसपास जो है वो सूखी तूड़ी उसको साथ में दे दिया है। तो इस तरह से अगर हम आहार का मिश्रण इस तरह से रखेंगे तो हमारी गाय जो है वो प्रतिदिन जो है वो दूध जो है वो अच्छे से देगी। इसके साथ साथ हम अगर इसमें देखें तो एनिमल के आहार में नमक है, खनिज लवण है, वो 30 से 40 ग्राम और नमक जो है वो 20 से 30 ग्राम, उसका भी हमने उसमें मिश्रण करना है। तो इस तरह से अगर ये मिश्रण हम करेंगे तो एनिमल के दूध पे जरूर उसमें वृद्धि होगी।
1: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जरूरी है कि हम हमारे पशुओं के आहार में कुछ बदलाव लाएं, थोड़ा खनिज इसमें डालें, थोड़ा सा नमक का प्रयोग करें, ताकि हमारा जो पशु है ना केवल उसके दूध में वृद्धि होगी और वो पानी, अगर हम नमक थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आटा भी हम डाल के उनको देते हैं तो वो उनकी जो क्षमता है पानी पीने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो अमूमन से कुछ ज़्यादा ही पानी पिएंगे। और किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। तो किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: पशुओं में बरसात के मौसम में एक बहुत ही मुख्यतः समस्या रहती है किसान भाइयों को, तो इस समस्या के निवारण के लिए मैं कहूँगा कि जब बरसात के मौसम में पशु जहाँ पे रहता है उसके आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है, एक तो उसको इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, उनके जो लाल स्टेजेज होती हैं वो वहाँ पे पनप जाती हैं और फिर मुख्यतः जो है वो मच्छर और मुख्यतः जो है वो पशुओं को तंग करती हैं। तो इसमें मुख्यतः एक तो यह है कि पानी इकट्ठा ना होने दे, अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी निकासी करें या उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिनाइल वगैरह डालते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी उनकी लालो स्टेजेज हैं वो पनपे ना। और जो एक मुख्यतः जो दवाई मिलती है ब्यूटॉक्स नाम से, है ना, जिसमें डेल्टा मेथियन होता है, वो 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के वो भी आप पशु को लगा सकते हो। तो इसमें और जो चीचड़ों की बात की है उसका अगर छिड़काव करेंगे इस दवाई का तो चीचड़ जो है वो कम होंगे। और मुख्यतः जहाँ पे आप पशु का आवास है वहाँ का जो वहाँ की जो दीवारें हैं उसमें छिद्र होते हैं जिसमें जो है चीचड़ वगैरह वो चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस दवाई का छिड़काव करना है, जिससे कि वहाँ पर भी जो चीचड़ वगैरह होते हैं तो वो मर जाए और पशु के शरीर पर न जा सके। तो इस तरह से आपको इसका समाधान करना है।
3: जी बिल्कुल। तो विजय कुमार जी, किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। पढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो।
4: हाँ जी,
3: नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है राकेश कुमार जी, पूछे।
4: जी
3: राकेश कुमार जी, आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा अपना सवाल हमसे पूछिए।
4: जी मैडम, मऊ जिला प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, पहले से पोल्ट्री फार्म जैसे चला रहा हूँ 1 साल से
3: जी।
4: तो मैं जो है सर अभी लीज पे लेके फार्म चला रहा था, अब अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या

0: कुछ एनजीओस के माध्यम से भी इन प्रशिक्षण को ले सकते हैं। तो किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से हमें यह फायदा होगा कि हम समय पर हमारे पशुओं को समय पर उसका कौन सी दवाई देना है, साथ ही हमें किस तरीके से हमारे पशुओं का रखना चाहिए आदि जानकारियां हमें पता होगी, तो हम उसके हिसाब से हमारे पशुओं की देखरेख कर पाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर हमारे किसान का सवाल था कि जब गाय भैंस जो जनती है उसके बाद जो जेर गिरता है वो पशु खुद से खा जाता है, इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या पशु बीमार हो सकता है। तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: मुख्यतः तो हम सबसे जो जरूरी है वो यही रखना है कि मोस्टली जो है यानी कि 6 से 8 घंटे में जो पशु जो है वो जेर गिरा देता है, तो उस समय हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर पशु ऐसा कर लेता है, अगर पशु जेर को खा लेता है, तो सबसे ज्यादा इसमें यही मुख्यतः ध्यान रखना होता है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएं, फिर एंटीबायोटिक से या जो भी दवाइयां उस समय लगती हैं पशु को इस टॉक्सिसिटी निवारण के लिए, तो उससे फिर बहुत राहत मिलती है और पशु जो है मुख्यतः आ जाता है वापस खाना खाने लगता है।
0: जी हाँ किसान साथियों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है पशुओं के साथ, तो आप जल्द से जल्द पास के पशु स्वास्थ्य केंद्र में उसको लेकर जाएं और वहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको दवाई देंगे और जिससे पशु को हम बचा सकते हैं। इसमें कोई पशु को जो दिक्कत होने से हम उसमें राहत मिल जाएगी, उसमें जो दवाइयाँ मिलेगी आप समय समय से उन्हें दे सके अपने पशु को खिला सकते हैं और इससे निजात पाया जा सकता है।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताया इसमें सेप्टिक होने का डर रहता है, अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं और उससे पशु ज्यादा बीमार पड़ सकता है, तो तुरंत ही इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाने से
4: एंटीबायोटिक का कोर्स यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द हमारे दोनों विशेषज्ञों की यही सलाह है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, समय बिल्कुल मत गवाइए। जैसे आप कह रहे हैं रात के समय ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी आप समय यहाँ ना गवाइए। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर सक्सेना आपके पास ही आना चाहूंगी। आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमारे पशुपालकों को मुर्गी पालन के व्यवसाय से, तो शुरुआत प्रशिक्षण के बाद का कदम क्या होगा शुरुआत करने के लिए?
3: प्रशिक्षण के दौरान जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर या प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लेते हैं तो वो प्रशिक्षण भी अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा और इसको विस्तृत रूप में बताना चाहूंगा। जैसे मुर्गी पालन के संबंध में ही मैं हम लोग दो तरह के क्या बल्कि अब तो तीन तरह के मुर्गी पालन हो गए, एक तो अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ, एक मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको कहते हैं, जिसे ग्रामीण पोल्ट्री या पिछवाड़े घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली पोल्ट्री व्यवस्था भी कहते हैं। तो तीन तरह के प्रशिक्षण अलग अलग दिए जाते हैं, इनके कोर्स भी अलग अलग स्पेशली चलते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, वो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उस ट्रेनिंग में जाएं जिसमें वो व्यवसाय करना चाहते हैं। यदि अंडे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंडा उत्पादन से जुड़ी ट्रेनिंग में जाएं, यदि कुकुट मांस का उत्पादन करना चाहते हैं तो ब्रायलर की ट्रेनिंग में जाएं, यदि उनके पास पूंजी कम है और वो छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो बैकयार्ड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के ट्रेनिंग में जाएं। तो इसमें आपको शुरुआत से लेकर नस्ल किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अंडा उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं और मांस उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी, कहां से आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी पशु या पक्षी व्यवसाय में उसकी नस्ल है, यदि नस्ल अच्छी है तो उसका उत्पादन बढ़िया होगा।
4: जी
3: नंबर दो पे आता है दाना पानी खान पान।
4: जी दाना पानी के बारे में जानेंगे लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं फिर आपका यहाँ पर रुख करेंगे कि दाना पानी और खान पान का व्यवस्था किस तरह से करनी है। गुजरात से हमारे साथ इस वक्त कमलेश जी फोन लाइन पर है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
5: सर हमारा सवाल है कि अभी बरसात के मौसम में

0: हाँ बरसात।
1: हेलो
0: जी, बरसात के मौसम में क्या जानना चाहते हैं?
1: बरसात के मौसम में ये पशु है ना हमारे, वो कम पानी पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या पिए, ऐसा क्या करना चाहिए?
0: आपके जो पशु हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं बरसात के मौसम में, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था आपको करनी है? डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को?
2: बरसात के समय में जो पशुओं का आवास प्रबंधन है उससे मुख्यतः ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए अगर आपने आवास को अच्छे तरह से आवास में सूखा रखा है, आराम दे रखा है, पंखे लगाए हैं, खिड़कियां वगैरह का अच्छे से प्रबंध है और आर्द्रता उसकी जो है वेंटिलेशन अच्छा है तो कम हो जाती है, तो इससे पशु जो है स्ट्रेस में नहीं होगा। तो पशु को सामान्यतः जितना पानी पीना होता है तो वो उतना पानी पिएगा। अगर पशु इसमें बरसात के मौसम में आर्द्रता के कारण अगर पशु स्ट्रेस में आता है तो पशु जो है वो पानी पीना कम कर सकता है। तो इसके लिए मुख्यतः यही है कि आप अपने आवास का प्रबंधन करें, अपने आवास को अच्छे से उसका वेंटिलेशन हो, उसमें पंखे लगे हो, उसकी खिड़कियां अच्छे से खुली हो, तो इस तरह से आप जो है पशु फिर जो है वो आराम से जो जितना पशु को चारा, जितना पशु को पानी चाहिए होता है वो पशु उसमें पीता है।
0: जी, तो इस तरह से आप आवास का प्रबंधन सही कीजिए। देखिए पानी पीने कम पीने की जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी यहाँ पर कमलेश जी। तो देखिए ऐसी ही जानकारियाँ
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे बरसात के दिनों में पशुओं की देखरेख और साथ ही आप सुन रहे थे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: वेटनरी कॉलेज भी बहुत सारे हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको उनके जो एक्सटेंशन डिवीजन है जो उनके विश्वविद्यालय के और जो प्रोफेसर लोग हैं वो इस कार्य में इनकी काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें किसानों की हैंड होल्डिंग करना या उनको शुरुआती तौर में इतनी मदद करना कि वो अपना व्यवसाय खुद खड़ा करने में सक्षम हो सके। ये सारे विश्वविद्यालय और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उनमें जो हम लोग कार्यरत हैं वो सब किसान भाइयों के लिए समर्पित हैं और काफी हद तक इवन बैंक में जाकर भी जो बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करके किसानों की जो भी दिक्कत है उसको सुलझाने में उनकी बहुत मदद करते हैं। तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि अपने आसपास के किसी पशु विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे मैंने बताया जबलपुर में भी है उनके प्रोफेसरान से बात करें उनके जो एक्सटेंशन के डिवीजन के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात करें तो उससे जरूर उनको मदद मिलेगी। बाकी बैंक से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसकी यदि ये जानकारी बताएं तो उन्हें और अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है कि बैंक इनसे किस चीज के कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो ये नहीं दे पा रहे हैं या जिससे इनका लोन मिलने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह से ये अपने कार्य को थोड़ा सा सुलझा सकते हैं।
3: वहां पर संपर्क करके पूर्ण अपनी जानकारियां वहां पर दे करके आप इस जो आपकी समस्या है उसमें समाधान आप हासिल कर सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं तमाम विश्वविद्यालयों में तमाम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं यहां पर जितने भी कार्यरत अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। आप उनका भी संपर्क यहां पर कर सकते हैं उनके साथ भी आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कॉर कॉलर मार्च से यहां पर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो
4: हेलो
3: नमस्कार हरीश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका
4: जी?
3: अपना सवाल पूछिए।
4: ये हमारा सवाल है कड़कनाथ मुर्गे जैसे हमने 100 लाए थे तो उसमें से 85 हो पाए बड़े
3: जी 85 ही बड़े हो पाए हैं।
4: हाँ
3: जी
4: 100 लाए थे मतलब
3: जी
2: 100 में से 85
4: हाँ
2: तो आपने छोटे चूजे लिए होंगे जहाँ से भी आप
4: चूजे 100 लाए थे तो 50 बचे मतलब
2: 100 में छोटे एक दिवसीय चूजे लाए थे या थोड़े बड़े लाए थे?
4: छोटे लाए थे एक दिन दो दिन के वेटनरी कॉलेज से लाए थे।
2: देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा जो आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में छोटे चूजों का प्रबंधन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जटिल भी है। यदि वहाँ आपसे कोई चूक होती है तो उसका असर आखिर तक रहता है उसमें मृत्यु दर भी बढ़ सकती है उनकी जो बढ़वार है वो भी कुप्रभावित हो सकती है अच्छी तरह से उनमें बढ़वार नहीं आएगी। यदि दाना और उनका रख रखाव जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यदि कम जगह में ज्यादा चूजे रख दिए मुझे ये नहीं ज्ञात है कि आपने किस तरह की व्यवस्था दी कितने एरिया में कितने चूजे रखे क्योंकि आमतौर पर जो देसी मुर्गियां हैं जो आप कड़कनाथ बता रहे हो उसमें मृत्यु दर काफी कम होती है। जब हमारी व्यावसायिक रूप से जो हाई यील्डिंग या जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है उस तरह के जो स्ट्रेन है जो बाजार में मिल रहे हैं वो तो मृत्यु दर उसमें बनिस्पत ज्यादा होती है देसी मुर्गियों के मुकाबले। तो देसी मुर्गी में मृत्यु दर कम होती है मगर आपकी काफी ज्यादा 50% मोर्टिलिटी हो जाना काफी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन में कोई दिक्कत रही या जहां से आपने चूजे खरीदे वहां से वो कोई बीमारी लेके आए जो आपकी नॉलेज में नहीं थी और इस बीमारी की वजह से वो चूजे मरे। तो जहां से भी आप चूजे खरीदते हैं बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस संस्था से या उस संस्थान से आप पूरी जानकारी लें कि इन्हें कौन कौन से टीके लग चुके हैं या ये किस व्यवस्था में रह रहे थे और इन्हें आगे क्या व्यवस्था, किस एज पर क्या खाना दाना दिया जाना है, ये सब जानकारी यदि उपलब्ध करके आप आएंगे तो आपको इसमें पालन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि टीका लगा हुआ है, आपने टीका नहीं लगवाया और वो उसकी उम्र पे आके वो बीमारी उसको पकड़ेगी
5: जी।
2: और उससे मृत्यु दर बढ़ेगी। अब बीमारियां भी बहुत सारी होती है ना, न्यूकासल डिजीज है जिसमें रानीखेत डिजीज जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा मृत्यु दर हो जाती है। तो यदि आपने कोई टीके लगाने में चूक करी उसकी वजह से मृत्यु दर हो सकती है, साफ सफाई में कोई आपकी गलती हुई वहां बीमारी फैल सकती है, या आपने कम जगह में ज्यादा चूजे उनके रख दिए तो आवासीय प्रबंधन में आपके चूक हुई वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप प्रशिक्षण यदि लेके काम करते हैं
3: लेंगे तो ये सब तमाम जो समस्याएं हैं ये आगे आएंगी, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि इस समय में ये इस तरह की समस्या आ सकती है तो पहले ही आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे विशेषज्ञ लगातार यहां से कह रहे हैं प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जानकारी आप जरूर हासिल कर लीजिए।
2: एक चीज और है, प्रशिक्षण लेने में जहां से भी आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको संस्थान से एक नाता जुड़ जाता है। मैं भी बहुत सारे प्रशिक्षण में खुद शामिल रहा हूं, तो जो भी हमारे किसान भाई आते थे, आप यकीन मानिए आज तक मैं जबकि उस संस्थान को छोड़ चुका हूं दिन भर उनके फोन मेरे पास आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो अपने जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं उनको फोन।
0: जी हाँ किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से न केवल हमें जानकारी मिलती है लेकिन हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, हमारा एक अध्यापक और शिक्षक के बीच में जैसा जुड़ाव हो जाता है वैसा एक जुड़ाव आपके साथ आप बना सकते हैं, केवीकी के साथ जो आपके ट्रेनर है उनके साथ एक अच्छा जुड़ाव बना कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आपको कोई भी समस्या आती है, आप जब भी आपका मन हो जब भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें राय ले सकते हैं, ना केवल पशुओं को लेकर बाकी अन्य जिस भी खेती के जिस भी पड़ाव में आपको तकलीफ आ रही है आप उसमें उनको फोन लगा के पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दोहरा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है,

0: 98.8 FM। किसान साथियों, बरसात के समय में अक्सर क्या हमारा जो पशु है वो अधिकतर बीमार हो जाता है, पानी थोड़ा सा कम लेने लगता है, आर्द्रता की वजह से जो उसका चारा है उसमें नमी ऐसी आ जाती है और हरा चारा खाते ही वो दस्त करना शुरू कर देता है। तो इन सब समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे हमें बरसात के समय में हमें कैसे इन सब पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: अगर किसान भाई ने संतुलित आहार, उसके आवास का प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे से नहीं रखा है, तो अगर ये घास वगैरह पशु को डालते हैं और वो कच्ची घास है तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पशु का पेट जो है वो भरा भरा रहता है और उसका पेट में जो किण्वन क्रिया होती है तो वो जो है वो एक सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिससे उसका दूध उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई को चाहिए कि पशु का जो आहार है वो संतुलित मात्रा में दें, उसमें जो है सूखा चारा 40% रखें और जो हरा चारा है वो 60% उस और साथ में जो है वो दाना रखना है उसको। तो इस तरह से अगर पशु के जो आहार की अगर प्रबंधन रहेगा तो पशु का दूध जो है वो कम नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः आप अगर पशु ज्यादा दूध देने वाला है तो उसको जो है मेंटेनेंस के साथ साथ अगर गाय है तो 1 लीटर अगर 6 से 7 केजी दूध के अलावा और दूध देता है पशु, तो 1 लीटर दूध के अलावा उसमें जो है वो 1 किलोग्राम दाना जो उसको और ज्यादा देंगे। और भैंस के केस में अगर वो 3 लीटर दूध देता है तो उसमें जो होगा 1 किलो दाना जो है वो उसको एक्स्ट्रा देंगे मेंटेनेंस के अलावा।
2: एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा, चाहे वो पक्षी का बात हो चाहे पशु की बात हो, शुरुआत नस्ल सही है। नस्ल यदि बढ़िया है, अच्छी नस्ल, अब हम देसी पशु की बात करते हैं, जैसे किसान भाई ने पहले भी एक प्रश्न उठाया था, तो देसी पशु में कुछ जो हमारी देसी नस्लें हैं गायों की, जैसे गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ये देसी नस्लें स्थापित नस्लें हैं, इनके बारे में पता है, इनका दूध अच्छा है
3: जी।
2: मगर हम सबको देसी में गिन लेते हैं, बहुत सारी नस्लें वो मिक्सचर हो गई हैं, उनमें कोई नस्ल नहीं है, वो सब मिला जुला हो गया है, तो उनका दूध उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। उनके दूध उत्पादन की हम ये आकांक्षा ना करें कि ये भी उतना ही दूध देंगी जितनी कि एक स्थापित नस्ल की, जैसे कांकरेज या साहिवाल या गिर की गाय दूध दे रही है, उतना दूध वो नहीं दे पाएंगी। यदि हम एग्जॉटिक, जिसे हम बाहर की विदेशी नस्लों को यदि रख रहे हैं, उनमें दूध उत्पादन अच्छा है, मगर उनके साथ साथ उनका रखरखाव भी अच्छा है। पहला बिंदु नस्ल, दूसरा बिंदु दाना पानी और उसका आवासीय प्रबंधन, तीसरा उसका रोगों की, उसका रोग निदान और रोगों की रोकथाम, और चौथा आपको आजकल की जो हम चर्चा में बहुत ज्यादा शामिल है, बायोसिक्योरिटी
3: जी,
2: कि हम बीमारी को आने ही ना दें, इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई की रखें कि बीमारी पशुओं तक पहुंचे ही ना
3: जी।
2: ये सब चीजें यदि आप करते हैं, अब जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि बरसात के समय में पशु में दूध उत्पादन कम हो जा रहा है, नरेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें पशु कई बार स्ट्रेस में आते हैं
3: जी।
2: एक तो आर्द्रता बढ़ जाती है वातावरण में, और दूसरे टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, गर्म भी होता है कई बार, गर्मी के साथ साथ आर्द्रता जब बढ़ती है तो हमारे शरीर पर कोई भी वो जीव हो उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव आता है, हमारी ताप नियंत्रण की क्षमता से भी कई बार वो आगे बढ़ता है, तब इवन मृत्यु दर बढ़ने की तक की बात आ जाती है। तो इसमें वो सब परिस्थितियां जिनमें तापमान में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो बहुत ज्यादा, उसकी आर्द्रता एटमॉस्फेयर की घट बढ़ रही हो, उस समय आपको बहुत सचेत रहना है और गंदगी बिल्कुल नहीं होने देनी है। मक्खियां आएंगी, मक्खी पशु को परेशान करती हैं, वो दाना खाना नहीं खाता ठीक से, तो उसका दूध कुप्रभावित होता है। यदि आपको कोई भी लक्षण दिखता है, सबसे पहले किसी भी पशु को यदि रोग होता है या उसमें कोई परेशानी होती है, वो दाना खाना छोड़ता है यदि, और अपने हर्ट से अलग हो जाता है, यदि ऐसी कोई भी अवस्था आपको किसी पशु में दिखती है तो तुरंत आप उसको पशु चिकित्सा संपर्क करके उसको दिखाएं।
3: बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है, देखिए जरूर ध्यान में रखिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जगदीश जी आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप?
4: मेरा सवाल ये है कि यहाँ मैं मुर्गी पालन करना चाहता हूँ, उसके साइड में थोड़ा पानी भरा होता है, वहाँ पर मैं मुर्गी पालन कर सकता हूँ
2: क्या? मैं
3: मुर्गी पालन करना चाहते हैं लेकिन जहाँ पानी भराव की समस्या हो, क्या वहाँ पर कर सकते हैं?

0: नहीं, यहाँ धीरे धीरे चीजों को मैं खोलता भी जा रहा हूँ। जब आप प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि के चयन की बात आती है कि जहाँ आप पक्षी के लिए बाड़ा बनाना चाहते हैं या फार्म खोलना चाहते हैं उस भूमि का चयन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे स्थान पर जलभराव की जगह पर आप मुर्गी पालन करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा बीमारी उसमें रहेंगी ना, पशुपालन ठीक से कर पाएंगे आप ना पक्षी का पालन ठीक से कर पाएंगे और उत्पादन आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ऐसी जगह पे कृपया आप
1: तो ऐसी जगह में यहाँ पर मुर्गी पालन करने की सलाह नहीं दी जा रही है। देख
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें
1: कहना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की सावधानियां बरतनी है हमारे यहाँ पर पशुपालकों को?
3: जी, बरसात के मौसम में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है पशु का वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे मौसम में मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो है बहुत मात्रा में जो है पैदा होते हैं। तो अगर पशु का जो टीकाकरण आपने नहीं कराया है बरसात के मौसम से पहले तो आपका पशु जो है वो गंभीर बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। तो मुख्यतः सभी राज्य सरकारें FMD का जो मुंह खुर रोग है इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, तो बरसात के मौसम से पहले ये टीकाकरण कराएं और अपने पशु का इस बात से भी ख्याल रखें कि अगर बरसात के मौसम में आपका पशु जो है वो ज्यादा हरा चारा खाता है तो उसका पेट में जो है दस्त लग जाते हैं, तो ज्यादा पानी की वजह से, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पशु का उत्पादन जो है वो कम हो सकता
1: है। तो इस तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। देखिए बरसात के मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आहार, आवास, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर प्रबंधन सही तरीके से करें, तभी हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारे को आर्थिक लाभ उससे मिलता रहेगा। बिल्कुल,
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने जाना कि बरसात के समय में अधिकतर हमारे पशुओं बीमार होने की संभावनाएं अधिकतर होती है, तो बरसात के समय में हमें कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना इनको देना चाहिए, कौन सी बीमारियाँ होती है और उन बीमारियों में हमें इनका रख रखाव, इनकी देख रेख कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना किसान साथियों। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बारिश का मौसम है इसमें मौसम में बदलाव आएंगे और आपको भी आपकी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है। किसान साथियों, आप हमारी खेती के साथ साथ हमारे पशुओं के साथ साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज, रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर जो मेहमान हमारे साथ हैं, वो आज के जमाने के यंग जनरेशन के एक बहुत उत्साहित, इंथुजियास्टिक, प्योर, दिल के सच्चे और कुछ हद तक बुद्धू भी हैं। इनका नाम है बासु। बाकी की बातचीत हम बासु से करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे। बासु, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू समीर जी, हेलो एवरीबॉडी।
0: तो बासु, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: तो बेसिकली मैं नैनीताल में रहता हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, क्यूट। तो आप केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपने केमिस्ट्री ही क्यों चुना और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं?
1: देखिए, केमिस्ट्री मैंने इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहली बात तो उसमें कुछ करने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होती है जितनी की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ नया इजाद करते हैं, कोई नया केमिकल बनाते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर होता है उसको करने में और पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री चुना है।
0: बहुत बढ़िया, आपकी बात सुनकर जो नई जनरेशन में आपके जैसे ही और भी यंग इंडिविजुअल्स होंगे, उनको आइडिया लगेगा कि अगर उनको केमिस्ट्री चूज करना है तो क्यों चूज करना है। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: She's crazy like

0: बहुत खूब। बासु मुझे ये बताइए, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे जब आप बिल्कुल छोटे थे?
1: देखिए, बचपन में मैं वीडियो गेम्स बड़ा खेला करता था। मेरे पापा मुझे खिलाया करते थे, तो उसमें मैं एक सिपाही बनना चाहता था। मैं हमेशा एक बंदूक लेके और दुश्मनों को मारना चाहता था, और मतलब बेसिकली मैं एक सिपाही बनना चाहता था।
0: ओह, वेरी नाइस। क्योंकि आप वीडियो गेम्स खेलते थे और वहां पर आप दुश्मनों के साथ लोहा लेते थे, लड़ते थे, और इसी वजह से आप एक सिपाही बनना चाहते थे। मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते थे?
1: हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: ओके, वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपने सुना, हर बच्चे की अपनी एक चाहत होती है। बासु की भी अपनी एक चाहत थी, और इसी को आगे ले जाते हुए एक गीत सुनते हैं प्यारा सा।

0: बहुत बढ़िया। आज तक की डेट में आप कहां पर फेल हुए? असफलता क्या थी आपकी? फेलियर क्या थी कोई भी सबसे बड़ी, जिसने आपका दिल दुखा दिया हो, लेकिन फिर उस असफलता से आपने क्या सीखा और फिर आप खड़े हो गए?
1: देखिए, मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ था जो बड़ा भयानक था मेरे लिए। बेसिकली मैं उसको कहूँगा कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था। वो थोड़ा सा पर्सनल फेलियर था तो इसलिए मैं उसकी पूरी डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी हुआ ये था कि पढ़ाई से ही रिलेटेड मैं फेल हो गया था स्कूल में।
0: ओके।
1: तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बहुत कम नंबर आए थे। उसके बाद मैंने मेहनत करी बहुत ज्यादा, टीचरों का सहारा लिया, मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जब मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने टाइम जो है बहुत वेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं फेल हो गया था।
0: बहुत
1: वो चीज आजकल मैं कोशिश करता हूं कि ना करूं।
0: बहुत खूब, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आपने उस फेलियर से सबक लिया, आपने जान लिया कि आपने गलती कहां की थी, किसी और को दोष ना देते हुए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अकाउंटेबिलिटी ली, ओन किया उस को गलती को और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना, अपनी गलती को मान लेना भी बहुत बहादुरी का काम होता है। तो चलिए एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा। बासु, पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपके सबसे फेवरेट फेवरेट टीचर आज तक कौन रहे, कौन थे वो?
1: मेरे आज तक के सबसे फेवरेट टीचर मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, जिन्होंने मुझे 11th में और 12th में केमिस्ट्री पढ़ाई थी। वो मेरी सबसे फेवरेट टीचर थी। वो एकदम आप कह सकते हैं कि मेरी दूसरी मम्मी जैसी थी, मुझे एकदम मम्मी की तरह प्यार करती थी। और आप ये समझिए कि केमिस्ट्री मतलब ये एक और रीज़न है, वो मैम जो थी वो एक और रीज़न है जिसकी वजह से अभी मैं केमिस्ट्री मास्टर्स में कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आप उन टीचर का, उन मैम का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी, उन मैम का नाम है मीना भार्गव।
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना कितना क्लियर याद है बासु को उनकी कौन फेवरेट टीचर थी और उन टीचर ने बासु की जिंदगी पर क्या असर डाला है। तो चलिए, अगला गीत हम डेडिकेट कर रहे हैं बासु की ही इन फेवरेट फेवरेट टीचर को।

0: बहुत बहुत बढ़िया बात है बासु। आपके बारे में लोग अगर कुछ गलत फहमी रखते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो वो क्या बात है, किस बात से वो गलत फहमी रखते हैं?
1: देखिए, लोग जब मुझे देखते हैं पहले पहले, तो ज्यादातर उनके दिमाग में जो गलत फहमी आती है कि ये जो बासु है या फिर जो मैं हूं, कि मैं इतना अच्छा क्यों हूं, मैं इतने प्यार से क्यों बात कर रहा हूं, मतलब मुझे बदले में चाहिए क्या? क्योंकि आजकल के जमाने में कोई भी कोई इंसान दूसरे इंसान से यूं ही अच्छाई में बलमन साथ में तो बात करता ही नहीं, हर कोई अपना मतलब ढूंढता है।
0: वाओ,
1: लेकिन मुझे फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं हर किसी से बस दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं हर किसी से बस खेलना कूदना चाहता हूँ। मैं कॉलेज में भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि लाओ मैं मदद कर दूँ या फिर तुम मेरी मदद कर दो। लेकिन लोग पहले पहले जब मुझसे मिलते तो उनको लगता है कि ये इतना क्या कहते हैं,
0: फ्रेंडली क्यों है?
1: हाँ, ये इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है अचानक से, ये तो हमें जानता भी नहीं है। तो उस बात से लोग थोड़ा गलत फहमी कर लेते हैं कि ये इसके इरादे कुछ गलत हैं।
0: ओहो,
1: लोग ये गलत फहमी पालते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो आज के बाद जो भी आपके दोस्त जानकार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि आप अगर शुरू शुरू में जाकर खेलते कूदते उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो वो ओरिजिनल ही है, वो दरअसल आप सचमुच उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, कोई सेल्फिश मोटो आपका नहीं होता। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बासु मुझे बताइए, आपके बचपन की कोई सबसे क्यूट मेमोरेबल मेमोरी, पसंदीदा याद, कोई याद है आपके पास? हमें बताइए उसके बारे में।
1: देखिए, मुझे ऐसे याद तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन मेरे पास उस मोमेंट की एक फोटो है जो मेरे पापा ने मुझे दी थी।
0: वाओ, ओके।
1: उस फोटो में मेरा बर्थडे था 16 अक्टूबर को और मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना छोटा था कि पापा ने मुझे गोद में उठा रखा था। तो मेरे बर्थडे के दिन पापा ने फोर्ड की आइकन खरीदी थी।
0: अच्छा,
1: तो अब मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उस फोटो को मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो गाड़ी याद आती है और मेरे पापा याद आते हैं जो बहुत खुश थे। मतलब
0: वेरी नाइस।
1: उन्होंने वो गाड़ी बेसिकली मेरे जन्मदिन पे मेरे लिए ही ली थी।
0: क्या बात है, बहुत क्यूट, बहुत ही क्यूट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना कितनी इमोशनल बात है। यूं तो बासु को वो समय याद नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन इंसिडेंटली एक फोटोग्राफ है उनके पास जो ये बताती है कि वो उस वक्त क्या हुआ था। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा ही गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बासु। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी एप्रिसिएशन या प्रशंसा क्या मिली है?
1: सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मुझे ऑफ कोर्स मेरे पापा ने दी है और मेरी मम्मी ने दी है। जब मैं सबसे पहले पहले मेरे को याद है जब मैं स्कूल में मुझे स्पीच बोलनी थी असेंबली में 100-200 बच्चों के सामने, तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैं बहुत घबरा रहा था कि मैं कैसे बोलूंगा, मैं अटक तो नहीं जाऊंगा, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं सब भूल गया। मैं एकदम हिम्मत के साथ बोलता रहा और आखिरी में जब तालियां बजी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में जब मैं घर गया तब मम्मी पापा ने मुझे गले लगा के बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत प्राउड थे। पता नहीं कैसे, मैंने मम्मी पापा को देखा नहीं असेंबली में, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी स्पीच को सुना था और कह रहे थे कि जैसी स्पीच वो बोलते थे उनसे मैं 10 गुना ज्यादा अच्छी बोल गया था उस दिन।
0: क्या बात है, बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग। दोस्तों कितना प्राउड फील करते हैं माँ बाप भी और बच्चा भी, कितना प्राउड फील करते हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप सबकी जिंदगी में भी इस तरीके के मोमेंट्स गुजर चुके होंगे। आप अपने बच्चों के प्रति, आपके बच्चे आपके प्रति इस तरीके के प्राउड मोमेंट्स फील करते होंगे। याद कीजिए उन मोमेंट्स को और चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं बासु। मुझे अपने जीवन के तीन सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो। थ्री पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड।
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पापा का ही नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने जाने ना पता नहीं कितनी चीजों के लिए मुझे इंस्पायर किया होगा, कितनी चीजों के लिए मोटिवेट किया होगा। मैं अभी 24 साल का हो गया हूं, तो आप ये समझ के चलिए कि 20 साल तक मैंने जितनी भी चीजें करी हैं या अभी तक की जिंदगी में मैंने जितनी भी चीजें करी हैं, उसका 90% जो श्रेय जाता है वो मेरे पापा को जाता है। क्योंकि उसमें से जितनी भी चीजें हैं वो मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी। उसके बाद जो दूसरा बंदा है, जो सेकंड पर्सन जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो एक फॉरेन का बंदा है। उसका नाम है डैन विटमर। वो बेसिकली एक यूट्यूबर है। तो बेसिकली वो स्किपिंग करता है, जंप रोप करता है।
0: ओके।
1: और मैंने उसके वीडियोस देख देख के मैंने स्किपिंग को एक अपना पैशन बनाया। और तो उस और मैं जैसे बचपन में थोड़ा सा मोटा भी था, तो मैंने कर करके उसके टीचिंग्स ले लेके मैं पतला हो गया और मैं काफी फिट महसूस करता हूँ आजकल। मैं काफी अच्छा महसूस करता हूँ। और जो तीसरा बंदा है, जो थर्ड पर्सन रहेगा, वो रहेंगी मेरी मम्मी।
0: ओके।
1: वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है। वो मतलब आप उनको कोई भी काम दे दो वो काम करके दे देंगी। और वो हर समय काम कर पाती है, वो रुकती नहीं है, ब्रेक नहीं लेती, थकती नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता वो कैसे काम कर लेती है। मेरे पापा भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। हम दोनों सो जाते हैं रात में, उनको कोई काम होता है तो वो खत्म करके सोती हैं। जब तक उनका काम नहीं खत्म होता वो सोती नहीं है। तो मुझे वो चीज कि बिना थके हुए लेकिन काम पूरा करने वाली उनकी ये जो हिम्मत है वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती है।
0: क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड कि इन तीनों व्यक्तियों से आपने क्या क्या सीखा और क्यों वो लोग आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत खूब। दोस्तों, हम भी अगर अपने मन में झांकें, अपने इतिहास में जाएं, अपनी जिंदगी में देखें, तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हमें चुपचाप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इंस्पायर किया होगा। हमें वो पसंद आए होंगे, उनके तौर तरीके हमने अपनाए होंगे। बहुत खूब। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: कम करना है, उसके लिए तो 20-20 किलोमीटर दौड़ना होगा। बस वही लोग मात खा जाते हैं। आप एक दिन 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे, उसके बाद महीने भर की छुट्टी मार देंगे। वही नहीं करना है आपको, कंसिस्टेंसी लानी है। आप हफ्ते में 5 दिन 2-2 किलोमीटर दौड़िए, तो हफ्ते के 10 किलोमीटर हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए, ताकि आप थके भी नहीं, आपका रूटीन भी ना टूटे। और देखिए, अब फिट फिट रहने का दूसरा पहलू, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका खाना पीना। आपको खाना पीना कम करना पड़ेगा। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको खाना कम खाना पड़ेगा। इसमें और कोई तरीका नहीं है। आप बोले कि नहीं, हम खाना तो कम नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज ज्यादा कर लेंगे, तो मैं माफी चाहता हूं, उससे नहीं होगा। आपको खाना कम खाना ही पड़ेगा। तो खाना कम करिए, खाने को बंद मत करिए। आप ये मत करिए कि आप जो है रोटी छोड़ दें, दाल छोड़ दें, फल छोड़ दें, और जितनी भी चीजें जो शरीर के लिए जरूरी हैं वो सब छोड़ दें। ये नहीं करना है, सब कुछ खाना है, बस कम कम खाना है, और एक्सरसाइज लगातार करनी है। आप ये करेंगे तो आप फिट होते जाएंगे।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात कही। और जो इम्प्रोवाइज्ड मैसेज दोस्तों हमें यहां मिल रहा है आज की यंग जनरेशन से, वो ये है कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो एक रूटीन बनाना होगा और उसको बहुत रिग्रस नहीं करना है। 10-10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो 2 किलोमीटर तो सिर्फ 2 ही किलोमीटर दौड़ी, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन रेगुलर। एंड देन खाने को कम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बासु ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं।
0: और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि
1: प्लीज डू।
0: फिटनेस में टाइम लगता है। आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि 1 महीने में मैं फिट हो जाऊंगा, 2 महीने में हो जाऊंगा, 3 महीने में हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 70 किलो के हैं और आप 50 के होना चाहते हैं, या फिर आप 90 किलो के हैं और आप चाहते हैं कि मैं 70 किलो का हो जाऊं और फिर 70 किलो का ही रहूं, और 70 किलो पर मैं अच्छा फील करूं, फिट फील करूं, एनर्जी से भरा हुआ फील करूं, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, 6 महीने से ज्यादा लगेंगे। अगर आप उससे कम टाइम में करेंगे, जैसे आजकल के डाइट कोर्सेज ऑफर करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स और क्लिनिक्स, वो गलत होते हैं,
1: ओके,
0: उनको मत कीजिए।
1: वेरी नाइस। दोस्तों देखिए, बासु अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कह रहे हैं। हर बंदे की फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ नियम तो यूनिवर्सल हैं। तो अगर हम बासु के कहे हुए नियमों को अपनाएं, तो एज सच देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है, शायद फायदा ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बासु, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अगर आपको अथॉरिटी मिल जाए तो आप सोशल मीडिया की दुनिया में क्या बदल देना चाहेंगे?
1: अगर मुझे अथॉरिटी मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया पे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका जो एक वो होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ऋतिक रोशन है फेसबुक पे, तो अगर मैं ऋतिक रोशन को मैसेज करना चाहूं या उनसे बात करना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि वो कर नहीं पाते, वो पहले ही ब्लॉक कर देते हैं मैसेज, उन तक जाता ही नहीं है ऋतिक रोशन तक। तो मैं सबसे पहले वो बैरियर जो है वो हटा देना चाहता हूँ कि मैं सारे सेलिब्रिटीज या फिर सारे जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे हमारे मोदी साहब हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कि सबसे खुल के बात हो सके। अब मैं जानता हूं कि ये काफी तकलीफें शुरू कर देगा क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर हर कोई उनसे बात करना चाहेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, और क्या तरीका है उनसे बात करने का?
0: मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता तो वो आफ्टर ऑल सोशल मीडिया पर है ही क्यों?
1: एग्जैक्टली
0: उनको हट जाना चाहिए। जब आप रीचेबल ही नहीं हैं तो फिर आपका वहां पर होने का फायदा क्या है? रहने दीजिए ना इस सोशल मीडिया को साधारण लोगों के लिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं?
1: हाँ,
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और एक मैसेज, अगर ये मैसेज सोशल मीडिया की दुनिया तक जाता है या सब लोगों तक भी जाता है और वो मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
1: और दूसरी एक चीज जो मैं सोशल मीडिया में करना चाहूंगा अगर मुझे अथॉरिटी मिले, वो ये है कि मैं सोशल मीडिया मेजॉरिटी जो होता है मैं सोशल मीडिया बंद करवाना चाहूंगा हफ्ते में 2 से 3 दिन के लिए,
0: ओ
1: हर
0: माय
1: हफ्ते।
0: गॉड, ओके।
1: क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं देख रहा हूँ, लोग आजकल फोनों में ज्यादा घुसे हुए रहते हैं, एक दूसरे से कम मिलते हैं। मेरे खुद के अपने दोस्त फोन में ज्यादा लगे रहते हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ होता हूँ, चाय पी रहा होता हूँ, वो अपने फोन से चाय की फोटो ले रहे होते हैं। मैंने कहा भाई यार तू चाय पी ले, गरम गरम है, तू उसकी फोटो लेने में लगा पड़ा है।
0: ओह, हाउ सैड। और आपके पास बैठे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, फोन में घुसे
1: फोन में
0: रहेंगे।
1: लगे हुए हैं।
0: ओके, ये आपका वैसे प्रैक्टिकल सजेशन है। मैं मानता हूं कि हफ्ते में 2-3 दिन तो मोबाइल फास्टिंग हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया
1: चलिए
0: बंद कर दिए
1: चलिए,
0: जाए।
1: 2 दिन नहीं, चलिए मैं मानता हूं कि आजकल 99% काम ऑनलाइन होता है, मैं मानता हूं, लेकिन 99% काम सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है। और अगर एक दिन भी, चलिए 3 दिन में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक दिन तो बंद हो सकता है, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया है। सोशल मीडिया तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों का 1-to-1, पर्सन-टू-पर्सन इंटरेक्शन तो घट रहा है।
0: तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों का 1-to-1 इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट।
1: बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत ही उसी से हुई थी।
0: बहुत बहुत बढ़िया बासु। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, नई जनरेशन के लिए, आपके उम्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: देखिए मैं जो नई जनरेशन है, जैसे मैं अभी 24 साल का हूं, तो मैं अपनी जनरेशन को एक मैसेज स्पेसिफिकली देना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए आप काम करिए, अपना करियर बनाइए, फ्यूचर है अभी आपका, अभी आपको 100 साल और जीना है, लेकिन अपनी रूट्स मत भूलिए, रूट्स से अपने पेरेंट्स को मत भूलिए, अपने माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, इन सबको मत भूलिए, क्योंकि ये लोग ही हैं जिनकी वजह से आप इतना ऊपर हैं और ऊपर जाएंगे। इन्हीं लोगों की गाइडेंस से, इन्हीं लोगों के प्यार से आप इतना दुनिया घूम पा रहे हैं, दुनिया को देख पा रहे हैं, दुनिया को समझ पा रहे हैं, तो इन लोगों को कभी मत भूलिएगा। बाकी जिंदगी, बाकी सबके लिए ये मैसेज है कि खुश रहिए, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं हासिल होता है। बहुत सारी किताबें हैं इंटरनेट पे, दुनिया में मूवीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, ट्रेनर्स हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। बाकी खुश रहिए, मौज करिए, मस्ती करिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। खुश रहने में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो फिटनेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। खुश रहने में आप फिट रहेंगे, अच्छा लगेगा, दूसरे लोग भी आपको देखेंगे वो भी फिट रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक रहेगा।
0: बहुत गुड,
1: थैंक यू।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बासु, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी बिल्कुल यंग और जहीन बातें हमने सुनी, इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट बातें हमने सुनी। बहुत सारी बातों पर हमें सोचने पर मजबूर भी किया। थैंक यू सो मच बासु फॉर योर टाइम एंड फॉर कमिंग इन माय प्रोग्राम। थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: कैसे है
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड आपके सबसे प्यारे प्रोग्राम आज के कलाकार का मैं लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आपको बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत मजा आएगा। आज के कलाकार को, आज की प्रतिभा को, आज की गायिका को जानकर, उनकी बातें सुनकर और उनके गीत सुनकर। हमारे साथ आज अनीता घोष मैम हैं। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूं, और हमारे आज के कलाकार का वो एक सिग्नेचर है कि हम चाहते हैं हमारे कलाकार खुद अपने बारे में बताएं, तो हमें ज्यादा डिटेल ज्यादा प्यारे तरीके से मिलती हैं। अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे परिवार वाले और जितने भी आज लोग सुन रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अनीता जी, मुझे बताइए कहाँ हो आप, क्या करती हो आप, अपनी पूरी जिंदगी क्या किया आपने, क्या आप एक होम मेकर थी, और अभी कहाँ रहते हो आप?
1: मैं मुंबई में कांदिवली में रहती हूँ।
0: बहुत बढ़िया। और आप मतलब कोई प्रोफेशन में हो, कोई टीचर हो या होम मेकर हो, क्या करते हो आप?
1: मैं पहले टीचर थी। उस दिन मैंने टीचिंग किया, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, बच्चों के साथ मैं जॉब और घर का बैलेंस नहीं कर पाई, तब मैं टीचिंग छोड़ दिया और होम मेकर बन गई।
0: बहुत बढ़िया।
1: और मेरे बच्चों को अच्छा से पाल पोष के बड़ा किया।
0: क्या बात है, दैट इज अमेजिंग। मैं सच बता रहा हूँ अनीता मैम, इससे बड़ा काम सच में इस दुनिया में कोई होता नहीं है। मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सारी महिलाओं को करवद रिक्वेस्ट पेश करते हुए कहना चाहूंगा कि घर संभालना इस दुनिया का सबसे भारी काम होता है दोस्तों, और अनीता मैम ने उसको बेखूबी किया। तो अनीता मैम, मुझे ये बताओ कि आपके गाना गाने की शुरुआत कैसे हुई, ये संगीत का शौक, संगीत से मोहब्बत, संगीत से प्यार आपको कब से हुआ?
1: मैं एकदम बचपन से ही संगीत से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरा नाना रेडियो आर्टिस्ट थे, वो क्लासिकल आर्टिस्ट थे, और उसके बाद मेरा मामा भी क्लासिकल गाते हैं, और उसके बाद मैं बचपन से ही सीखी हुई हूँ। नाना के साथ मेरा शुरू हुआ है सारे गामा सीखने का, फिर उसके बाद एक म्यूजिकल स्कूल में मुझे डाला था, क्योंकि नाना थोड़ा हाई लेवल में सिखा रहे थे।
0: ओके।
1: तो काफी दिन मैंने वो म्यूजिकल स्कूल से सीखा हूँ, और उसके बाद फिर नाना के पास गई और उनसे मैंने क्लासिकल सीखा, लेकिन बाद में वो चर्चा थोड़ा बंद हो गया था बीच में। अभी क्या है, अभी बच्चे बड़े हो गए, मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी अच्छा से चर्चा कर सकती हूँ गाने का।
0: ओके। तो लेकिन मुझे ये बताइए ना मैम, आपने नाना जी से सीखा था, तो वो कहाँ पर सिखाते थे, यही मुंबई में या कहीं और?
1: नहीं, कोलकाता में।
0: अच्छा। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के तो कल्चर में, संस्कृति में ही रविंद्र संगीत रहता है, तो संगीत के तो बहुत बहुत नजदीक हैं आप लोग, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने जाना कि अनीता मैम कहाँ हैं, क्या करती हैं और किस तरह से वो संगीत से जुड़ी हुई है, तो चलिए शुरुआत करें इस प्यारे से प्रोग्राम को अनीता मैम के ही गाए हुए इन गीतों से। तो आइए ना सुनते हैं ये प्यारे से गीत।

0: बहुत सुंदर अंता जी, बहुत ही प्यारी शुरुआत, बहुत ही प्यारा आरंभ। अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपके संगीत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और फिर कोशिश करेंगे आपसे आपके बारे में बात करने की। तो पहले संगीत, किस तरह का संगीत पसंद करती हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके तो डीएनए में, आपके तो जीन्स में, आपकी तो संस्कृति में रविंद्र संगीत या प्योर क्लासिकल संगीत घुला मिला है। फिर भी आपने जितना भी सीखा, आपकी खुद की कुछ तो पसंद होगी। किस तरीके का संगीत आपको पसंद आता है? क्लासिकल, फोक, बॉलीवुड, क्या चीज?
1: मुझे सेमी क्लासिकल जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमेशा क्लासिकल मुझे इतना पसंद नहीं आता है कभी भी।
0: वेरी नाइस।
1: तो ये गाना मैं बचपन से ही मॉडर्न एज सब म्यूजिक गाना गाती हूँ। नाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे यही पसंद है, सेमी क्लासिकल मेलोडियस सॉन्ग्स जो है ना बॉलीवुड का, ये मुझे पसंद है।
0: ओके, और कौन से समय के आपको पसंद होंगे? मतलब 60s के कह लूं या आज की 20s के, 2000s के, कौन से?
1: नहीं, मुझे 80s 90s के गाने पसंद आते हैं बहुत।
0: ओके, 80s 90s के। और कौन फीमेल सिंगर हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं?
1: देखिए लता जी, वो तो कोई चॉइस के बाहर ही है, वो तो है सूडो की रानी। उनको उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे भी मुझे पसंद है बहुत आशा जी को, आशा ताई मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद अलका याग्निक,
0: अलका याग्निक
1: बहुत पसंद है।
0: ओके,
1: यस,
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाना आपने कि अनीता जी बिल्कुल सोबर तरीके से, बिल्कुल पवित्र तरीके से, मासूम तरीके से संगीत को अपने पास रखती हैं और वो संगीत के पास रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए उनके मासूम से इन दो गानों का आनंद उठाएं और फिर वापस आए अनीता जी के पास, सो हम उनको और जान सके। पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत सुंदर अनिता जी। चलिए अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। यूं तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई अनिता जी? आपका नेटिव टाउन?
1: कोलकाता में।
0: कोलकाता में। और शुरुआत की पढ़ाई लिखाई भी उधर ही हुई होगी?
1: उधर ही हुई है।
0: ओके, तो अपने बचपन को जरा याद कीजिए और हमें बताइए ना, कोई एक बहुत ही प्यारी सी शैतानी, कुछ ऐसी शरारत आपने की हो जो आपको आज तक याद हो, मासूम सी, जिसमें किसी का नुकसान ना हुआ हो, कोई भी शैतानी हमें बताइए ना।
1: बचपन की शैतानी तो बहुत सारे रहते हैं।
0: तो हमें अपने बचपन में ले चलिए ना, हमें छोटी वाली अनीता से मिलाइए ना।
1: वो बचपन में स्कूल में क्या था,
0: ओके,
1: एक नए टीचर आई थी, तब हम सेवेंथ स्टैंडर्ड में थे।
0: ओके,
1: नए टीचर आए थे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक तो नए हैं और बहुत खरोच थी। और
0: आपने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि वो खड़ूस है?
1: आके हमें डांटने लगे ना, नाम पूछा और डांटने लेना, ये टीचर है, थोड़ा सॉफ्टली पूछना चाहिए था।
0: अच्छा, अच्छा,
1: और बचपन में ऐसा होता ही है ना, नए कोई आए तो उसके पीछे थोड़ा पड़ जाओ। तो वो जब बोर्ड में लिख रहे थे, पीछे से कोई ना कोई पेंसिल रबर उनके पीठ में फेंक रहे थे। जब भी पीछे मुड़ के देखे तो सब चुप।
0: ओके,
1: ऐसे करते करते बहुत परेशान हो गई थी वो टीचर। फिर हम सब को लेके ऑफिस रूम में लेके गए और पनिशमेंट मिला था हमें। वो मुझे आज तक पसंद है।
0: आप सोचो यार दोस्तों, मतलब ठीक है, कितने छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है ना, ये संदेश सारे टीचर्स को है कि इतने छोटे बच्चे भी पहचान जाते हैं कि वो टीचर अच्छी है या खड़ूस। तो क्या आप सब लोग खड़ूस टीचर बनना चाहेंगे? बच्चे मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, आप उनसे कैसे प्यार से बात करोगे, कैसे उनको अपनाओगे, ये कहानी से हमें ये पता चलता है। बहुत सुंदर।
1: नहीं, और एक बात है, जब नए किसी से हम मिलते हैं ना
0: जी,
1: तब हमें थोड़ा सॉफ्टली
0: बातचीत
1: करना चाहिए। शुरू में अगर एटीट्यूड दिखाए तो लोग पसंद नहीं करेंगे ना।
0: दैट इज,
1: और छोटे बच्चे हो तो अलग ही बात है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। सो दोस्तों, हमारे बीच में जो भी टीचर्स हैं, मेरी वाइफ भी टीचर है, हम सब लोगों को एक संदेश है, इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ तो हमारा व्यवहार कुछ अलग ही होना चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं, अनिता जी के ही गाए हुए, और फिर वापस आएंगे इसी तरह की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए।

0: बहुत खूब अनीता जी, प्यारे प्यारे गीत और प्यारी बातें। चलिए अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए। आप कोलकाता से पढ़ाई लिखाई करके जब मुंबई आ गई, और आपने बताया कि गीत संगीत तो आपके आसपास हमेशा से ही था, तो आपको
1: बिल्कुल
0: गाने के लिए, आप गाएं इसके लिए किसने प्रोत्साहित किया, वो कौन थे? हो सकता है कोई मित्र रहे हों, कोई सहेलियां रही हों, या माता पिताजी रहे हों, या कोई भाई बहन कोई कजिन रहे हों, वो कौन थे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि नहीं अनीता जी आपको गाना चाहिए? कौन थे वो, उनके बारे में बताइए ना।
1: वो मेरी मम्मी थी। वो मम्मी हमेशा चाहती थी, बचपन से गाना सीखने के पीछे उनका ही इंटरेस्ट था। वो खुद कभी गाना नहीं गाए, लेकिन हमेशा चाहती थी मैं गाना गाऊं। और जब शादी के बाद बच्चे हो गए, गाने में थोड़ा ढीला पड़ गया।